चंद्र की तरफ देख रहे, वो अश्रुप प्रवाह करती हुई राधा राधा राधा राधा ऐसा वीणा वादन करते हुए गान कर रहे। लाडली जू, मान सरोवर मांझ अरि सुनि नहाय के, राधा को जाप जपे पानी में जाय के। और हमने देखा किसके बाद वो मान सरोवर में स्नान किया और इतना हृदय तक छाती तक जल में खड़े होकर राधा राधा राधा ऐसा जप कर रहे हैं, अर्थात राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का जप कर रहे हैं। फिर लाडली जो हमने देखा कि वो आपकी स्वर्ण श्री विग्रह की प्रतिमा को साथ लिए हुए थे।

जो हमारी स्वामिनी जी की कैसे प्राप्ति होती है। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुवार स्वयं लाल जी महाराज और गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम श्री लाल जी का राधा आराधन तत्परा प्रतिपल किशोरी जी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधन तत्परा तत्पर है श्री स्वामिनी जी की। कैसे कोई जानेगा राधा तत्व, जिन श्री कृष्ण तत्व को वेद भी नेति नेति कहते हैं वो राधा तत्व का क्या वर्णन कर पाएंगे। लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लालडी जी महाराज, प्रेम अनिर्वचनीय है, कोई नहीं वर्णन कर सकता। फिर सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का कोई वर्णन कैसे करे। सखियां जो आचार्य रूप से होते तो वो भी कह रही, जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटि पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। लाडली जू वो आपकी स्वर्ण प्रतिमा को स्वर्ण श्री विग्रह को स्नान करा रही है और चरणोदक लेकर पान करके अपने माथे पे चरणोदक और हृदय से उस प्रतिमा को लगाकर ध्यानस्थ हो जाती है।

हे लाडली जी, वो आपकी प्रतिमा का श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर केसर चंदन कर्पूर, इस मिलित चंदन से पत्रावली की रचना उस स्वर्ण प्रतिमा में करते हैं, सुंदर पोशाक धारण कराते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल पवाते हैं, फिर आचमन करा करके मुख पोछ कर पान की बीड़ी और फिर आपके चरणारविंद में प्रणाम करके प्रसाद पाते हैं जो भोग लगाया।

आरती, वो धूप आरती करती है, अपने प्राणों को बलिहार करके आपकी आरती उतारती है। कुंजन में गुही फूल निकुंज बना वही ललनातों को नित ही नित लाल लड़ा वही। स्वामी जी सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके सैया की रचना कर निकुंज में फूल बंगला बना दी और आपकी प्रतिमा को विराजमान करके सुंदर सुंदर पद गान करते हैं, आपको रिझा रहे। यह है उपासना महारानी जी को प्रसन्न करने की। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, आहा वो बड़ी जानकार है, ऐसे सुंदर सुंदर रागों का गान करके कि प्राण मोहित हो रहे हैं उनकी गान। समस्त आचार्यों के आचार्य हैं लालजी महाराज, जगत गुरु हैं, नृत्य गान वाद्य आदि सबके आचार्य हैं, यही इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, और लाडली जू एक छोटी सी प्रतिमा और आपका नाम कंठी में पहने हमने उनको देखा। तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में पोही के, तुलसी की कंठी और उसमें आपका राधा नाम और आपका रूप दोनों विराजमान किए हुए हैं। कंठ सुघर संगीत सबे स्वर गावहीं, राग रागिनियां तो मानो मूर्तिमान होकर उनके कंठ में विराजमान हो ऐसे गान कर। और एक आश्चर्य की बात, वो अपने अधरों पे मुरली रख के वैसे ही बजाती जैसे लालजू बजा रहे। मुरली धर जो मुरी के मुरली जो बजा वही, बंशी इतनी प्रेम मई है कि लालजू जब अधरों में धरते हैं तो उसका वजन नहीं सह पाते, ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, कमर भी टेढ़ी हो जाती, ललित त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। रसमयी वंशी का भार अधरों पे पड़ा तो महाराज ललित त्रिभंगी वो रूप और कहीं नहीं मिलेगा, ये वृंदावन का रूप है, कहीं नहीं मिलेगा, द्वारिका में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा, विग्रह विराजमान उन्हीं के सब है। लेकिन ये रूप यहां वंशी ये है, वंशी का क्षेत्र वृंदावन, सुदर्शन का द्वारिका मथुरा, वहां भी देखा गया हूं। यहां कभी सुदर्शन जी का प्रवेश ही नहीं, कभी ब्रज 84 कोश में कौमोद की गदा पांचजन शंख भगवान की दिव्य पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, यहां तो कर कमल में श्री मुरली जी विराजमान है। लाडली जो जब वो मुरली में राधा नाम गाते हैं तो जमुना गमुना ना करे वो प्रवाह बढ़ा वही, मृगवाहन चाहन चित्र बंधे धुनि भावई। ऐसा बंशी का नाद कि यमुना का प्रवाह बंद हो गया, यमुना गमना ना करे, यमुना जी का प्रवाह बंद हो गया, मृगवाहन चंद्रमा भी चलना रुक गया, थकित हो गया, चंद गति मंद भई निरख छवि कान। बीत क्यों

भाई लाडली जू, बिल्कुल जैसे नंद नंदन बंशी बजाते हुए वो सखी वैसे ही बंसी बजा रही। उनकी बंशी ध्वनि सुनकर वर मोर चकोर किशोर मरालन मंडली, कहीं मोर मंडली, कहीं है हंस मंडली, सुख सारिका को ये पक्षियों के झुंड उनको आसपास घेरे हुए, मानो मुनि व्रत धरे कपोती कोकिला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परम हंस विराजमान हो, ऐसे चकोर की भांति देखते हुए सब पक्षियों की मंडली विराजमान, और वो अपने अधरों में बंशी बजा रहे। हमें तो देख के ठीक ऐसा अनुमान होता है जैसे नंद नंदन ही हों।

बिल्कुल नंदन नंदन जैसी आंखें हैं, वैसी ही उनकी चलन चितवन, वैसी ही बंसी और वैसा ही प्रेम। हमारी प्रार्थना है कि आप चल के खुद देख लो कैसी वो आपकी आराधना करते, समझ पाए। सखी श्री जी को प्रेरित करती, पधारो लाडली जी, वो आपके, वो हमारा परिचय, हमको लाडली जी का परिचय, हमारा लाडली जी को परिचय, ये काम ये गुरुदेव रूपी सहचरी, आचार्य रूपी सहचरी करती है। श्री जी से हमारी स्मृति, वो एक है आपका, उनको हमारी तरफ आ, और हमारे चित्त को लाडली जी की तरफ, इसीलिए रे मन रसकन संगविन रंचना उपजे, कहो कृपा उपजे के भांति बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। श्री जी से कहा कि हमारी प्रार्थना है, आप चल के खुद देख लीजिए,

कीजिए। अगर आप चलेंगी ना तो उसे बहुत नेत्रों में सुख मिलेगा, क्योंकि आपको प्रतिमा के जब आपको साक्षात देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आपको भी सुख मिलेगा क्योंकि वो आपके विशेष प्रेम में मत वाली है। जब आप देखोगी तो आपको सुख मिलेगा, और जब आपको वो देखेगी तो उनको सुख मिलेगा। चलो प्रिया जी, बड़ी कोमल चित लाडली जी, बहुत लाडली जी, लाडली जी, बस कोई है ही नहीं, कोई नहीं, प्रभु भी नहीं आप। इसीलिए तो पता नहीं कौन सा तत्व सी किशोरी जो है, किसी के परिचय का नहीं है आज तक। लाल जो परिचय नहीं जान पाए हमारे, आप ऋषि मुनियों की तो बात जाने, दुआ दिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देख्यो न कबहूरी। आज तक पहचान नहीं हो पाई, कैसे कोई जानेगा इस महा युगल सरकार प्रेमिकों की, आज तक पहचान नहीं हो पाई प्रिया प्रीतम में। आज तक दुआ दिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। प्रतिपल ये नए प्रेमी है, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, इनको नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम ब्रशुभान किशोर। प्रतिपल नवीन नव किशोर। श्री जी इतनी कोमल चित्त है, बस उसी कोमल चित्त की वृत्ति को गुरु कृपा से समझ के ऐसे गए भगवत प्राप्ति तुम। अगर करोड़ों बार होनी होती तो भी सस्ती थी यार, हमारी महारानी जी के दरबार से सुनो तो भगवत प्राप्ति तो हमारे घर की जेब की बात है। ये केवल महारानी जी के ही बल पर है, किसी साधन बल पर ऐसा नहीं। अगर साधन बल पर सुनना है तो भगवान विश्वनाथ जी के रंग में रंगे हुए वेदांत दर्शन से सुनो तो कांप जाओगे कि क्या किसे कहते हैं मोक्ष, किसे कहते हैं अखंडानंद, कांप जाओगे भैया हम नहीं चल पाएंगे। और यहां ऐसे लगे चलने की बात कि हम तो दौड़ के चले जाएंगे श्री जी के पास पक्का, क्योंकि जैसे हरिवंश परम कोमल चित, परम कोमल, जेव ही ये कहा श्री जी को क्या हुआ, रोमांच हो गया, कोई हमें इतना प्यार करता है, राधा राधा बोल, श्री जी के अश्रु चल गए श्री जी के, कैसे तुम्हें बताए कितना वो, अरे प्रेम मूर्ति है लाड, कोई राधा राधा बोल रहा है, कोई हमारी प्रतिमा की सेवा कर रहा है। ये जो आप लोग भोग लगाते हैं, नाचते हैं, आरती करते हैं, निहाल हो गए महारानी जी के सामने, मैं किसी और की नहीं सुनना है, श्री जी देख रहे हैं, एक ही पल देख रहे हैं। बात सुने रोमांच किशोरी के भयो, इतनी प्रेम विवशता हुई कि पास में खड़ी सखियों ने संभाल लिया, गले का हार जैसे ऐसे सब सखियां प्यारी जी को बहुत प्यार करती है, सखियां प्यारी जी बहुत, पलकन को जैसे अधिक पुत्रिन सोमति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभाल, अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार। ये वृंदावन है, ये वृंदावन का प्रेम है, सखियों ने संभाला किस बात में, कोई राधा राधा कह रहा है, कोई हमारी प्रतिमा का पूजन कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, श्री जी कैसे, श्री जी

मोती जन प्यारी जू के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं, जैसे मानो मोतियों की वर्षा। कोई राधा नाम ले रहा, मेरे को पुकार रहा है। परम कोमल चित लाड़ी, परम मदन टेर के बाबा का जो चरित्र आता है, तो उन्होंने तो यही कहा ना कि लाडली लाल के संग में आप भी कठोर हो। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे, इतने वर्ष हो गए वृंदावन वास करते, आंखों से अंधा हो, पूरा जीवन हो गया आपके चरणों में, आज तक आपको करुणा नहीं आई, मुझ दीन पर दया नहीं आई, आपके दरवाजे में पड़ा राधा राधा पुकार रहा हूं। उनको क्या पता कि सामने युगल सरकार प्रतिपल रहते हैं। लाडली जू नहीं रोक पाए, नजदीक जाके कहा, बाबा ये तू कैसे कह रहे हो कि लाडली जू कठोर हो गए। तो उनका संग दोष चढ़ता है ना, लाल जू कठोर हृदय के हैं, संग दोष से कठोर हुए, ऐसे तो पड़ी कोमल। नहीं नहीं मैं कठोर ना है। लाल जी का उसमें भेद ही खोल दिया, हम तो केवल दूर से रसा लाडली जी। वैसे लाडली जी ने बाबा के नेत्र छुए, दिव्य देखा ही दर्शन चरणों में। लाडली जी से कहा, पहला कार्य करो मेरे को अंधा करो, आंखें खुली तो आपको देखा और देखना नहीं, बस अब तुरंत हमारी आंखें हटाओ, बस यही रूप में पधारे श्री जी का। बड़ी करुणामय सरकार, देखो कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो देखो प्रेम चले भरि नयन मैन रस में, स्वामिनी जू के आंखों से अश्रु टपक रहा है और कुंजों में जैसे मोती बिखेरते हुए जा रहे हो, ऐसे अश्रु गिरते जा रहे हैं। और चपल चली शीघ्रता, ऐसा हम सबके प्रति उनका प्यार है, ऐसा आपको समझना। बस एक ही कमी है कि हम अपनी ममता को अपने स्नेह को बांटे हुए नहीं। तो जिस दिन मुड़ोगे आप इधर ना, आप खुद देख लेना कि श्री जी का प्यार क्या है। उन्हीं के प्यार से कहीं कुछ प्यार दिखाई दे तो उन्हीं के प्यार का अंश है।

गजगामिनी गजगामिनी प्रिया जो मत वाली चाल से सखी के कांधे पर अपनी भुजा पधराए हुए हंस गति से चल रही, आगे आगे सखियां लताएं निवारती जा रही, जो वृंदावन के पशु पक्षी दर्शन के लिए भाग की मंडली से इतारे उनसे रास्ता कराते, वाम करें इतमाम लिए छवि की छड़ी, फूलों की छड़ी ली हुई हटाती जा रही है, लताएं देख रही प्रिया जो आ रही, तो ऐसे वो नृत्य करती कि सब फूल बिछ जाते हैं, मानो लताएं अपने पुष्पों से श्री लाडली जू के चरणों में पावड़े बिछा रही, महारानी जू गजगामिनी जू पधार रही हंस गति से।

सभी पहुंची उधर सेवा परायण नूपुरों की ध्वनि सुन करके देखा हो जिनकी प्रतिमा वही स्वामी जी प्रधान नेत्र लाडली जी के नेत्र दो चकोर दो चंद्रमा दो वल पंकज दो सखियों ने देखा

नहीं। नेत्रों को देखकर युगल सरकार की उस पर सखियां गुलाल उड़ा रही है। सी लाडली जो देख के उनकी इस अनुराग को ऐसे प्रेम में विथकित हो रही है, व्याकुल हो रही है। कीरत की बिटिया विथकी छवि देख के सखी अखियन की पुतरी पुतरी भई पेख गए। आप ध्यान से सुनिए, आप जो भोग लगाते हैं उसमें जो आप प्यार प्रकट करते हैं ना, प्यारी जू बोलिए, प्यारी सीधे प्यारी जू पा रहे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये बस अंदर से आप श्री जी की सेवा में हैं, बस ध्यान रखो। ये जो महल रचना करते हो, कुंज की जो भोग रचना करके भोग पवाते हो, जो आरती करते हो, जो दुलार करते हो, ये लाडले देख रहे हैं। बस इनका देखना ही हमारे लिए काफी है।

लकी। श्री जी ने कहा कि सखी हमारे कोई बहुत पुण्य होंगे जिससे हम तुम्हारी जैसी उपासिका का दर्शन कुंजों में पाया। ऐसा प्रेम राधा नाम से, ऐसा प्रेम राधा रूप से। तुम्हारा नाम क्या है?

क्या नाम है आपका, किस गांव से आई हो और मेरी इस मानसरोवर की कुंज में क्या कामना रखती हो जो ऐसी उपासना कर रहे हो। श्री लाल जी महाराज सहचरी बपू है, उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा जू है। श्यामा जू तो मेरा नाम है, ये श्यामा जू तो। और नंद गांव से आए हो, आप जानते हो नंद गांव, पर पूरे ब्रज में श्यामा जी तो मेरा ही नाम है। तो ये ऐसे ही हैं, इनमें पता ही नहीं, खुद को पता नहीं कि इनमें कौन श्यामा जी हो कौन श्याम जी हो। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, जैसे दो शीशी में एक ही रंग भर दे ऐसे ही दो देह केवल है, वही एक परम रस है। तो कभी प्रिया जू पुकारने लगती है, हा प्यारी जू आप कैसे रुस गई मान कर गए, तो लाल जू को लगता है ये तो हमारी बात बोल रहे हैं। अब प्रिया जू भाव में प्रीतम के हैं बुला रहे हा प्रिया, कभी कभी लाल जू कहते हे प्रीतम हे प्यार। सखिया ये नहीं समझ पाती कि लाड़िलों के हृदय में चल क्या रहा, बड़ा एकांतिक प्रेम है। उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा, मैं नंदगांव की हूं और आपकी अनन्य भक्त हूं। ये शब्द बहुत प्यारा शब्द है, आपकी अनन्य, बस इससे सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए बस एक ठसक ले आइए हमारी भोरी सखी के लिए, लाडली जी के लिए, मैं आपकी हूं। बस देखो ना महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, मुझे कोई परवाह नहीं, नरक भेज दो या कहीं भी जन्म दे दो, बस महारानी जो आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। क्या फर्क पड़ता है, यहां प्यारी जो वहां निकुंज, ये कहीं भी भेज दो, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख राशि, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपकी अनन्य भक्त हूं। अब सब कुछ छुप सकते हैं, चितवन प्रेमी की बचाई नहीं जा सकती, वो अपनी पहचान बता ही देती है चितवन। जैसे श्री सेवक जी महाराज जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आए तो बंचन महाप्रभु ने पहले आदेश कर दिया था, जिस दिन सेवक जी वृंदावन में आएंगे सब भंडारा लुटा देंगे राधा वल्लभ लाल का, ऐसे महाप्रेमी के आगमन पर। सेवक जी को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री जी की सेवा की सौंध नहीं लुटानी चाहिए, तो छुप करके ऐसे वेश ढक करके आए, और जब नेत्र मिलाए तो राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल हो गए। महाप्रभु गोस्वामी श्री बनचंद जी सेवा में थे, उन्होंने कहा श्री जी के नेत्र चंचल हो गए, कोई ऐसा प्रेमी आ गया। तो नीचे जब देखा तुम ऐसे वस्त्रों से ढके हुए, बोले सेवक जी ही होंगे। जब निज जनों को भेजा कि आप दामोदर दास सेवक जी है, महाप्रभु आनंद, नेत्र से पता चल जाता है कोई है, निज जन है कोई। प्रेम उशासन लेत मिले दो प्रेम शो, मानहु श्याम चुनी सुबनी खचहेम सो।

नंद को। तुम राधा नाम जपक, राधा रूप पाशक, ऐसा प्रेम आओ हमारे हृदय से लगो। लाडली जी ने अपने हृदय से लगा। अब हृदय से लगने पर थोड़ी छुपाया जा सकता है, क्योंकि हृदय की गति प्रेमियों की अलग होती है। ये धड़कन तो बेकार धड़क रही है। जैसे हृदय मशलता रहता है प्रतिपल, कोई मशले, ऐसे प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होती रहती प्रेमियों, और जब उनके हृदय मिलते हैं तो वही हृदय जानता, दूसरा नहीं जानता। लालजू का हृदय से लगाना और नेत्र में नेत्र मिलना, सखियों से श्री जी ने कहा और कोई नहीं, ये तो प्रीतम है, ये प्रीतम ही हम समझ गई, इतना तो अनन्य धर्म का पालन प्रीतम ही कर सकते।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे। दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: आप में से कितने हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो, जहां पर कि पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। Why are you doing that? I'm just curious to know. कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा?
2: रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहाँ पे आ जाते हैं ना, तो वो चीज उसमें भी काफी वो हर्ट जाता है। और अगर जिस चीज में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, इस यहाँ पे जा रहे हैं तो हम।
1: इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो जब यहाँ पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है? क्यों इस पाथ को चुनते हो, क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो?
3: सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया जाता है उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है।
1: कितना लग जाता होगा, आप में से कोई बताएगा जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है?
4: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर।
1: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है?
4: जी सर, फिट जी में सर 6-7 ले लेते हैं।
1: नहीं नहीं, 6-7 लाख थोड़ी होती है।
4: यस सर,
1: मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की एक साल की?
4: 2-3 लाख सर।
1: 2-3 लाख रुपए साल की, तो मतलब 2 साल की हो गई 5-6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है?
4: 99% है कि तो नहीं होगा सर।
1: 99% है कि नहीं होगा? तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है? या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा, अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा? और जब नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट इज योर बैकअप प्लान?
4: प्राइवेट कॉलेज सर।
1: तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है?
3: पैसा लगेगा।
1: कितना पैसा लगता है 4 साल का, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो, तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से है, हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने?
3: यस सर, यस सर देखा।
1: अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50-60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं दे आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे?
3: 9-10 years।
1: 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा। yes. और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा।
3: इंटरेस्ट भी देना है क्या?
1: इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए, मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे तो क्या करोगे? अ सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन।
5: 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है, उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम जाएंगे तो वो हम ही है करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है।
1: ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में। आपकी हंसी से पता लग रहा है, घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो, तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है, आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों, आपका क्यों है, जवाब दो।
6: सर हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे हमने पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला।
1: तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वन। टू, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी,
6: लेनी पड़ जाएगी,
1: करनी पड़ेगी, इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए?
6: हमारे ही हुआ।
1: आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई।
6: Yes.
1: तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लगाओ दिमाग। और अभी तो मैंने AI के बारे में तो बात ही नहीं करी है कि AI का एजुकेशन के ऊपर क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी।
7: सर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं 10 ईयर्स जब था 10 साल का, तब मैं YouTube ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने e-sports भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने, वहाँ पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहाँ पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में, यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया, जिससे कि मेनली मेरा 50-1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है।
1: अभी आपकी एज कितनी है?
7: 15.5 ऑलमोस्ट लाइक 16 राउंड फिगर।
1: 16 साल?
7: यस सर।
1: तो आपके घर वाले खुश है?
7: बिल्कुल खुश होंगे सर, 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे।
1: लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आज आप कमा रहे हो, कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर All kinds of situations. जो आप कर रहे हो वो सही है।
7: सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का 1 लाख करना है, तो वो मैंने एक बार दो बार टारगेट को अचीव कर लिया, बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कम्फर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है, मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है, अब भी कर लेंगे, तो उस चीज को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर?
1: आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा, क्या बोल रहे हो आप? ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जाकर के कोई पैकेज लगने वाला है, और आप कह रहे हो कि सर 1 लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊं। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से, आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे, प्लीज हैव अ सीट। बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी।
7: Sure, sir.
1: तो एक सोल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर, अब ये सोल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे, बट मैं ये कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस एंड विद माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कि ये पॉसिबल तो है। इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट ये पॉसिबल तो है।
6: मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया, ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे वही 1-2 हजार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे ये करेंगे वो, फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता, बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं। हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा है, क्या करोगे बताओ, बंगला खरीदोगे, क्या खरीदोगे, जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा एक मोटरसाइकिल होती है बस, उसमें
1: वो भी आप ही के पैसों से खरीदी होती है।
6: हाँ, और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया, मैंने ये अचीव करा, आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस एक साल दे के देखो, ये करके देखो, ऐसे करते हैं। और एक बार जब इंसान इस चीज में जाता है तो फिर उसको तो फ्रॉड ही लगता है सब चीज की। हाँ, फ्रॉड है।
1: आपने कभी ऐसा ट्राई किया?
6: हाँ, मैंने किया है।
1: आपने कितने पैसे दिए थे?
6: मैंने दिए थे 500 रुपए। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी, सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ तो। मैंने कहा चलो सही है, कौन सा ज्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने फोर्थ डे बताया कि आपको 50,000 की शॉपिंग करनी है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने। अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कॉन्टेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, अब कौन कैसा हमें क्या पता। फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो, वहाँ पे हाय हेलो करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ।
1: ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है, इस बात को लिख करके रख लो। तो चैलेंज ये नहीं है कि पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, चैलेंज ये है कि जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है। पहले तो एक बात को मेरी अच्छे से समझ लो कि जो आने वाले 10 साल हैं उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है। और जहां तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो, जहां तक नहीं देख पा रहे हो, AI की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी, इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो तो। अब मैं बताता हूं मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूं, या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। नंबर वन, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया सीखना, या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो, उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है, बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहां पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। आने वाले टाइम में जो मीडियोक्रिटी है उसके लिए जगह नहीं बचने वाली है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। कौन होंगे वो लोग? जो मीडियोकर है इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ में, कि 5-10 साल पहले बस कॉलेज से एक डिग्री ले ली है, अब जॉब लग गई है, अब वो कहते हैं लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है। कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए, ChatGPT सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, अगर उन टूल्स को आप यूज करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो 10 गुना से, तो 10 लोगों का काम एक इंसान कर सकता है। तो अगर मेरी एक IT कंपनी है और वहां पर 1,00,000 लोग काम करते हैं और वो काम 10,000 लोग कर सकते हैं, तो मैं बाकी 90,000 का क्या करूंगा? निकाल दूंगा। तो 90,000 लोगों का क्या होगा? या तो अपनी स्किल्स को उनको अपग्रेड करना पड़ेगा या अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं देखो मेरी इस बात को ना गांठ बांध लो, आने वाले टाइम में मीडियोक्रिटी नहीं चलने वाली है, मशीन्स का जमाना आने वाला है, और जिसको मशीन्स को यूज करना आता होगा उसका जो आउटपुट है वो और लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा

से भाग नहीं सकते, ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा, जो भी कुछ नया हो रहा है एआई की दुनिया में, वो सब कुछ सीखने के लिए वहां पर अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखूंगा। डेली कुछ नया आ रहा है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो एआई एप्लीकेशंस हैं उनमें, और डेली नई नई एप्स आ रही हैं, तो यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडैप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जरूरत पड़े तो जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज होगी तो आप अपने आप को बदल दो। अगर ये कर सकते हो, यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो, तो आप सर्वाइव करोगे फ्यूचर में। अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है। तो अपनी जो स्पीड है सीखने की कि इस दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। टाइम वेस्ट मत करो फालतू का कंटेंट देखने में, इधर उधर टाइम पास करने में। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप 10 एआई टूल्स के नाम? कोई है जो बता सकता है? यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें, दोनों करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो तो आपके पास में एज आ जाएगा। कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए, अगर आपको जॉब ही करनी है तो। लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है, कुछ क्रिएट करना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, यानी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो, क्या कर सकते हो सर्वाइव? अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हाँ, अब आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर हो, अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक क्रिएटर हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब क्रिएटर्स, आई एम सेइंग समवन हु कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक लाइव्स बेटर ऑफ अदर पीपल इन सम वे, जिसके लिए वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाए, उसको एक क्रिएटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपकी एज में हूं, यानी मेरी एज है मान लो 18 साल, अब मेरे आगे एक चैलेंज है, मैं क्या करूं, जॉब की भी तैयारी करनी है, तो क्या उसको छोड़ दूं? अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं छोड़ूंगा या करूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, नंबर वन। बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया। जो एजुकेशन की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज होने वाली आने वाले टाइम में। एजुकेशन मतलब क्या, कि कुछ आपने सीख लिया है, अपने माइंड के अंदर भर दिया है और कुछ कर रहे हो, आने वाले टाइम में वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन वो लोग होंगे जो बचेंगे आने वाले टाइम में, और कौन वो लोग हैं जो नहीं बचेंगे। इफ यू कैन कनेक्ट दी डॉट्स, यानी अलग अलग चीजों को देख करके आप किसी तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जहां से आप पैसा कमा सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो फाइनेंशियली, इंडिपेंडेंटली, अपने बेस पर, तो फ्यूचर आपके लिए है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ इस डिग्री के बेस पे सर्वाइव कर सकता हूं, तो आने वाले टाइम में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस स्किल की वैल्यू होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कुछ अलग अलग हो, उसको जोड़ दिया जाए कि जहां से पैसा कमाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहा है, तो यूट्यूब में जो सबसे हाई पेइंग जो सेक्टर है वो है BFSI सेक्टर, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे टूल्स ढूंढूंगा जहां पर मैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकेंड्स के अंदर अंदर कुछ वीडियोस बना सकूं, और पहले मैं YouTube पे जाकर के देखूंगा कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर बहुत व्यूज आ रहे हैं या जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है Google पे और YouTube पे, क्योंकि अगर Google पे ज्यादा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि YouTube पे भी ज्यादा होगी। अब मेरी इस थॉट प्रोसेस को समझना, आइडिया को मत पकड़ना, गड़बड़ हो जाएगी। आइडिया को पकड़ोगे फिर वही बंद दिमाग की तरह कॉपी करने लग जाओगे, लेकिन अगर थॉट प्रोसेस को समझोगे तो कुछ भी कर जाओगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ pictory.ai, जहां पे आप टेक्स्ट इनपुट करोगे और वो उसको वीडियोस में कन्वर्ट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। ये काम करने में यूजुअली 2 से 4 दिन लगते हैं। तो क्या यहां से आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कह सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएटिव हो। तो एक दिन में कितनी वीडियोस बन सकती हैं? बहुत सारी। लेकिन वीडियोस बनाने से पहले मुझे यह समझना होगा कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं। तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे और यूट्यूब पे, फिर वो स्टडी करके, फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड,
तो क्या हो अगर इस तरह की मैं वीडियोस जनरेट करूं थ्रू एआई? अब मुझे उसके लिए कंटेंट चाहिएगा। कंटेंट राइटिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी पे जा करके लिख दूंगा व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, तो चैट जीपीटी पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा। उस टेक्स्ट को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे, ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि किसी के राइट्स वॉयलेट नहीं हो रहे हैं, उस टेक्स्ट को ले जाकर के मैं एंटर करूंगा पिक्टोरी में, वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूं। लेकिन यूट्यूब अब क्या कर रहा है, वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो एआई वॉइसेस है, जैसे ही यूट्यूब पकड़ लेता है कि इसमें एआई की वॉइस है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको या तो ब्लॉक कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी में जाकर के जो YouTube का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगह से अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है। अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे, उसके बाद एक एक वीडियो को बना के डालने में 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर एक दिन में मैं 10 वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, यानी YouTube पर मैं 10 अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं। और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे करता हूं अगले एक साल तक, ये नहीं कि 2-4-5 दिन किया, 10 दिन किया, रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में 2-4 दिन को समझ नहीं आया, बेकार है, छोड़ दो? ऐसे नहीं करते ना, 4 साल पता है ना कि वहां पे लगाना है, तो इस काम में भी टाइम लगाना पड़ेगा। तो एक साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने 10 चैनल्स पे, तो एक साल में मैंने कितनी वीडियोस अपलोड कर दी, 365 × 10, यानी कि 3650 वीडियोस। उसको करने में टाइम कितना लगा, मैक्सिमम 1-2 घंटा डेली। इतना तो आप टाइम कहां खराब कर देते हो, आपको खुद भी पता नहीं होगा। बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं, क्योंकि ये भी हो सकता है कल को YouTube एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो AI जनरेटेड वीडियोस हैं इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे, तो कहां गया आपका वो 1,00,000 रुपए महीना, गायब हो गया ना। तो एक्साइटेड नहीं होना, उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा, तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना है, घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहा हूं, मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पैर जमीन पर रखने हैं, उस पैसे को जोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है, कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, वैसा होता है तो क्या करोगे, वो होता है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेता है एआई जनरेटेड साउंड्स को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो वहां से बना ली, कॉन्टेंट चैट जीपीटी से मिल गया, पायरेसी चेक कहीं और से हो गया, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर है वहां से पता कर लिया, सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है, प्लस साउंड के लिए आपने क्या किया, 10 मिनट का एक ऑडियो सैंपल अपलोड करना होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, वो सीख जाएगा कि आपकी साउंड क्या है। तो अगर आपने ये कर लिया तो अब वो आपकी साउंड है, म्यूजिक यूट्यूब का है, कंटेंट रॉयल्टी फ्री है, अब इन वीडियोस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर इस तरह से सोच पा रहे हो तो फ्यूचर में आपके लिए जगह है। इसको एक्चुअल में स्किल्स बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी स्किल्स एक्वायर कर ली जो वैल्यूएबल है, हो सकता है आज इमीडिएटली नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप कहीं जाओ और वो आपसे पूछे कि अच्छा आप में से कौन है जिसको ये काम आता है, आप कहोगे मुझे आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सरवाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं, जो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो पास्ट में रेलेवेंट थे फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि वो एक काम आज नहीं तो कल मशीन कर लेगी, फिर आप क्या करोगे। लेकिन वो इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ नया समझ में आया है, कुछ नया सीखा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: हम अक्सर अपने बॉडी की हेल्थ पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम उतना ही ध्यान अपने थॉट्स और इमोशंस पर भी देते हैं? क्या स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव थिंकिंग का असर सिर्फ हमारी माइंड तक रहता है, या फिर इसका कनेक्शन हमारी फिजिकल हेल्थ से भी होता है? आखिर माइंड और बॉडी एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे हम दोनों के बीच बेटर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। वेलकम मैम।
5: ओम शांति। थैंक यू।
4: तो चलिए शुरू करते हैं आज की मीनिंगफुल डिस्कशन ऑन माइंड बॉडी कनेक्शन।
6: ओके ज्योति जी, क्या मल्टीटास्किंग हमारे माइंड को स्ट्रांग बना रहा है या वीक?
5: ये डिपेंड करता है कि हम उसको अगर दूसरों की देखा देखी अगर हम कर रहे हैं तो जरूर हमारे वो माइंड को वीक बनाएगा
4: जी,
5: क्योंकि हमने सिर्फ एक कंपैरिजन करके और अपने आप को दूसरों को देख करके हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर है कि उनको शौक होता है कि बहुत सारे कार्यों को एक साथ करना, बहुत सारी चीज़ों को सीखना, तो ये कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि हर एक नई चीज़ सीखने के लिए हमें उसमें इंटरेस्ट भी आता है और हमारे कुछ ना कुछ चेंजेस भी होते हैं। और जितने भी हमने सक्सेसफुल लोगों को भी देखा है तो उन्होंने कभी भी एक टास्क के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सारे टास्क में दिया है, मल्टीटास्किंग हुए हैं। जैसे अगर उनको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि वो जाकर के रेस्ट करेंगे, वो अपने टाइम अपने वर्क को चेंज कर देते हैं तो उससे उनकी रिलैक्सेशन हो जाती है
4: जी।
5: तो जो मल्टीटास्किंग लोग हैं, जिनका वो हॉबी है, जिन्हें वो शौक है, तो उनके लिए वो एक पावरफुल टूल है जिसके द्वारा जो है वो माइंड को बिजी रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों का क्रिएटिविटी के साथ करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मल्टीटास्किंग हमें वीक बना रहा है, कहीं ना कहीं हमें वो बहुत सारी जानकारियाँ देता है और स्ट्रांग बनाता है इसीलिए। लेकिन कुछ लोग अगर कंपैरिजन में जा रहे हैं, दूसरों की देखा, अच्छा ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो ऐसी में कहीं ना कहीं उनके पास जो स्पेशलिटी है वो भी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, उसको भी वो खो देते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं वो वीक बना देते हैं
4: जी।
5: तो इससे पहले हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो भी हम काम कर रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं, तो क्या वो मुझे पसंद आ रहा है, मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, या फिर हम लोगों को देख देख के उनको ऐसा दिखाना है या उनको शो ऑफ करना है इसके लिए कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद फिर हम बहुत वीक फील करते हैं, हम अपने आप से होपलेस भी हो जाते हैं और लाइफ ऐसी लगने लगती है जैसे हमारे जीवन में हम भागते भागते थक गए हैं। लेकिन अगर हमने उसको शौक बनाया है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ

0: एक रास्ता बंद होते ही हमारे पास दूसरा रास्ता खुला हुआ होता है। तो चॉइस करनी है आपको कि वो आप किस रूप में ले रहे हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं और अगर आपने देखा देखी किया तो वीक भी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, का सोशल मीडिया कंपैरिजन हमारे बॉडी एनर्जी को इफेक्ट करता है?
1: जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कई शब्द इसमें यूज किए इस क्वेश्चन में, तो उससे उसका जो सोर्स, जो सबसे पहला सोर्स है, हम देखते हैं कि मोबाइल है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर मोबाइल भी अगर हम अपने पास काफी समय तक रखते हैं तो बॉडी में चेंजेस, फर्क जो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो हो रहे हैं। फिर दूसरा वर्ड आपने यूज किया सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया आज की बहुत बड़ी डिमांड हो चुकी है, नीडलेस डिमांड है लेकिन फिर भी बहुत डिमांड है।
0: बिल्कुल।
1: और तीसरा वर्ड जो आपने यहाँ इस क्वेश्चन में यूज किया है, जो कि कंपैरिजन है, और ये वर्ड अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज रखता है। अगर एक माँ अपने दो छोटे बच्चों में कंपैरिजन करती है, कंपेयर करती है कि ये अच्छा है और ये नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, वो नालायक है, तो भी हम देखते हैं कि बच्चे के शरीर में, बच्चे की हरकतों में, बच्चे के थॉट लेवल पे, हर चीज में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और यहाँ सोशल मीडिया पे कंपैरिजन हो रहा है, और ये एक ऐसा कंपैरिजन है जो आज की डेट में बहुत बड़ी हमारे लिए अहमियत रखता है।
0: बिल्कुल।
1: और इस कंपैरिजन को मैं जब जब देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो मेरा मीडिया जो सोर्स है मोबाइल, वो मेरे हाथ में है, और मैं उसको जब जब याद करता हूँ, देखता हूँ, छूता हूँ, मुझे वो कंपैरिजन हिट करता है।
0: जी।
1: और जैसे जैसे वो मुझे कंपैरिजन हिट करेगा, वो मेरे हार्मोन्स को भी हिट करेगा, वो मेरे थॉट लेवल के थ्रू मेरे हर सेल के ऊपर इफेक्ट करेगा।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो इसीलिए अगर मैं इस कंपैरिजन से बच सकूं तो बहुत अच्छा। हालांकि इसमें काफी लोग सक्षम है कि वो कंपैरिजन में अपने लेवल को हायर रखते हैं, एंड दैट इज द गुड पार्ट, कि अगर कोई मुझे कंपेयर कर रहा है तो लेट हिम बी, उसे करने दें, लेकिन मैं क्या हूँ वो मुझे मेरा आंकलन खुद अपने नजरिए से करना चाहिए। किसी और के चीजों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, बोलने के द्वारा मुझे अपने स्तर को नीचे गिराना या चढ़ाना, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और मेरे को मैं ही जो है वो आगे या नीचे धकेल सकता है। मैं चाहूँ तो ऊपर जा सकता हूँ उस कंपेरिजन को लेकर ही। कई लोगों को हमने देखा है कि उनको गलत बोला गया लेकिन उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के अपने आप को आगे किया है, और कई लोग हैं जो उस कंपैरिजन के, जो कहे चादर में अपने आप को ढक लेते हैं और बिल्कुल ही सिकुड़ कर बैठ जाते हैं और अपने आप को फिनिश कर लेते हैं। दैट इज रॉन्ग। तो इसीलिए हमें अपने आप की क्षमता को बढ़ाना है। सोशल मीडिया अगर मुझे कंपेयर कर रहा है, मुझे कंपैरिजन लेवल पर लेकर आ चुका है, तो इट्स नीड द टाइम टू चेंज इट। या तो कुछ दिन उससे दूरी बनाए, या अपने आप से जुड़ना हम शुरू करें, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। आजकल कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, तो क्या ये स्ट्रेस के टाइम पर बॉडी और माइंड का जो रिस्पांस होता है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? आप दोनों का इस पे क्या कहना है?
1: अगर स्ट्रेस की बात करें तो एक्चुअल में स्ट्रेस कोई चीज ऐसी है नहीं, लेकिन हमने हर एक छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस बना लिया है और उसका इफेक्ट सीधा ही हमारी बॉडी पर पड़ रहा है। क्योंकि जैसा ही हम सोचते हैं, जिस विधि से हम चल रहे हैं, आज हम छोटी छोटी बातों का अगर हमने कहीं की अटेंशन नहीं देने के कारण वो टेंशन बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हमने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया है, कोई भी बात को अगर हम पकड़ कर बैठ जाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूँ कि एक हैंकी है और इस हैंकी को आप जो है वो होल्ड करके रखें, और बहुत देर तक अगर आप होल्ड करते हैं तो वो भी हैंकी में वेट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उसको फोर्सफुली पकड़ा हुआ है तो उसके कारण से आपको पूरी बॉडी में स्ट्रेस फील होगा।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तो ऐसे ही हम भी कई बार बातों को पकड़ लेते हैं, चीज़ें जो होने वाली हैं, या तो हम पास्ट की बातों में फंसे हुए होते हैं या फिर हम फ्यूचर की बातों में। किसी ने बहुत अच्छी बात कही भी है कि पास्ट इज़ द हिस्ट्री, वो बीत गया, वो इतिहास है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते
0: जी।
1: फ्यूचर इज़ द मिस्ट्री, वो हमें नहीं पता क्या होने वाला है, बट प्रेजेंट इज़ द गोल्डन गिफ्ट, हम आज में जिए। तो जब हम आज में जीना सीख लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। लेकिन अगर हम पास्ट में की बातों को पकड़ कर बैठे हैं या फ्यूचर की हम चिंता कर रहे हैं लेकिन आज हम कुछ कर नहीं रहे, तो वो हमारे को स्ट्रेस भी दिलाता है और उसका रिस्पांस ये है कि हमें इरिटेशन होती है, हमें गुस्सा आता है, हम लोगों के साथ निग्लेक्शन, या तो उन्हें निग्लेक्ट करते हैं या खुद को फील कर होता है कि हमें लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सबसे अलग करती हैं, और अलग करती हमारे माइंड में और ज़्यादा उसकी प्रेशर बनता है जो कि बॉडी में कहीं ना कहीं ज़रूर उसका इफेक्ट होता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को एग्ज़ाम भी देना है या कहीं जाना भी होता है तो उनको किसी को लूज मोशन लग जाते हैं
0: जी,
1: किसी को जो है वो हेडेक हो जाती है। तो जो भी हमारी बॉडी का वीक पार्ट है उस पर वो स्ट्रेस इफेक्ट डालता है और वो चीज़ हमारे साथ रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है
0: जी।
1: अगर हमने अपने आप को, पहले तो हमें हील करना है अपने अंदर को, माइंड का सीधा सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी से है। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ है।
0: बिल्कुल।
1: जितने भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना हुआ है कि उन्होंने अगर अपने मन के थॉट के ऊपर काम किया, विचारों पर काम किया है, तो उनकी बॉडी में जो आए हुए डिसीज भी थे वो भी ठीक हो गए
0: जी।
1: सिर्फ किस लिए? उन्होंने अपने थॉट पर ध्यान दिया है। तो मन का हमारे तन के ऊपर प्रभाव बहुत पड़ता है, इसीलिए कहते भी हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर अच्छा है तो हमें हरिद्वार जाने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें वहीं से ही हीलिंग मिल जाती है, हमें खुशी मिल जाती है। लेकिन आज की डेट में अगर हम पूछें लोगों से कि आप कैसे हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ आप कैसे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे?
0: बहुत बढ़िया।
1: बहुत बढ़िया। और लोगों से पूछेंगे तो क्या कहेंगे? अधिकतर लोगों का जवाब क्या रहता है?
0: ठीक है, अच्छे हैं।
1: ठीक है, अच्छे हैं,
0: ऑल गुड,
1: चल रही है, कट रही है। और सुबह सुबह जब लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो भी उनकी भाषा कैसी हो गई आज की डेट में? मिलते के साथ कहते हैं हाय।
0: हाँ जी।
1: अगर हाय शब्द को हिंदी में लिखा जाए तो हाय हाय है। तो हमारी हर एक वर्डिंग्स में टेंशन दिख रही है, हमारी चाल चलन में टेंशन दिख रही है, हमारा एक दूसरे के साथ जो बात करने का तरीका है उसमें कहीं पर भी खुशी दिखती नहीं है। आज लोग गुड मॉर्निंग भी नहीं कहते, सीधा मॉर्निंग
0: जी,
1: ना गुड है नहीं तो मॉर्निंग कैसे कहेंगे। तो हमारे जितना हम नेगेटिविटी में रहते हैं हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और उस स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है, बॉडी से फिर वो हमारे रिलेशंस में भी जाता है और धीरे धीरे हम अपने आप की पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल करते हैं। तो सबसे पहले हमें मन को बहुत पॉजिटिव थॉट सुबह उठते के साथ अगर हम देते हैं, फिर आप उसका इफेक्ट देखेंगे कि आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, और आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ चलेगी।
0: बिल्कुल सही बात है। प्रिया जी आप क्या कहेंगी?
2: जी बिल्कुल सही है कि मन का प्रभाव तन पर है और तन का प्रभाव मन पर है, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस के दौरान क्या प्रभाव होता है। तो विशेष जैसा मैं खुद अनुभव एक बार किया कि ड्राइविंग के टाइम पे अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो वो भी एक तरह से मैं यही कहूंगी कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस के वो लक्षण है
0: जी,
2: कि आप प्रेजेंट में नहीं है। और प्रेजेंट में आपको क्या देखना है, दाएं बाएं आगे ये सब गाड़ियां देखनी, लोगों को देखनी है, लेकिन लोग क्योंकि पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं, इसीलिए उनके थॉट्स कैप्चर हो जाते हैं, यानी अभी जो सोचना है उसकी बजाय वो आगे पीछे का सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से जब माइंड को या बॉडी को, माइंड के थ्रू बॉडी को एक्सेलेरेटर को प्रेस करना चाहिए, कभी ब्रेक दब जाता है, और ब्रेक को जब प्रेस करना चाहिए वो एक्सेलेरेटर भी दब जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें समझनी होगी कि जहां एक्सीडेंट मैक्सिमम इसी कारण से हो रहे हैं कि ब्रेक दबाना चाहिए था लेकिन गलती से, और गलती कहाँ से हो रही है, बिकॉज ऑफ माइंड कनेक्शन विद द बॉडी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो वहां मैं एक्सेलेरेटर प्रेस कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा हमारे को दुष्प्रभाव दिखता है, इसीलिए जो हम कहें कि स्ट्रेस को हम मैनेज करना सीखें, प्रेजेंट में जीना सीखें, जैसे कि ज्योति जी ने कहा वो सबसे बढ़िया चीज है। प्रेजेंट इज वाकई में अ प्रेजेंट, मैं जो अभी कर रहा हूँ उसका फल मुझे नेक्स्ट मिलना है। मैंने ब्रेक प्रेस नहीं किया, एक्सेलेरेटर प्रेस किया तो उसका गिफ्ट मुझे मिला कि एक हिट हुआ।
0: बिल्कुल,
2: इसीलिए आप प्रेजेंट में रहना सीखें, क्योंकि माइंड और बॉडी का बहुत जबरदस्त कनेक्शन है
0: जी।
2: अगर माइंड के पास जो सूचना है वो बॉडी के अंगों तक वो सेकंड्स में पहुंचाती है, मोटर एंड सेंसरी नर्व्स के थ्रू, लेकिन अगर वहां पर अगर कुछ सेकंड्स का जर्क आ जाता है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस चीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक हाथ होता है माइंड और बॉडी के बीच के संतुलन को बिगाड़ने में।
0: बिल्कुल,
2: तो इस संतुलन को बनाए रखने में हमारे को, जो मैं तो यही कहूंगी कि मेडिटेशन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, कि वो सडनली आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो, जो एक डैन हैरिस करके एक जो मैं कहूँ न्यूज रीडर है
0: जी,
2: और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, एग्जैक्टली तो मुझे नाम पूरा याद नहीं, पर 10% हैप्पीनेस ही सेड अबाउट इट, कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, उन्हें न्यूज प्रेजेंट करने के टाइम पे इतना हाइपरटेंशन होता था, स्ट्रेस होता था, एंजाइटी होता था, कि बहुत सारी चीजें बिगड़ रही थी। तब उन्होंने मेडिटेशन पे बहुत रिसर्च की और प्रैक्टिकल करके देखा, और उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि एटलीस्ट 10% चेंजेस तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, आपके स्ट्रेस लेवल पे, एंजाइटी पर उसका असर जरूर होगा और वो कंट्रोल होगा, तो फिर बॉडी एंड माइंड का बैलेंस भी नेचुरल एंड ओबवियस जो है वो आप गेन कर पाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया,

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी कहते हैं कि जो सोचता है वो वैसा ही बन जाता है, तो ये जो सोचता है वैसे ही बन जाता है, ये साइंटिफिकली कितना ट्रू है?
1: इसको अगर हम फिलोसोफर की भाषा में देखें तो विवेकानंद जी ने भी ये कहा है कि जो हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं
0: जी।
1: और बहुत सारे ऐसे और भी फिलोसोफर हुए कि जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। तो क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं, इसका अगर आप प्रैक्टिकल करके देखें, अगर आप बैठे हैं और कोई ऐसे मोमेंट को आप याद कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी थी, तो आपको बैठे बैठे भी आपका चेहरा कैसा होगा? आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आएगी
0: जी,
1: क्योंकि आप उस थॉट में हैं। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात पर विचार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो कहीं गंभीर है उस पर अगर आप विचार करें तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन वैसा ही होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे चेहरे के भाव होते हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि विचार हमारे बीज है लाइफ के, तो जैसा आप बीज डालेंगे फल वैसा ही आपको मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: हमारी लाइफ वैसी ही बनती जाती है जैसे हमारा थॉट प्रोसेस चलता है
0: जी।
1: इसीलिए आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अपनी सोच को बदलो
0: जी,
1: अपनी सोच का परिवर्तन करो। आज अगर हम पुरानी सोच को देखते हैं जिसे हम पुरानी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आज हम भी फिर वैसा ही चीज़ों पर ढलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम नई सोच की बात करते हैं तो सोच नई होने का मतलब कुछ नया हमें सीखना।
0: बिल्कुल।
1: ना कुछ नया हमें सीखना, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनको तो हम एज इट इज ही लेंगे। अगर हम ए बी सी डी की बात करते हैं तो आज भी ए फॉर एप्पल ही पढ़ा जाता है, आज भी ए वैसा ही लिखा जाता है जैसा पहले लिखा जाता था। तो उनमें अक्षरों में कोई चेंजेस नहीं है, तो बेसिक चीजें तो वही है। अगर हमारे विचारों में महानता है, श्रेष्ठता है, दूसरों के लिए अच्छे भाव है, दूसरों के लिए हम अच्छा सोचते हैं, तो नेचुरली हमारे पास वही आएगा, वैसे हमारी लाइफ बनेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ तो लोग बुरा ही कर रहे हैं
0: जी,
1: क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है
0: जी।
1: हमारी अच्छी सोच कुछ समय के बाद हमें रिजल्ट देती है।
0: बिल्कुल।
1: कोई भी चीज़ अगर आप बो रहे हैं और अच्छा फल अगर आप बीज लगा रहे हैं और उसका लंबे समय तक आपको फल लेना है, तो डेफिनेट उसका वेट तो आपको करना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर हमने आज ही बीज बोया और कल हम वेट कर रहे हैं कि मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारी लाइफ के अंदर हमें अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना है। और इसको आप जितना प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने विचारों से सृष्टि में बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन किया है। हम उनकी आज बातें भी सुनते हैं जिन्होंने अपने थॉट के ऊपर कमांड करके अपनी बॉडी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, माना उसी अकॉर्डिंग बॉडी भी चलने लग गई, जिनकी बीमारियां अपने विचारों से ठीक हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। कुछ लोगों ने अपने विचारों से अच्छे भले माहौल को भी बिगाड़ दिया।
0: बिल्कुल।
1: वैसे लोग भी हम देखते हैं। तो हमारे विचार हमारे जीवन की एक दिशा निर्देश देते हैं, हमारे जीवन के वो बीज हैं जो जीवन रूपी वृक्ष को वैसा बनाते हैं जैसा हम बीज बो रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं तो आपकी लाइफ जरूर अच्छी बनेगी। और विचार ही सारी चीज़ों का जड़ है, उसी पर ही सब चीज़ें डिपेंड करती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, आजकल वर्क कल्चर, रिलेशनशिप, फैमिली में कहीं ना कहीं टॉक्सिक एनवायरनमेंट जरूर पाया जाता है, तो क्या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहकर भी हम अपने माइंड को पूरी तरीके से पीसफुल रख सकते हैं?
1: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट आपने कहा कि तीनों चीज़ें, जो वर्क प्लेस बोला आपने और सबसे इम्पोर्टेंट जो घर बोला, वहाँ टॉक्सिक एनवायरनमेंट का पाया जाना, एंड इट्स रियली ट्रू।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सत्य है कि आज टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता जा रहा है। कितने ही लोग हैं जो शाम को वापस घर जाना नहीं चाहते हैं, पर जाना है। क्यों? क्योंकि और कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। कितने ही लोग हैं जो सुबह उठकर ऑफिस आना नहीं चाहते हैं। कितने ही बच्चे हैं जो स्कूल भी नहीं जाना चाहते, जबकि स्कूल सबसे ईजीएस्ट जो कहें प्लेस है खुश होने का, आगे बढ़ने का, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन लोग न, बच्चे नहीं जाना चाहते। तो ये टॉक्सिक वर्ड यानी जहर, और जहर माना ही बहुत ही ज़्यादा हाईली नेगेटिव, जो हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को, दिमाग को, इनफैक्ट आत्मा को भी डैमेज कर रहा है। तो यहाँ पर जो शब्द बोला टॉक्सिक एनवायरनमेंट, तो क्या यहाँ पीसफुल 100% रहना पॉसिबल है? तो मैं ये ज़रूर कहूँगी हाँ है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा एबनॉर्मल होना पड़ेगा, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए करना होगा। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आप अपने लिए करते हैं, दवाई लेते हैं, परहेज करते हैं, तो यहाँ भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, क्योंकि हम हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट में 24/7 रह रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर जो एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, लेकिन है तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, जो विवेकानंद स्वामी जी जब विदेश गए थे तो उनके ड्रेस को लेकर के पूरा ही जो वहाँ का जो लोग थे उन्होंने मजाक उड़ाया था, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था, बहुत हंसे थे। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट दिए गए थे, जबकि बाकी सबको आधा घंटा दिया गया था, लेकिन उनको सिर्फ 2 मिनट दिए गए थे बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, कि वो किस तरीके से आए हैं। तो उस एनवायरनमेंट में, हालांकि हमारे लिए अगर हम खड़े हों तो हमारे लिए तो ये हाईली टॉक्सिक है।
0: बिल्कुल।
1: तब वहां उनकी ये 2 शब्द, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पर इतनी तालियां बजी थी जिसकी गूंज पूरे विश्व में गूंजी। पर क्या मैं अपने आप को अगर वहां खड़ा रखती हूँ तो क्या मैं इतनी कॉन्फिडेंटली खड़ी हो सकती हूँ? तो वो क्यों इतने कॉन्फिडेंट हो पाए? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया था, समाज के ऊपर बाद में किया, पहले अपने पर काम किया। टॉक्सिसिटी आज हर जगह है, लेकिन सबसे पहला टॉक्सिक पना जो है मुझे मेरे अपने अंदर का खत्म करना है।
0: बिल्कुल।
1: मैं छोटी छोटी बातों पर डाउन हो जाती हूँ, अपने को इंसल्टिंग फील करती हूँ, गिल्ट मेरे अंदर इतने सारे हैं खुद को लेकर के। तो ये सारी चीज़ों को मुझे पहले अपने आप को क्योर करना है, हील करना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है। जो उन्होंने किया बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी वो ये कर पाए। आपको जहाँ से एनर्जी मिलती है आप वहाँ से अपने आप को अपलिफ्ट करें, ऊपर करें, अपने आप को मोटिवेट करें, कॉन्फिडेंट बने, और फिर उसके बाद आप महसूस करेंगे कि 100% जो एकदम नेगेटिव आपके लिए एनवायरनमेंट है, वहाँ भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। इनफैक्ट आपको पता है कि ये मेरा एग्जाम प्लेस है, एग्जाम टाइम है, तो आप अपना वहाँ बेस्टेस्ट प्ले करके आएंगे, क्योंकि आपको पता है इसके बाद मेरी सक्सेस होनी ही होनी।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी, हम सबकी कोई ना कोई एक गट फीलिंग होती है, तो क्या ये गट फीलिंग एक्चुअली बॉडी का इंटेलिजेंस है या सिर्फ इमेजिनेशन?
1: इसको सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कह सकते हैं, कई बार हमारी बॉडी का भी, क्योंकि हमारे 10 ऑर्गन्स हैं ऐसे जिसमें 5 जो हैं वो कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं।
0: क्या बात है।
1: तो ज्ञान इंद्रियां जो हमारी है वो हमें कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशन कराती हैं किसी भी चीज़ को देख करके। अगर हमें अंदर से आता है कई बार किसी व्यक्ति को देख करके, नहीं ये रॉन्ग है
0: जी,
1: ये ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी वो सिक्स सेंस पावर जिसको हम कहते हैं वो हमें ये शो करती है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, और उससे हमें बचाव के लिए वो सावधान करती है। कई बार हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हम ये कह भी देते हैं कि नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, और बाद में कुछ समय के बाद जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है तो हम फिर वही बात दोहराते हैं कि पहले मुझे ये फीलिंग आई थी लेकिन मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं। तो ये जो हमें सिक्स सेंस पावर हमें, और हर एक के पास ये सिक्स सेंस पावर होती है, इनफैक्ट जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी तो ये सिक्स सेंस पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है
0: जी।
1: क्योंकि उनके वो जो 5 ऑर्गन्स हैं जो एक हेल्दी व्यक्ति के पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास उसमें कहीं ना कहीं मिस होता है, तो ये गॉड गिफ्टेड होता है कि उनको वो चीज़ फील होती है
0: जी।
1: ये सारी चीज़ें आप देखिए, इसमें जो 5 ऑर्गन्स जिसको मैंने बताया, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हम स्पर्श करते हैं किसी चीज़ को, टच से पता चल जाता है कि रॉन्ग है या राइट है
0: जी,
1: जिसको आजकल बच्चों को भी सिखाया जा रहा है। अगर हम स्मेल से हमें पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ नेगेटिविटी है, वो स्मेल से भी उन चीज़ों को भाप सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे को सिर्फ हमने देखा नहीं है लेकिन हमारे माइंड में वो कहीं ना कहीं एक दृश्य बना देती हैं, तो वो दृश्य भी है जो कि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव की इंस्टीट्यूशन कराता है। तो ऐसे 5 ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे ये 5 इंद्रियां हैं, हाथ कान नाक मुंह, ऐसे इसी के ही उसमें स्किन है हमारी, जो स्किन भी हमें पता लग जाती है। कहीं आप देखिए कोई किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि ज़रा सा ठंडे में भी पता लग जाता है कि नहीं कुछ तो है यहाँ पर जो कि हमें वो फील हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हमारे पास होती हैं और इसको हम सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं कह सकते हैं, गट फीलिंग है, और इन चीज़ों पर हमें अगर ध्यान देंगे हम तो हमें उस चीज़ का, ये कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ से हमें एक गिफ्ट मिला हुआ है कि हमें पहले से ही चीज़ों को भांपने की एक हमें विधि मिलती है, बशर्ते हम उसको पहचाने और उसके अनुसार काम करें, रिएक्ट नहीं करें, लेकिन वो हमें एक चेतावनी दे रही है। तो सावधानी रखना तो गलत नहीं है, तो हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन टू मच में भी हम ऐसा ना हो जाए।

0: जो हर एक चीज को उसी नजरिए से देखने लग जाए। तो हमें उसको समझना है, उसे समझ करके फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करना है।
1: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बी के ज्योति जी और बी के प्रिया जी। क्या डिटैचमेंट यानी कि वैराग्य जिसे हम कहते हैं, इससे फिजिकल रिलैक्सेशन इम्प्रूव होती है या नहीं, इस पे आप दोनों का क्या कहना है?
1: ये बिल्कुल इम्प्रूव होती है और बहुत वंडरफुली इम्प्रूव होती है। जिसका मैं छोटा सा एग्जांपल कहूँ कि आपके हाथ में आईफोन है, वो भी सबसे हाईएस्ट वर्जन का, जो सबसे लेटेस्ट, वो कितने का है ऑलमोस्ट, आप बताएंगे जरा?
0: अप्रोक्स 1 लाख
1: ओनली, लेटेस्ट,
0: उससे ज्यादा
1: ज्यादा है उससे। और आपको ये दिया गया है और लोकल में आप खड़े हैं, लोकल ट्रेन में,
0: ओके,
1: एंड यू आर गोइंग, जहाँ आपको पता है स्नैचिंग होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, धक्का लग रहा है, गिर सकता है, आपके हाथ में है वो,
0: जी
1: ठीक है, तो आप उसे कितने कॉन्शियसली पकड़ेंगे?
0: बहुत ज्यादा।
1: इनफैक्ट अपने को भी इतना केयरिंग से नहीं खड़ा करेंगे जितना उसको पकड़ेंगे। और उसको अगर एक घंटे तक आपको एज इट इज पकड़ के रखना है या फिर एक दिन पूरे के लिए एज इट इज पकड़ के रखना है, तो फिर आपका कैसा रहेगा हाथों का?
0: नहीं, फिर तो ये पेन करने लगेगा,
1: पेन करने लगा, तब वो मोबाइल आपको फिर पेनिंग फील होता है, जबकि वो सबसे ज्यादा अजीज चीज आपके पास है। सेम ये कई बातें हैं, कई लोग हैं, कई चीजें हैं जिनको हमने पकड़ कर रखा है अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में, लेकिन वो क्योंकि एक घंटे या एक मिनट के लिए नहीं पकड़ा है, पता नहीं कितने सालों से पकड़ा हुआ है
0: जी,
1: तो वो पेन हो रहा है। और वो पेन क्योंकि मैं इस चीज की आदि हो गई हूँ इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो पेन है
0: जी।
1: मुझे कई बार वो हिट भी करता है, लेकिन फिर क्योंकि मैं आदि हूँ तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ, लेकिन हिट हो रहा है। तो जब मैं उन चीजों को, जब मोबाइल को मैंने पर्स में रख लिया, मैंने परचेज किया पर्स और उसमें रख लिया, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ
0: जी,
1: तो उसी प्रकार से जब मैं लोगों के साथ, चीजों के साथ, बातों के साथ इस प्रकार से हैंडल करना सीखता हूँ कि हाउ टू हैंडल देम, तो यानी एक तरह का वैराग्य, हैंडलिंग इज नथिंग, हैंडलिंग इज एक अपने अंदर डिटैचमेंट की पावर बढ़ाने का बात होती है, कि मैंने जिसने, जिसका मुझे पता चला कि वो व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहता, तो मैंने अपने अंदर एक संकल्प डाला, क्योंकि वो भी एक इंसान है और उसका अपना एक नजरिया है, वो भी एक जीवंत शक्ति है और उसके अपने चॉइसेस हो सकते हैं। तो ये चीज जब मैं अपने अंदर बार बार दोहराती हूँ तो मैं डिटैच हो रही हूँ,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन टुडे आई एम लर्निंग हाउ टू हैंडल ह्यूमंस
0: जी,
1: ठीक है। तो डिटैचमेंट इज अ वेरी गुड पावर और बहुत बड़ी पावर है। और जब मैं अपने आप को चीजों से डिटैच होना शुरू करती हूँ, अगर मान लीजिए वो फोन लोकल में आपके हाथ से गिर जाता है और तब वहाँ आप रोना स्टार्ट करती हैं, लेकिन रोने से अब तो कोई फायदा नहीं है
0: जी,
1: अनटिल एंड अनलेस यू हैविंग एन इंश्योरेंस, लेकिन फिर भी अगर गिर गया है तो आप रो रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने आप को एक थॉट देते हैं कि चीजों को तो जाना है, आज या कल वो जाना है, लेकिन कल जाता तो फिर मैंने उसे यूज कर लिया है तो मेरे को थोड़ा सा शायद रिलैक्स होता, लेकिन आज ये कि आज ही खरीदा था, आज चला गया, लेकिन अपने आप को फिर भी फिट करने के लिए मैं डिटैच हो सकता हूँ कि चीजों को आज नहीं तो कल जाना ही है, इसको इसी रीति से जाना था, ये एक चैप्टर है कि आगे से मैं इतना कॉस्टली नहीं लूंगा और अगर लूंगा तो इस तरीके से उसको नहीं उठाऊंगा। तो अपने अंदर मैंने फिर से एक हैंडलिंग जो इन्फॉर्मेशन गेन की, लेकिन एक तरह से ये डिटैचमेंट इन्फॉर्मेशन मैंने अपने अंदर गेन की है, और जितना मैं डिटैच होता चले जाता हूँ तो मैं चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, बातों के प्रति, मैं अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, क्योंकि ये तीन चीज़ों में हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं
0: जी,
1: तो इन सब चीज़ों से जितना मैं डिटैच होता हूँ मैं उतना रिलैक्स रहता हूँ।
0: बिल्कुल सही बात है। ज्योति जी आप क्या कहेंगे इस पे?
2: सबसे पहले तो हमें डिटैचमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि डिटैचमेंट किसको कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में लोगों को ये शायद पता ही नहीं है कि डिटैचमेंट क्या है। वैराग्य का मतलब घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, जॉब छोड़ देना, और मतलब हम सिर्फ छोड़ दें उसको हम वैराग्य कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैराग्य चीज़ों को छोड़ना नहीं है, जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि किसी भी चीज़ को हैंडल करना, मतलब मैनेज करना, हमें हर एक चीज़ को मैनेज करना है, छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। छोड़ने से तो आप किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे, बार बार उसकी याद सताती रहेगी, तो माइंड में तो आपने वो रखा ही है
0: जी।
2: अगर किसी को कहा जाए कि एक सफ़ेद रंग का हाथी है और उसको आपको नहीं सोचना है, तो कहीं ना कहीं वो सफ़ेद हाथी ही सोच रहे हैं लोग। तो हमें डिटैच होना है, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब उन चीज़ों को यूज़ करें एज ए इंस्ट्रूमेंट और उसको हम छोड़ भी दें एज ए इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमें ये चीज़ें मिली हैं, ये गैजेट्स मिले हुए हैं, ठीक है हमें यूज़ करना है इसे, लेकिन अभी हमें कहा जाए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए, तो मेरी बार बार उसकी तरफ ध्यान ना जाए, मेरा बार बार उसी के ऊपर हाथ ना जाए, इसको कहते हैं डिटैचमेंट। क्योंकि चेंज जरूरी है,
3: बिल्कुल।
2: कहीं पर भी टू मच में अटैचमेंट हमारे लिए दुखदायी हो जाता है, और जो लोग आगे नहीं बढ़ते वही दुख पाते हैं। इसीलिए हमें हर एक लाइफ की चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, हर रिलेशन को मैनेज करना है, लेकिन किसी के साथ हमें चिपकना नहीं है, क्योंकि वो हमें इरिटेट करेगा।
3: बिल्कुल सही बात है। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: हमें सबको यही कहना है कि सबके साथ रहे, सबके साथ खुश रहे, लेकिन किसी के साथ ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ पर उसका इतना असर हो जाए कि हम अपने जीवन को जी ना सके।
3: क्या बात है,
1: इसका बहुत बड़ा क्लोजनेस है, और इसको जितना हम गंभीरता से लें बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे क्वेश्चन स्ट्रेस का है, रिलेशंस का है, चाहे वो किसी भी बात का है, लेकिन माइंड बॉडी का रिलेशन शुरू से अंत तक रहेगा, और इसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि अगर माइंड ने कुछ कहा और बॉडी ने उसको नहीं समझा तो बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ को समझने के लिए टाइम दें, समय दें, अपने आप को वैल्यूबल रखें। कोई भी चीज़ आपको नीचे नहीं गिरा सकती है, याद रखें। सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को नीचे गिराते हैं या ऊपर उठाते हैं।
3: बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच
1: ओम शांति।
2: थैंक यू।
4: तो ये थी आज की डिस्कशन माइंड बॉडी कनेक्शन पर बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी के साथ। आज की कॉन्वर्सेशन से एक बात जरूर समझ आती है, जब माइंड शांत और बैलेंस्ड होता है तो बॉडी भी उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतने वैल्यूएबल थॉट्स शेयर करने के लिए। मैं हूं पलक, और आप सुन रहे थे नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम
4: कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहे हैं।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका। गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 पर संघर्ष की कहानी। और जैसा कि आपको पता है कि संघर्ष की कहानी में मैं लेकर के आती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ तो लाजवाब, कुछ तो और बेहतर किया है। उन्होंने अपने हौसले से, अपने जिंदगी जीने के तरीके से कुछ हटके नाम कमाया है, तो उनकी कहानी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करने वाली हूँ जो टेलर से बने एक्टर, तो कैसे उनकी जिंदगी हर मोड़ पर बदलती है और कैसे उनका रुख हुआ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। एक ऐसा बच्चा जो गरीबी की वजह से चौथी कक्षा के बाद स्कूल नहीं जा पाया, एक ऐसा लड़का जिसने बहुत छोटी उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया, और एक ऐसा इंसान जिसने अपने हाथों से लोगों के कपड़े सिले, रात दिन मेहनत की और फिर एक दिन उन्हीं हाथों ने भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना ली। आज लोग उन्हें एक शानदार अभिनेता, कॉमेडियन और नेशनल लेवल पर सम्मानित कलाकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष छिपा है। केरल के साधारण परिवार में जन्मे ये इंसान हर आम बच्चे की तरह सपनों का मटका लेकर पैदा हुए थे, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। किताबें खरीदना, स्कूल यूनिफॉर्म लेना, फीस भरना, ये सारी चीजें उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और फिर वो दिन आया जब उन्हें चौथी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे सपने देखते हैं, इन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में सोचना पड़ रहा था। लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, कि वो हमेशा दूसरा रास्ता जरूर तैयार रखती है। स्कूल छूट गया लेकिन सीखना नहीं छूटा, और आज के जो हमारे मेन लीडर हैं, उन्होंने सिलाई सीखना स्टार्ट किया अपने चाचा के साथ में। तो कैसे ये सिलाई करने वाले टेलर बन गए एक्टर, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। और तब तक एंजॉय करिए इन प्यारे प्यारे गानों को, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ आपकी संघर्ष की कहानी होस्ट मोनिका।

सेव लाइफ ऑफ कोर्स, पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: फिरूसू
1: किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: कहानियां कुछ अन कही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल में दम।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज बता जय मोनिका। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ऑन रेडियो महारानी। मैं हूं आपके अपनी होस्ट मोनिका और स्वागत करती हूं आपका शो संघर्ष की कहानी में। और आज कहानी चल रही है केरला के तिरुवनंतपुरम के इंद्रांस की, जिनका रियल नाम तो इंद्रांस नहीं है पर फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें ये नाम दिया। और फिल्म इंडस्ट्री तक ये पहुँचे कैसे, यही कहानी का हमारा सफर है। तो वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी कभी हमारी सबसे बड़ी पहचान वहीं से बनती है जिसे हम सिर्फ एक छोटा सा काम समझते हैं। इंद्रांस ने पढ़ाई छूटने के बाद अपने चाचा से सिलाई का काम सीखना शुरू किया और यही आगे चल के उनका करियर बन गया। और उस समय इंद्रांस एक टेलर के रूप में काम कर रहे थे, कपड़े सिलना उनका पेशा था और इस काम में वो काफी माहिर भी हो गए थे। धीरे धीरे उनकी पहचान एक अच्छे दर्जी के रूप में बनने लगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये कला उन्हें सीधे फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा देगी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में उस समय कई फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम तैयार किए जा रहे थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उनके हुनर को पहचाना। फिल्म प्रोड्यूसर TMN चार्ली ने उन्हें एक फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम करने का एक मौका दिया और यही वो मौका था जिसने उनकी जिंदगी को एक नया टर्न दिया। अब इंद्रांस सिलाई की दुकान तक सीमित नहीं थे, वे फिल्म इंडस्ट्री के सेट्स पर भी काम करने लगे थे एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर। बड़े बड़े कलाकारों को करीब से देखने का उन्हें मौका मिल रहा था। कैमरा, लाइट्स और फिल्मों की दुनिया को वो बहुत ही करीब से देख रहे थे। उस समय शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कॉस्ट्यूम सिलने वाला ये व्यक्ति एक दिन कैमरे के सामने भी खड़ा होगा। कई सालों तक इंद्रांस ने पर्दे के पीछे काम किया। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। इंद्रांस को कपड़े सिलने का शौक था, इसलिए वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए, लेकिन किस्मत को शायद उनसे कुछ और ही काम लेना था। कॉस्ट्यूम का काम करते करते उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। शुरुआत में ये बहुत छोटे किरदार थे, लेकिन कई बार जो ऑडियंस है उसे बहुत ज्यादा ये किरदार पसंद आने लगे। और फिर आया साल 1993, फिल्म थी मैले परम्बिल अन्नवेड्डू। इस फिल्म में उनके काम ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो ऑडियंस थी पहली बार इस दुबले पतले अलग अंदाज वाले कलाकार को नोटिस करने लगी थी। लेकिन उनकी लाइफ में असली टर्निंग पॉइंट आया 1994 में रिलीज हुई फिल्म CID उन्नी कृष्णा BA BEd से। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इस फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो अचानक से ऑडियंस के फेवरेट बन गए। उनकी सादगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और मासूमियत लोगों को हंसाने का काम करने लगी थी और यही वजह थी कि ऑडियंस ने उन्हें दिल से स्वीकार कर लिया। और इसके बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जब इंद्रांस मलयालम सिनेमा के सबसे बिजी कॉमेडियन कलाकारों में शामिल हो गए। एक के बाद एक धांसू फिल्में उनके पास आने लगी। छोटे किरदार हों या बड़े, वो हर तरह के रोल को अपनाते थे और किरदार को बखूबी निभाया करते थे। 90s और 20s के स्टार्टिंग सालों में शायद ही कोई ऐसा मलयालम फिल्म प्रेमी होगा जिसने इंद्रांस को स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराया ना हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि सफलता मिलने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदले। वो आज भी वही इंसान है जिसे कभी सिलाई मशीन के सामने बैठकर घंटों मेहनत करने की आदत थी। उन्हें ना किसी तरह का घमंड है, ना कोई दिखावा, ना कोई शिकायत, बस उन्हें अपने हर काम को ऑनेस्टी से करना है। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने उन्हें सिर्फ कॉमेडियन के रूप में देखना शुरू कर दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्हें उसी दायरे में रखा गया, बांध दिया गया। लेकिन इंद्रांस के अंदर एक ऐसा कलाकार मौजूद था जो कि चारों दिशाओं में घूमना चाहता था। वो अपने अभिनय से, अपने किरदारों से हर तरह की भावनाओं को, हर तरह के इमोशंस को ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे। तो क्या वो इससे पहुंचा पाए या अभी भी वो एक कॉमेडियन है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। उनकी जर्नी के बारे में हम आगे बात करेंगे संघर्ष की कहानी में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ आपकी संघर्ष की कहानी होस्ट मोनिका।

0: दांतों में ब्रश घुमाते समय जिगजैग करें, ना कि सड़क पर बाइक घुमाते समय।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका। इसी प्यार सी गाने के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपकी संघर्ष की कहानी होस्ट मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी। और आज संघर्ष की कहानी में एक कहानी चल रही है, जर्नी चल रही है, सफर चल रहा है इंद्रांश का। और अगर देखें तो कई कलाकारों की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उन्हें अपनी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई पहचान से लड़नी पड़ती है। इंद्रांश की जिंदगी में भी वो टाइम आ चुका था। सालों तक लोगों ने उन्हें एक कॉमेडियन के रूप में देखा था। जब भी वो स्क्रीन पर आती ऑडियंस के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाया करती थी। उनकी मौजूदगी ही उनके एंटरटेनमेंट की गारंटी बन जाती थी। लेकिन हर बार जब कैमरा बंद होता तो उनके अंदर का एक कलाकार चारों दिशाओं में भागने का प्रयास करने लगता था। वो अपनी अभिनय क्षमता से नई सीमाओं को छूना चाहते थे। लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री में एक पहचान बन जाती है तो उस पहचान को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। और फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कलाकारों को एक खास छवि में बांध दिया जाता है। अगर आप कॉमेडियन हैं तो लोग आपको कॉमेडियन ही देखना चाहते हैं। अगर आप विलेन हैं तो लोग आपको विलेन ही मान लेते हैं। और ऐसा ही कुछ इंद्रांश की लाइफ में भी हो रहा था, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें वो अवसर नहीं मिल रहा था, उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा था जिसमें वो अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को, अपने जो सीरियस कैरेक्टर को बाहर निकाल सके। लेकिन उन्होंने इंतजार किया, थोड़ा सब्र रखा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने खुद पर कॉन्फिडेंस रखा, बिलीव रखा कि एक न एक दिन मुझे वो कैरेक्टर जरूर मिलेगा जो मैं करना चाहता हूँ। फिर आया साल 2017 और फिल्म आई आलो रुक्कम। और इस फिल्म में इंद्रांश ने कैसे पिता का किरदार निभाया जो अपनी बिछड़ी हुई बेटी की तलाश में निकलता है। ये कोई कॉमिक रोल नहीं था बल्कि एक ऐसा किरदार था जिसमें बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा तन्हाई, बहुत ज्यादा होप छिपी हुई थी। एक ऐसा टूटा हुआ पिता छुपा हुआ था जो हर कोने में, हर इमोशन में, हर तरह की सिचुएशन में अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि इंद्रांश ने इस कैरेक्टर को इतनी बखूबी से निभाया है। और जब ऑडियंस ने उन्हें इस कैरेक्टर में देखा तो उन्हें उतना ही प्यार दिया जितना उनके कॉमिक रोल को दिया करते थे। फिर आया वो पल जिसका वो दशकों से इंतजार कर रहे थे। उन्हें केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। सोचिए कैसा इंसान जिसे कभी चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, जिसने सिलाई मशीन पर बैठकर जीवन शुरू किया था और जिसने सालों तक छोटे छोटे किरदार निभाए थे, उसी इंसान को अब राज्य का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कहा जा रहा था। फिर आई एक और फिल्म जिसने उन्हें पूरे भारत में नई पहचान दी और वो फिल्म थी होम। जिस फिल्म में उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट नाम के एक साधारण पिता का किरदार निभाया। कोई हीरो वाली एंट्री नहीं, कोई बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं, बस एक नॉर्मल से पिता के इमोशंस। और शायद यही वजह थी कि ये किरदार लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच गया। हर पिता ने खुद को उस किरदार में देखा, हर परिवार ने उस कहानी में अपने रिश्तों की झलक देखी। और होम मूवी रिलीज होने के बाद इंद्रांश सिर्फ मलयालम सिनेमा के अभिनेता नहीं रहे, वो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गए। लोग उनकी फिल्मों को ढूंढ ढूंढ कर देखने लगे, नई नई ऑडियंस उनके साथ जुड़ने लगी और जो लोग उन्हें सिर्फ कॉमेडियन समझते थे, उन्हें एहसास हुआ कि इंद्रांश सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि ऑलराउंडर है। और उनकी कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्हें उनके काम के लिए नेशनल अवार्ड कब और कहां मिला और वो आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जर्नी को किस तरह से और निखारा है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। मैं हूँ आपकी होस्ट मोनिका।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: ए भाई दर देख के चलो।
3: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
2: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
3: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
2: जाने कहां गए वो दिन।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी, आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विदा जय मोनिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी। और आज संघर्ष की कहानी में सफर चल रहा है इंद्रांश जी का, केरला के तिरुवनंतपुरम के इंद्रांश जी का। और उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप सपने देखते हो तो भले ही आप किसी छोटे से काम से शुरू करो, बड़े बड़े सपनों को पूरा करने का मौका आपको मिलता चला जाता है। और उनकी इस कहानी ने हमें ये भी सिखाया है कि कभी भी सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए, खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। और उनके इसी तरीके ने, इसी तरह से बड़े बड़े सपनों को देखने के अंदाज ने उन्हें 2025 में नेशनल अवार्ड तक पहुंचाया। और इंद्रांश की कहानी हमें सिर्फ मेहनत करने के लिए नहीं सिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि सपने देखने कभी नहीं छोड़ने चाहिए गाइस। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज देती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। शायद वो अपॉर्चुनिटीज हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर हो, शायद उसमें रिस्क हो या फिर हमें खुद पर ही भरोसा ना हो, लेकिन अक्सर वही मौके हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देते हैं। अगर इंद्रांश सिर्फ एक टेलर बनकर रुक जाते और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में मिलने वाले उस पहले मौके को ना अपनाया होता तो शायद दुनिया एक बेहतरीन एक्टर को कभी देख ही नहीं पाती। इसीलिए सपने देखिए, खुद पर भरोसा रखिए और जब जिंदगी आपके दरवाजे पर कोई नया मौका लेकर आए ना, तो उसे पहचानिए और हिम्मत के साथ उससे एक्सेप्ट करिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। तो अभी मेरा वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का, मिलते हैं एक नई कहानी में एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सुनते रहिए और साथ ही साथ अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो लोगों तक पहुंचानी है तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर अपनी कहानी को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए ड्रीम के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपने अपनों का भी बहुत ख्याल रखिए, तबीयत को तंदुरुस्त रखिए क्योंकि आप ही अपनी पहचान हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टाटा बाय बाय।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला। और आज पोषण की पाठशाला में हम बात करने वाले हैं बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एक नया जन्मा हुआ बच्चा और उसकी देखभाल, उसका पोषण।

0: यह हर माँ बाप के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक सवाल अक्सर आता है, 0 से 6 महीने तक के बच्चे को क्या खाने में देना चाहिए, क्या सही पोषण है, कैसे सवाल का सही जवाब मिले। इसके साथ ही क्या सिर्फ माँ का दूध काफी होता है बच्चे के लिए, क्या बच्चे को पानी देना चाहिए या नहीं, और कैसे इंश्योर करें कि बच्चे को सही पोषण मिल रहा है। आज पोषण की पाठशाला में इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आनंद नारायणन, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के सही पोषण और केयर पर। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, आज पोषण की पाठशाला में हम बात करने वाले हैं 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए सही पोषण आखिर क्या है। तो डॉक्टर, ये बताइए, अगर बात की जाए 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कम्प्लीट न्यूट्रिशन क्या होता है। इसी के साथ, कई बार लोग कहते हैं कि माँ का दूध बेस्ट है, लेकिन साइंटिफिकली ब्रेस्ट मिल्क इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। और साथ ही ये भी बताइए, इस एज ग्रुप में बच्चे के लिए सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही काफी होता है या फिर इसके साथ कभी कभी पानी भी दे देना चाहिए।
1: थैंक यू सो मच अंजलि फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने वैसे ही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इस मदर्स मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में, वो पर्याप्त मात्रा में हैं। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में बच्चे के सही न्यूट्रिशन के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद, अगर बात की जाए फॉर्मूला फीडिंग की, माँ अगर वर्किंग हो या कोई मेडिकल इशू हो तो फॉर्मूला फीडिंग कब और कैसे सेफ माना जाता है? साथ ही ये भी बताइए कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ के खाने पीने का बेबी के हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है?
1: अंजलि, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आजकल काफी कंसर्न रहता है खासकर वर्किंग मदर्स में कि वंस दे जॉइन बैक टू वर्क को कैसे फीडिंग कंटिन्यू करें जब खासकर मेटर्निटी लीव नहीं मिलता 6 महीने का। तो उसमें आपका फर्स्ट इशू ये रहता है कि दैट यू शुड गो फॉर ब्रेस्ट मिल्क। अब इसमें तरीका ये होता है कि ब्रेस्ट मिल्क को आप एक्सप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं। ये स्टोर करने के लिए आप या तो किसी भी स्टील कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रॉपर साफ कंटेनर में ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का तरीका ये होता है कि आप कलेक्ट करके स्टोर करके फ्रिज के डोर के टॉप शेल्फ में रख दें, एंड दैट इज गुड टू यूज फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। सो आप ये चीज पहले कर सकते हैं। सेकंड, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माता जो माँ का डाइट का काफी क्वेश्चन आता है कि माँ ये खा सकती है कि नहीं खा सकती। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर्स कैन हैव एवरीथिंग व्हिच दे वांट। खाली इतना ध्यान रखें कि वो जो भी खाएं हाइजीनिक खाना खाएं, वो बीमार ना पड़े, उससे फर्क पड़ सकता है बच्चे की फीडिंग के ऊपर। अदरवाइज मदर के डाइट को लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया, अगर आप वर्किंग है या फिर कोई मेडिकल इश्यू है तो आप किस तरह से अपनी ब्रेस्ट फीड को स्टोर करके रख सकते हैं सो दैट की बेबी ब्रेस्ट फीड ही ले। एंड इसके साथ ही डॉक्टर ने ये भी बताया कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, आप न्यू मॉम है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको अपने सही न्यूट्रिशन साथ ही अपने डाइट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। प्रॉपर रेस्ट कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, इसके साथ ही आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए सीजनल वेजेस, सीजनल फ्रूट्स एंड थोड़ा बहुत वर्कआउट। ये सारी चीजें आपके लिए बेहद हेल्पफुल है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में 0 से 6 मंथ के बेबीज के लिए कितना न्यूट्रिशन और किस तरह का न्यूट्रिशन काफी होता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आनंद। तो डॉक्टर, अगर बात की जाए ग्रोथ और इम्यूनिटी की, तो ये बताइए 0 से 6 महीने के न्यूट्रिशन का बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट और इम्यूनिटी से क्या रिलेशन होता है, और साथ ही अगर बात की जाए इस फेज की, अगर इस फेज में बच्चे को सही पोषण ना मिले तो आगे चलकर किस तरह के प्रॉब्लम्स इन बच्चों को हो सकती है। एंड इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चे का वेट गेन और ग्रोथ को मॉनिटर क्यों करना जरूरी होता है।
1: जैसे कि अंजलि, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि 6 महीने के न्यूट्रिशन में जो बच्चे, जो मदर्स मिल्क होता है, उसमें ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं और कॉग्निशन, इंटेलिजेंस सब इम्प्रूव करते हैं अगर बच्चा सिर्फ ब्रेस्टफेड हो तो। और अगर इस पोषण में किसी भी कारण की वजह से अगर बेबी का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो आगे जाके इम्यूनिटी वाइज, वेट गेन होने के वाइज या ग्रोथ वाइज काफी बच्चों को इश्यू आ सकती है। जैसे कि बार बार जुकाम खांसी पकड़ना, बार बार दस्त लगना या बार बार हॉस्पिटलाइज होना, ये सारी दिक्कतें जिन बच्चों को स्टार्टिंग 6 महीने में प्रॉपर पोषण ना मिले उनमें दिक्कत आ सकती है। बच्चों के वेट गेन और ग्रोथ को मॉनिटर करना काफी जरूरी होता है। जब हम मानते हैं कि ग्रोथ, व्हाट वी मीन बाय ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन वेट एंड एन इंक्रीज इन हाइट एज वेल एज एन इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, इतनी चीजें हम देखते हैं। तो हमें वेट और ग्रोथ, वेट और हाइट जो हम मेजर कर पाते हैं, ये मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने वैक्सीन विजिट पे जाएं या फिर आप आंगनवाड़ी में अगर आप लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो कम से कम वेट जरूर मॉनिटर करें। हम ऑन एवरेज अगर हम मोटी भाषा में बात करें, तो हमें ये होना चाहिए कि जो बर्थ का वेट है वो 6 महीने पे डबल होना हो जाना चाहिए, 1 साल की उम्र पे 3 गुना हो जाना चाहिए। तो इस मोटी एक फॉर्मूले से रखें कि 6 मंथ जो बच्चा अभी पैदा हुआ, मान ली 3 किलो का पैदा हुआ, तो 6 महीने पे रफली अराउंड 5 से 6 किलो का होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही हाइट, जो लंबाई जो बच्चे की होती है, वो नॉर्मली एक एवरेज 50 सेंटीमीटर का जब बच्चा होता है, जब डिलीवर होता है 50 सेंटीमीटर का उसका लंबाई रहती है, 1 साल के अंदर अंदर आते आते 75 सेंटीमीटर तक ऑन एन एवरेज बच्चों की आ जाती है। तो ये आप मेजर करें। साथ में जब भी आप जाएं वैक्सीन विजिट के लिए, हमेशा बच्चे का वेट और लंबाई और मस्तिष्क का ग्रोथ जरूर मेजर करवाएं, और जो ग्रोथ चार्ट्स लिखे होते हैं, जो होते हैं सबके पास, उस पे प्लॉट करवाएं या फिर एक एस्टिमेट, या फिर उनसे पता कर लें कि ग्रोथ सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ताकि आपको अर्लीस्ट साइन ऑफ डाइट प्रॉपर नहीं मिलना या पोषण प्रॉपर नहीं मिलना, आपको वेट से और लंबाई से आइडिया लग जाएगा।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसा कि डॉक्टर ने अभी बताया, ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बेबी के भूख को शांत करने के लिए नहीं होती है, बल्कि ब्रेस्ट फीडिंग से एक बच्चे को बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, साथ ही अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है। ऐसे में इंश्योर किया जाता है कि बच्चों को शुरुआती 6 महीनों में माँ का दूध मिले, जिससे कि हर एक बेबी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। जैसे कि अभी डॉक्टर ने कुछ पैरामीटर्स बताए, जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी बेबी की ग्रोथ, हाइट, वेट सही तरह से बढ़ रहा है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई भी रेड साइन है, तो प्लीज जाके डॉक्टर से जरूर मिले। अपना ख्याल रखिए, अपनी बेबी का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं 0 से 6 मंथ के बेबीज के लिए कितना न्यूट्रिशन सही है और किस तरह से उन्हें शुरुआती न्यूट्रिशन दिया जाए। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आनंद। डॉक्टर, अगर मैं मिथ्स की बात करूँ तो आज भी कई गाँव में या फिर घरों की बात की जाए, वहाँ कहा जाता है की घुट्टी, शहद या पानी देना बहुत जरूरी होता है शुरुआती दिनों में, तो ये कितना सही है और कितना हार्मफुल हो सकता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है बेबी ज्यादा रो रहा है, इसका मतलब वो अभी भूखा है या ब्रेस्ट फीड ढंग से नहीं ले रहा, तो ये क्या सिर्फ मिथ है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट है?
1: देखिए, इट इज स्टिल सरप्राइजिंग एंड इट इज अ फैक्ट दैट ये मिथ अभी भी चलता है कि घुट्टी देना, शहद देना या पानी देना की चीज लोग काफी अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। बट इन तीनों में से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी घुट्टी हो, शहद हो, आजकल चलता है ग्राइप वाटर का कॉन्सेप्ट चलता है, तो नहीं देना चाहिए। जितनी भी चीजें ये हैं, चाहे वो शहद, घुट्टी, ग्राइप वाटर, ये एक 6 महीने से कम के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये बच्चे को हार्म करा सकते हैं, एक पॉसिबल इन्फेक्शन का सोर्स कर सकते हैं। तो 6 महीने से कम के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। कोई घुट्टी नहीं, कोई शहद, ना ही पानी, ना ही ग्राइप वाटर। एंड पेरेंट्स काफी बार आते हैं इस कंसर्न को लेके कि बेबी ज्यादा रो रहा है तो उसका मतलब बच्चे का मक्खी माँ का दूध कम आ रहा है। कोई ये बात समझनी पड़ेगी कि बच्चे का रोने का सिर्फ एक कारण पेट नहीं भरना नहीं है। बच्चा बहुत सारे कारणों के सर होता है, उनमें से एक कारण डेफिनेटली ये है कि बच्चे को भूख लग रही है। बाकी कारण ये है कि बच्चा सुसु कर चुका है, पॉटी कर चुका है, बच्चा बहुत गर्म फील कर रहा है या बच्चा बहुत ठंडा फील कर रहा है, या सिर्फ बच्चे को गोद में लेना है। ये सारे कारण होते हैं बच्चे के रोने के फीडिंग के बाद भी। खाली ये ना सोचें कि बच्चा रो रहा है मतलब सिर्फ भूख लगी है। अगर आपने फीड करा दिया है, उसके बाद इन बाकी चीजों को यानी कि यूरिन, स्टूल पास किया तो बच्चे ने नहीं कर लिया है, या बच्चे को बहुत ज्यादा रैप तो कहीं रखा हुआ है, या बच्चा ठंडा तो नहीं हो रहा है, या सिर्फ अगर गोदी में लेके शांत हो जा रहा है, तो ये कारण आपके हैं, इनको जरूर एड्रेस करें, उसके बाद ही इस कंक्लूजन पे आए कि बच्चे को फीड या भूख लग रही है। और ये सारी चीजें आपने रूल आउट कर ली कि इनमें से कुछ भी नहीं है, तब बच्चे को माँ की छाती पे लगाएं और छाती पे लगा जितनी देर बच्चे को फीड करना है उतनी देर फीड करा के उसके बाद जब बच्चा सो जाएगा तब आराम से हटा के सुला दें।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।

0: पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए कितना न्यूट्रिशन और किस तरह का न्यूट्रिशन जरूरी होता है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद। तो डॉक्टर, अगर वार्निंग साइन की बात करें या फिर बात की जाए डॉक्टर कंसल्टेशन की, कब जरूरी है, तो ऐसे कौन से रेड साइन है जिन्हें देख कर पेरेंट को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? और इसके साथ ही अगर बात की जाए वॉमिटिंग या फिर लूज मोशन की, जो अक्सर बच्चों को होते हैं फीडिंग के दौरान, तो ऐसे में घर पर क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें?
1: काफी हेल्पफुल रहेगा पेरेंट्स के लिए जो घर पे रहते हैं और तुरंत या फिर अनटाइम में जाके पहुंच नहीं सकते हॉस्पिटल्स में। कुछ चीजें जरूर ध्यान रखें कि बच्चे में समथिंग कॉल्ड अ डेंजर साइंस या रेड फ्लैग साइंस, उनका हमेशा हर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। एक, बच्चा सुस्त तो नहीं लग रहा है? अगर बच्चा सुस्त लग रहा है तब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड फ्लैग साइन एंड दे शुड इमीडिएटली कंसल्ट टू द नियर बाय पीडियाट्रिशियन और हॉस्पिटल। सेकेंड, बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है? अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी, तब भी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड फ्लैग साइन। थर्ड, अगर बच्चे का यूरिन कम हो रहा है, ये मदर्स को काफी स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूशन आ जाता है कि बच्चा यूरिन कम पास कर रहा है। ऑन एवरेज हम मानते हैं कि वेल फेड बेबी विल पास यूरिन 6 times a day। आई एम वेरी क्लियरली सेइंग इट्स यूरिन नॉट द स्टूल। तो अगर बच्चा 6 times से काफी कम यूरिन पास कर रहा है और सुस्त लग रहा है और दूध नहीं पी रहा, आपको तुरंत बिना किसी डिले के आपके पास के हॉस्पिटल के पास जाना है। इस दौरान अगर ये कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं है, सिर्फ बच्चे को दस्त और उल्टियां लग रही हैं, इस दौरान मदर का फीडिंग कंटिन्यू रखें। कोई भी मीठी चीज यानी कि जूस ग्लूकॉन्डी ना दें, सिर्फ ORS ले लें। ORS का जो WHO ORS का जो पैकेट आता है 1 liter वाला, वो लें। 1 liter पानी में मिलाएं। पानी का इंश्योर करें कि पानी साफ हो। अगर नहीं है, यू नॉट श्योर दैट पानी की क्वालिटी कैसी है, तो पानी उबालें, ठंडा करें, फिर उसमें एक पूरा पैकेट 1 liter मिलाएं। उसके बाद जितना बच्चा पी पा रहा है उससे धीरे धीरे एक एक चम्मच में कटोरी में डालकर पिलाएं जितना बच्चा पी पा रहा है। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि जो हमने भी रेड फ्लैग्स डिस्कस किए कुछ भी अगर है, इमीडिएटली अपने पास के हॉस्पिटल में दिखाएं और कोई भी देसी नुस्खे शहद या हल्दी ये वगैरह लगाकर वेट ना करें घर पे।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि शुरुआती 6 महीनों तक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, पानी तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि पानी तक की पूर्ति माँ के दूध से हो जाती है। ऐसे में अगर बच्चे को हनी घुटी पिलाई जाती है तो ये सब एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि अभी डॉक्टर ने लगता है कि कोई भी रेड फ्लैग साइन अगर आपको दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आज डॉक्टर ने बताया कि किस तरह की चीजें आप घर पर कर सकते हैं, किस तरह की चीजों को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। तो ऐसे बाकी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सफर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: शानदार स्टूडियो के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आर्जी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए कितना न्यूट्रिशन एंड किस तरह का न्यूट्रिशन जरूरी है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद। डॉक्टर, पोषण की पाठशाला शो के दौरान हमें हमारे लिसनर्स की काफी सारी क्वेरीज आती हैं, तो उसी में से एक क्वेरी आई है हमारे लिसनर की। तो डॉक्टर, उनका सवाल है, मेरा बेबी बार बार फीड मांगता है, क्या मैं ओवर फीड कर रही हूँ? इस पर आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे?
1: देखिए, इसमें एक काफी बेनिफिट मिलता है उन बेबीज को जो ब्रेस्ट फीड करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की खास बात ही यही होती है कि जितना बच्चे को फीड चाहिए बच्चा उतना ही फीड लेगा, क्योंकि नाउ द बेबी इज फीडिंग एज पर द बेबीज विल और एज पर द बेबीज डिमांड। तो अगर बच्चे को फीड भूख लग रही है और आप लैच कर रहे हैं बेबी को और बेबी फीड ले रहा है, मतलब बेबी को डिमांड है, तो उसमें आप एकदम निश्चिंत रहें कि बच्चा ओवर फीड करेगा ही नहीं। कि बच्चे को अगर टमी फुल हो गया तो बेबी ओवर फीड नहीं करेगा, वो लेगा ही, चाहे कुछ जितना आप ट्राई कर। बट दिस प्रॉब्लम कम्स व्हेन द बेबी इज टॉप फेड यानी कि बोटल फेड। तो उसमें आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर उसमें भी एक एडवांटेज ये रहता है कि अगर बेबी का पेट भर गया होता है तो आप रिपीटेड अटेम्प्ट्स अगर लेंगे बोटल फीड देने का तो बच्चा फीड नहीं लेगा। तो इसमें टेक अवे पॉइंट ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग वाले मदर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बेबी ओवरफेड है कि नहीं है। जो बेबीज टॉप फेड है, जो बोटल फेड है, उनमें आप फोर्सफुल फीडिंग ना करें। मतलब अगर आपने फीड दे दिया एक बार, दोबारा फीड नहीं ले रहा है तो वेट करें, उसके बाद हाफ एन आवर एक घंटे के बाद दोबारा ट्राई कर लें। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कोई और रेड फ्लैग साइंस हैं तब तुरंत हॉस्पिटल में दिखाएं, बट कभी भी फोर्सफुल फीडिंग स्पेशली टॉप फीडिंग ना करें।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक आप बने रहिए रेडियो महारानी 89.6।

0: पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और आज हमने बात की पोषण की पाठशाला में 0 से 6 मंथ के बेबीज के लिए आखिर किस तरह का न्यूट्रिशन जरूरी है एंड किस तरह का न्यूट्रिशन उन्हें देना चाहिए, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर आनंद। तो डॉक्टर, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग और सिंपल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे उन सभी पेरेंट्स को जो अभी अभी न्यू पेरेंट्स बने हैं, और किस तरह का पोषण उन्हें अपने बच्चों को देना चाहिए और किस तरह की चीजों का ख्याल रखना चाहिए?
1: मेरा सिंपल और स्ट्रॉन्ग मैसेज सिंपल ये रहेगा, ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग। सेकेंड, ऑलवेज मेंटेन हैंड हाइजीन व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ बेबी हु इज लेस देन 6 मंथ ओल्ड, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है नवजात शिशुओं में जो कि 1 महीने से कम के हैं, और प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच
0: डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। उम्मीद है आज का एपिसोड आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल और रियश्योरिंग रहा होगा। आज हमने बात की 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए सही पोषण, उनके हेल्दी ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की बुनियाद के बारे में, और इसी के साथ आज हमने ये भी जाना इस दौरान सही फीडिंग प्रैक्टिसेस और साथ ही प्रॉपर केयर बच्चे के फ्यूचर हेल्थ पर सीधा असर डालती है, और इन सभी सवालों के जवाब आज हमने डॉक्टर आनंद से जाने। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतने सिंपल और इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
2: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
3: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
2: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: जा।
1: नहीं
0: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पांडे, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, ट्यूबलाइट
0: साले इतने हंस गया, तू कूद गया।
2: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
0: क्यों
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
0: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।

0: रक्तदान शिविर 7 जून रविवार को भगत वासुराम लखवानी धर्मशाला NIT2 फरीदाबाद में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। विशेष बात यह है कि यह रक्तदान शिविर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की सहायता के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आपका एक यूनिट रक्त किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान और उसके जीवन में नई उम्मीद ला सकता है। रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है कि आइए मानवता की इस नेक मुहिम का हिस्सा बने, रक्तदान करें और किसी जरूरतमंद के जीवन में उम्मीद की किरण बने। वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके शो है खास मुलाकात और मिस्टर NK गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो कि एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बातें चल रही हैं विकसित भारत पर। सर, 2047 तक भारत के किन किन क्षेत्रों में बदलाव देखा जा सकता है? एडुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या ग्लोबल लीडरशिप?
1: एंड योर क्वेश्चन आंसर इज देयर इन ऑल।
0: ओके
1: ओके
0: जी,
1: टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ओके, ग्लोबल लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द ह्यूमन टैलेंट आल्सो।
0: ओके,
1: दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अनलेस द ह्यूमन टैलेंट इज नॉट देयर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम।
0: जी ओके जी,
1: यू नो दैट इंडियाज बिगेस्ट पॉपुलेशन इज यूथ। ओके, देयर वी आर, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर दैट, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी कमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकोनॉमी, ओके, and space technology is also important, global solutions. So you require a huge study on this. This is not easy. You must have seen though today the Trump's area, right? How one his policy, one statement, how disturbing the whole world.
0: Exactly.
1: So this is also learning that how can we handle this situation. This is worse than the COVID, right? COVID, okay, this was, but this was worse than, is worse than the COVID, right? So it's all filled with technology, economy, and personal goals, personal development, and where I'd say ethics. We'll come to this how the ethics plays biggest role in this. The biggest thing is that each and every person has to be honest.
0: Okay.
1: And then only you can call yourself as a developed India. So it's the biggest challenge. And that's why I'm with you today to reach one message to you, message to the people, that there are certain factors which are important for the public to come for a developed India. And see, one thing I will tell you that हम लोग चाहें किसी तरह से भी इनकम कर लें या अपनी ग्रोथ कर लें, इफ द एथिक इज नॉट देयर, ऑनेस्टी इज नॉट देयर,
0: बिल्कुल,
1: यू कैन नॉट क्रिएट द वैल्यू।
0: एग्जैक्टली।
1: सो डेवलप इंडिया मींस यू आर क्रिएटिंग अ वैल्यू। सो कैन यू डू दिस विदाउट दिस? सो इट्स अ बिग क्वेश्चन।
0: एग्जैक्टली।
1: हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट, लेट अस सी दिस। सो ऑन ऑल फ्रंट, व्हेन यू से डेवलप इंडिया, यू ऑल फ्रंट यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड।
0: जी, यहाँ पर वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है खास मुलाकात। मेरे साथ है मिस्टर एन के गुप्ता जो कि एडवोकेट हैं, और आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 पर। तो बातें बहुत सारी हो गई हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सर, आप सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पर आपको क्या लगता है कि आज लोग डेवलपमेंट को लेकर पहले से ज्यादा अवेयर और इन्वॉल्व हुए हैं?
1: वेरी गुड क्वेश्चन। आई स्टार्ट विद 2014, द फर्स्ट डेट में स्वच्छ भारत।
0: जी,
1: डू यू फाइंड एनी चेंज?
0: आई थिंक काफी चेंजेस हैं,
1: राइट? सो गवर्नमेंट केम विद द पॉलिसी, लेट अस स्टार्ट विद स्वच्छ भारत फर्स्ट डेट में। हालांकि हमारे महात्मा गांधी सर ने इन्हें बहुत पहले से 1947 से कहा था। एनीवे, ये राय दुरुस्त है, बट दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड वी आर फाइंडिंग दैट दिस स्वच्छ भारत, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, the Swachh Bharat is also part of the Viksit Bharat.
0: Okay.
1: It's not that.
0: Okay.
1: Policy statement was drafted first, and from this ki yahan se shuru karte hain. So the public involvement comes, public knows what is there, what is required. The Swachh Bharat is also part of the Viksit Bharat. So unless aap swachhata nahi hai, to kuch bhi nahi hai. So maine jaise maine kaha, honesty is also part of the swachhata. Now second step is going, abhi hum Swachh Bharat mein khali jhadu lagane ki baat karte hain, lekin nahi. इसमें पीपल स्वच्छता इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द नेक्स्ट स्टेप।
0: ओके,
1: सो अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, और इसी तरह से अवेयरनेस आएगी, लोग बात जागेंगे। और ऐसी बात नहीं है, अगर हम अभी भी किसी बच्चे से बोले कि बेटा ये अच्छा है, तो उसको अच्छा लगे तो फॉलो करेगा, राइट? व्हेन यू से टू योर चिल्ड्रन दैट ये गुड है, और उसको अच्छा लगेगा तो फॉलो करेगा। और सबको अच्छा पसंद है, ऐसे नहीं है, जहाँ वो अच्छा नहीं लगता तो क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं आपस में। और थोड़ा बहुत तो 2-4% तो होने भी चाहिए जो कि नॉटी होते हैं, नॉटी होते हैं, क्रिटिसाइज करें।
0: हाँ जी।
1: सब कुछ स्मूथ हो जाए तो आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे?
0: बिल्कुल।
1: तो दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, आप बगैर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट उनके ग्राउंड लेवल पे आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे।
0: हाँ जी।
1: आप पॉलिसी कितनी बना लें, जब तक उनको ग्राउंड लेवल तक नहीं ले जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे इसको एक्सेप्टेंस नहीं करवाएंगे, तो आप कहीं सक्सेस नहीं हो सकते। And you can say that first Bharat is one part of it. It's a one single, मतलब very small part of it. But it was a beginning, starting point था, हमने achieve किया है, और भी achieve करेंगे।
0: हाँ जी।
1: और उसके साथ साथ आपका independence। हमने देखिए पहले बात की made in India। उसके बाद में हमने बात की आत्मनिर्भर भारत।
0: जी।
1: अभी आत्मनिर्भर भारत is not India, its people should also be independent।
0: Okay।
1: When I talk people should be independent, मैं छोटा सा एग्जांपल अभी दूंगा आईपीएल का आपको।
0: जी।
1: सूर्यवंशी,
0: हाँ।
1: 15 साल का लड़का, उसने हर बिग प्लेयर की क्वालिटीज के अंदर है, कैसे डेवलप की उसने अपने आप ही? 3 साल का बच्चा बिहार के अपने लोकल विलेज में खेल करके उसने हर प्लेयर का शॉट वो खेल रहा है, हर प्लेयर का। अब किसी का हर उसके हर कोचेज का, जितने कोचे हैं रोहित शर्मा के या जो भी है, सबके कोचेज आज ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर ये लड़का कर क्या रहा है, कि ही इज प्लेइंग एवरीबॉडी शॉट और ही हैज डेवलप्ड दिस हिज ओन। सो अगर चाहेंगे तो हम ये कर सकते हैं, और हमें वो करना ही होगा, और उसने प्रूव कर दिया कि यस, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर मैं चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। और आज 15 साल की उम्र में उसने इतना अचीव किया, तो हमें टैलेंट है ये नहीं कह सकते, इनोवेशन भी है। उसने ये समझ लिया था कि मुझे अगर बेस्ट होना है तो इन सबके मेरे को अपने आप में बिल्डअप करना पड़ेगा।
0: जी।
1: उसने एक को नहीं लिया, उसने सबको ले लिया,
0: आउट ऑफ द बॉक्स जाके। जी।
1: एंड ही डेवलप्ड इट, ही इवॉल्वड इट, और वो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को इवॉल्व करें, इनोवेट करें, और फिर परफॉर्म करें।
0: जी।
1: हम करेंगे तो जरूर अवेयरनेस आएगी, और ये दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ, आई टेल यू वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस, दैट दिस जेंटलमैन हैज दिस बॉय, आई एम नॉट अ जेंटलमैन, इज अ बॉय, हु डेवलप्ड सो मच हिमसेल्फ, दैट आज वो इस स्टेज पे हो गया कि पता नहीं वो सच है कि नहीं है, कि ही इज गेटिंग द ओवर 30 करोड़, 40 करोड़, 50।
0: ओके।
1: जी। सो एनीवे, दिस इज मतलब, तो हमें कैपेबिलिटी है, अगर कोई जगाने वाला है तो जगा रहे हैं, लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी में ला रही है।
0: जी।
1: और अवेयरनेस आ रही है, और लोग अवेयर हो रहे हैं, और लोगों को चाहिए भी।
0: यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: वंस अगेन वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम. कुछ हट के शो है खास मुलाकात. मेरे साथ है मिस्टर एन के गुप्ता जो कि एडवोकेट हैं और आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 पर. तो बातें बहुत सारी हो गई हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं. तो आज का जो यूथ है वो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माना जाता है. तो आपके हिसाब से आने वाले भारत को शेप करने में यूथ का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है?
1: Energy, innovation, and adaptability. All three are shown.
0: Okay.
1: And this is it.
0: Okay.
1: अगर ये तीन चीजें हैं आप कुछ भी कर सकते हैं.
0: जी.
1: तो यूथ को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं. देखिए रिक्वायर्ड तो होता ही. आप ये कहो जी मैं खाली बैठे बिस्तर पे बैठे बैठे सब कुछ अचीव हो जाए फिर तो आप भूल जाओ. फिर तो आप क्रिटिसाइज ही करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप कुछ करना चाहते हो कुछ भी, मतलब देयर आर सो मेनी मतलब मिलियंस ऑफ स्टेप्स आर देयर वेयर यू कैन डू समथिंग एंड यू कैन अर्न आल्सो. इट्स नॉट डिफिकल्ट. का एक और एग्जांपल दूंगा व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ द विकसित भारत.
0: जी जी.
1: आपने अपना खादी ग्राम उद्योग सुना है?
0: हाँ जी बिल्कुल.
1: राइट. इसमें 80-90% कम्स फ्रॉम द विलेजेस, द प्रोडक्ट्स एंड ऑल दिस. 80-90% उन लोगों को जगाया, उनको अवेयर कराया, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बिक भी रहे हैं. पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, इनिशिएट किया, उसके बाद में एग्जीक्यूट किया पब्लिक.
0: जी.
1: तो यूथ के, और इसमें यूथ भी काफी है, ऐसा नहीं है कि यूथ नहीं है. तो यूथ के पास एनर्जी है, यूथ का इनोवेशन है और एडेप्टेबिलिटी है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए. क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को देखें करें तो होगा. एंड दूसरी बात है दैट आज ये ट्रेंड चेंज हुआ है. आप देखें तो कितने जो है नए स्टार्टअप्स आ गए हैं. तो अब ये लग रहा है कि हम जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने. और हो भी रहा है. एक बंदे ने अपना काम शुरू किया तो दो एम्प्लॉयमेंट देता ही.
0: बिल्कुल, एग्जैक्टली.
1: सो दैट चेंज यूथ कैन ब्रिंग. राइट. अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. जितना आप डीप जाओ उतनी अपॉर्चुनिटी. अब आप देखिए मैंने सब्जेक्ट चुना विकसित भारत 2047 क्यों चुना. मुझे लग रहा है कि अगर इस सब्जेक्ट के साथ में जो लोग नहीं गए वो पीछे रह जाएंगे.
0: ओके.
1: बिकॉज इट्स ग्रोथ पाथ. अब यू डोंट मैच योरसेल्फ विद दिस, लाइक यू डोंट मैच विद एआई और यू डोंट मैच विद दिस आल्सो, देन यू विल बी बिहाइंड.
0: जी.
1: तो आपको अपने आप को उस डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से भी तो अपना काम करना ही पड़ेगा.
0: बिल्कुल.
1: वो हमारे यूथ को करना चाहिए और यूथ को ही जरूरत है. एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी यूथ पावर है, उसको जरूरत भी है. तो मेरे ख्याल से फ्यूचर की पावर भी यही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने पहले आपको बताया कि द एथिक्स एंड नेशन फर्स्ट, ये उनके दिमाग में आना चाहिए. विच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन. पॉलिसी में ये लिखा है कि अगर यूथ नहीं अडॉप्ट कर लिया तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी डेवलप कंट्री विद ऑल द पार्टिस.
0: जी. यहाँ पर वक्त है गाने का. गाने के बाद फिर से लौटेंगे. शो है खास मुलाकात.

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है खास मुलाकात। मेरे साथ है मिस्टर एन के गुप्ता जो कि एडवोकेट हैं, और आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 पर। तो बातें बहुत सारी हो गई हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सर, जिस तरीके से हम तेजी से डिजिटल और मॉडर्न बन रहे हैं, तो क्या ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न थिंकिंग दोनों साथ लेकर चलना ही जो असली डेवलपमेंट है वही उसी तरीके से होगा अगर हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं?
1: आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इनफैक्ट हर एक कंट्री का ना अपना अपना ट्रेडिशन होता है, अपना अपना वर्किंग स्टाइल होता है। आपने पता नहीं स्वदेश पिक्चर देखी है? देखी,
0: बिल्कुल सर देखी है जी।
1: तो उसमें एक साहब बोलते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा देश है, महान देश है, बिकॉज हमारे संस्कार राइट। और डेफिनेटली हमारे संस्कार चेंज इतनी जल्दी नहीं हो सकते, जाती हैं चाहे कुछ है, लेकिन इतनी जल्दी चेंज हो नहीं सकते।
0: बिल्कुल।
1: और वो चलते हैं, और हमारे संस्कार उसमें कोई जब नहीं, हम जिस तरह से चलते हैं तो हमारे संस्कार अपने हैं। तो आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज को बना के अपने आप की अपनी आइडेंटिटी बना के रखनी है। और वर्ल्ड में अमेरिका अपनी जगह पे, इंडिया अपनी जगह पे, इंडिया की अपनी वैल्यूज हैं, अपना कुछ है, तो उसको बना के रखना पड़ेगा, तभी हम एक डेवलप कंट्री माने जाएंगे, विकसित भारत माने। अब मैं यहाँ पे वर्ड में डेवलप कंट्री विकसित भारत बोल रहा हूँ, डेवलप कंट्री नहीं बोल रहा हूँ। तो भारत को, विकसित भारत अगर आपको बनाना है
0: जी,
1: तो ट्रेडिशनल वैल्यूज को लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको वेस्टर्न को बनाना है तो फिर, अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। आप मॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप यहाँ पे दिल्ली के मॉल में चले जाएं, चाहे बॉम्बे के मॉल में चले जाएं, चाहे आप इंदौर के मॉल में जाएं, आपको क्या लगता है?
0: आई थिंक कि कितना लग्जूरियस है, क्या शॉपिंग ब्रांड्स कितने हैं, मोस्टली लोग हाँ वही
1: और सब जगह जाते देख सा लगता है?
0: नहीं, ऐसा नहीं है।
1: कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे बस, लेकिन आपको वही ब्रांड गिने चुने 50 ग्राम वो वही मिलेंगे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: दो चार एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे लोकल वाले, अदरवाइज आपको वही ब्रांड मिलेंगे।
0: हाँ,
1: खाने में भी आपको वही ब्रांड मिलेंगे सारे के सारे। तो क्या डिफरेंस नजर आया?
0: बहुत ज्यादा नहीं, कुछ खास नहीं।
1: नाउ हियर द ट्रेडिशनल वैल्यूज कम, दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड पॉलिसी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।
0: ओके।
1: मैं अभी लखनऊ गया था, भुने हुए चने की बर्फी लेके आया था।
0: ओके।
1: वो तो हमें, आपने भी खाई होगी, हमने भी बहुत खाई, लेकिन वैसी कहीं नहीं।
0: Okay.
1: और जिस जिसको मैंने खिलाई कहता तो मुझे वहीं से चाहिए। दिस इज कल्चर, वही एक ट्रेडिशनल कल्चर है। वो कहने मतलब जो मॉल का जो मैंने एग्जांपल दिया, हमें अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू बना के रहने, तो मॉल तो फिर मैं दुबई जाके भी देख लूँ, बहुत अच्छे अच्छे मॉल से फिर मेरे को वहाँ से ले आऊँगा सारा कुछ। नहीं, हमें अपनी वैल्यूज, मैं अभी एक सजेशन दे के आया हूँ लखनऊ को, मैं लखनऊ गया था, मैं कह लखनऊ की अपना अंदाज है, अपना हाँ। चीज है। आप लखनऊ की चीजें कम से कम हर चार शॉप में अपनी एक शॉप तो डालिए। वहाँ का परफ्यूम बहुत अच्छे हैं, वहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं। लखनऊ का मुझे कबाब ही देखने को नहीं मिला, वेज कबाब ही नहीं मिला। मतलब मैं कह क्यों,
0: इनफैक्ट वहाँ की जो कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई जिसको बोलते हैं,
1: वो सब चीजें बहुत ही लोग जाके देख के आते हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिला। मॉल पे गए, मॉल पे नहीं मिला। मैं क्यों, व्हाई वी आर, चिकन के कपड़े के एक दो शोरूम मिले लेकिन इतना नहीं मिला जो जिसके लिए फेमस है वो।
0: बिल्कुल
1: राइट। तो ये हमें अपने कल्चर बना के रखना पड़ेगा, हमें अपने विकसित भारत बनाना है। डेवलप कंट्री बनाना हो तो मे बी दैट यू कैन अवॉइड, बट अगर आपको विकसित भारत बनाना है तो देन अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, थिंकिंग को भी साथ रख के आपको एक अलग से बनाना पड़ेगा।
0: जी,
1: तो बहुत जरूरी है, दोनों ही चीज जरूरी है, टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, ट्रेडिशन। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको विकसित भारत बनाना तो इम्पोर्टेंट।
0: यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है खास मुलाकात। मेरे साथ है मिस्टर एन के गुप्ता जो कि एडवोकेट हैं, और आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 पर। तो बातें बहुत सारी हो गई हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जैसे आपने कहा कि विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी ज्यादा जरूरी है या सिटीजन का माइंडसेट?
1: इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, राइट? अब ये विकसित भारत बनाना कैसे है हमारे को, इस कॉमन मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैंने मैं अपने आप को बना लूंगा, मैं उससे ज्यादा क्या बनाऊँ, भारत को कैसे बना लूंगा, मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, राइट? तो पहले तो गवर्नमेंट को पूरे हिंदुस्तान में क्या रिक्वायर्ड है और क्या नहीं रिक्वायर्ड है, तो उसके आपसे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और लेट मी टेल यू के वॉट इज गोइंग ऑन इज एज पर द पॉलिसी। देर आर ए शॉर्ट टर्म पॉलिसी, देर इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, तो मिड टर्म पॉलिसी एंड देन अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आफ्टर लॉन्ग टर्म कंप्लीशन विल बी रीचिंग 2047। सो दीज आर द पॉलिसी द गवर्नमेंट इज मेड, राइट? माइंड सेट, देखिए आप माइंड सेट अभी आपका चेंज होता जाता है, क्योंकि आप जब आप टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मोबाइल, और आप कितने भी ट्रेडिशनल रहे हो, लेकिन यह है कि आपको अपने माइंड सेट चेंज, बिकॉज अगर आपको काम करना है तो मोबाइल पे आना ही पड़ेगा। आज UPI सिस्टम देख लीजिए हमारा कितना स्ट्रांग है, कितना बड़ा है
0: जी।
1: तो माइंड सेट आपको उस हिसाब से डेवलप करना ही पड़ेगा, उस हिसाब से चेंज करना ही पड़ेगा आपको, तो वो अपने आप भी हो जाता है। आप जब सिस्टम लाते हैं तो लोग आपको कुछ, जैसे मैंने बताया कि आपको AI यूज कर रहे हैं, तो आप AI नहीं यूज करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। इसी तरह मैं सोच रहा हूँ विकसित भारत के टर्म्स यूज नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे, राइट? तो इस तरह से आपको माइंड सेट में ही अपने आप को, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि माइंड सेट का मतलब यहाँ पर यह है कि आप धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने

0: आपको एक जगह पे है कि मैं ऐसे ही करूंगा तो नहीं होगा, तो आपको उसे गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है उसको एक बार समझते हुए, जैसे हमने छोटा सा एग्जांपल लिया स्वच्छ भारत का, उसी तरह से आपको अब उसमें ढलना पड़ेगा उसके लिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या क्या नहीं है, तो उस हिसाब से दोनों साथ चाहिए माइंड, मतलब डेवलप पॉलिसी चाहिए, फिर उसके बाद में अपने आपका माइंड को हिसाब से सेट करना होगा, और चाहे मैं अपने आप को कितना डेवलप कर लूँ मैं अगर पॉलिसी से उससे मैच नहीं कर रहा तो थोड़ी मुश्किल आएंगी, तो जिम्मेवारी राष्ट्र निर्माण की, तो मैं उसको सोचूं कि हाँ मुझे राष्ट्र का निर्माण करना है, नेशन फर्स्ट आना चाहिए, और मेरे को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर वो है अगर आपको डेवलप भारत बनना है, विकसित भारत बनना है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू अवेयरनेस, यू हैव अवेयरनेस अबाउट एंड सिविक सेंस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द पॉजिटिव पार्टिसिपेशन। आज हम ये सोचते हैं किसी तरह जुगाड़ करके काम कर लेंगे, जुगाड़ करके ये कर लेंगे या वैसे करके करके कर लेंगे, वो नहीं चलता, तो लंबे टाइम लेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि वैल्यू क्रिएट करनी है तो आपको ये चीज़ों पर आना ही
1: जी,
0: आपको विकसित भारत बनाना है तो आपको इन चीज़ों पर आना ही पड़ेगा, नहीं बनाना है तो फिर आपकी।
1: यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है खास मुलाकात। मेरे साथ है मिस्टर एन के गुप्ता जो कि एडवोकेट हैं, और आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 पर। तो बातें बहुत सारी हो गई हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप लीगल फील्ड से आते हैं, क्या अवेयरनेस और एजुकेशन बनने से लोगों की पार्टिसिपेशन नेशन बिल्डिंग से पहले से ज्यादा मजबूत हुई है?
1: Yes, एक तो इसमें मैं ये कहूंगा कि जब हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं
0: जी,
1: राइट
0: जी,
1: कुछ काम तो हमारे टेक्नोलॉजी ने कर दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपने फील्ड्स का। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग्स, राइट, मुझे क्या करना है क्या नहीं, वो कंप्यूटर अपने आप ही कर लेता है।
0: हाँ जी।
1: मुझे तो क्लिक करते जाना है, उतरते जाना है
0: जी।
1: तो कुछ तो अपने आप ही टेक्नोलॉजी, अब मोबाइल में आप जो डाल सकते हो वो डाल सकते हो, बाकी नहीं डाल सकते नहीं डाल सकते। इसी तरह से टेक्नोलॉजी कुछ तो अपना काम कर रही है, काफी कंप्लायंसेस वगैरह अपने काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इसमें अवेयरनेस भी आ रही है। अब जब मैं सपोज करो डिजिटाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें करना क्या है, मेरे इसमें क्या राइट्स रहेंगे, क्या मुझे ड्यूटीज रहेंगी, वो भी मुझे अपने आप आ जाती है। लेकिन यस, जैसा आपने कहा अवेयरनेस में है, तो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज मुझे पता ही होनी चाहिए। अगर मैं उसके बाद में पीछे जाऊं अपने कि मुझे ऑनेस्ट होना है, तो ऑनेस्ट होना तो सबसे पहले मुझे राइट ड्यूटीज पता होना चाहिए, तभी तो ऑनेस्ट हो सकता हूं। मुझे यही नहीं पता तो मैं ऑनेस्ट कैसे हूं?
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे हाँ, इसमें गवर्नमेंट का रोल काफी बड़ा है। मैं आपको फिर पीछे ले जाऊंगा 2017 के अंदर, जब हमने जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन किया था। आप बिलीव नहीं करेंगे या अपने, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दिन में मतलब हर पेपर में पूरा पेज एक एक सब्जेक्ट के ऊपर पब्लिक के लोकल लैंग्वेज में और पब्लिक के लिए पूरी स्टडी होती थी। अगर और सारे लैंग्वेज के पेपर्स होते थे, हिंदुस्तान के सारे पेपर होते थे
0: जी,
1: और जिस तरह से समझाया गया, यही रीजन था कि हम जीएसटी इम्प्लीमेंट कर पाए, नहीं तो बहुत मुश्किल था। इसको इतना बड़ा चेंज, इट वाज द बिगेस्ट चेंज इनफैक्ट, हमने जो देखा वर्ल्ड का बिगेस्ट चेंज था ये। एक तो समझाना कि व्हाट इज माय रूट्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज, या फिर उसको फॉलो करना। तो मैं कैसे, अगर इजी हो, और दूसरा सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। अगर इजी है बहुत अच्छा है, तो पब्लिक को उसमें सपोर्ट मिल जाती है, उसको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मेरे को ऑनेस्ट बनना है, मुझे डिसिप्लिन बनना है, तो मुझे पता है मुझे राइट्स भी क्या होंगे, मेरे ड्यूटीज भी क्या होंगे। और वो फिर वो कोशिश भी करता है कि मुझे नहीं भी पता है तो कोशिश करता है इसमें क्या होना चाहिए, डिस्कशन। और आजकल आप एग्री करेंगे मेरे से कि सोशल मीडिया भी बड़ा स्ट्रांग हो गया है, वो हर बात को बता देता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी एक दूसरे लिंक हैं
0: जी।
1: और मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जो मैंने आज मेरे पास आया था, और पब्लिक मीडिया में आया था, और वो क्या कहता है, बनावट सजावट दिखावट और मिलावट, इन्हीं कारणों से लोगों में आई है गिरावट।
0: जी।
1: तो व्हाट आई मीन इज सोशल मीडिया भी काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है कुछ चीज़ों के बारे में। काफी चीज पता भी चल जाती है कि मेरी राइट्स एंड रूटीज क्या है, चाहे वो कार्टून के थ्रू चाहे मैसेज के थ्रू लोगों में, लेकिन अवेयरनेस तो है और वो लोगों फॉलो भी करना शुरू कर दिया। मेरा आप सिंपली अपने सब भी कह सकता हूँ कि इस समय पे जीएसटी के अंदर लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इधर से उधर करूँ, तो वो तो दे नो देयर राइट्स, वो सीधा फॉलो कर रहे हैं।
0: यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है खास।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है खास मुलाकात। मेरे साथ है मिस्टर एन के गुप्ता जो कि एडवोकेट हैं, और आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 पर। तो बातें बहुत सारी हो गई हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 2047 का भारत इमेजिन करते हुए आप क्या चाहते हैं कि दुनिया भारत को किस पहचान से जाने?
1: सर मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, हम काम इसी पे कर रहे हैं।
0: हाँ जी,
1: विकसित भारत का मतलब है डेवलप्ड कंट्री। आज अगर मैं डेवलप्ड कंट्री में नाम लूँ तो सबसे पहले हम अमेरिका को बोलते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन उठता है कि क्या वो डेवलप्ड कंट्री है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज को बोलते हैं तो हम देखते क्या है, कंट्रीज बड़ी सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, साफ सफाई बहुत अच्छी है, वातावरण बहुत अच्छा है। इंडिया की आइडेंटिटी हमें अभी भी नजर आ रही है, इसमें ग्लोबल लीडरशिप की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और डेफिनेटली अगर डेवलप कंट्री होगी, डेवलप भारत होगा, विकसित भारत होगा, तो इसकी मतलब पहचान अलग ही होगी। आज भी हम कहते हैं शांति प्रिय, शांति का दूत, तो हम लोगों की अपनी परिभाषाएं अलग हैं, हमारे अपने वे आउट अलग हैं, बट यह है कि हम यस नेशनल गुरु बन सकते हैं। लोगों को पता है टेक्नोलॉजी में इस समय भी हम काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि आपने देखे डिजिटल वर्ल्ड में तो हम लोग काफ़ी अच्छा कर चुके हैं।
0: हाँ जी,
1: और हम विश्व गुरु बन सकते हैं।
0: जी सर, जैसे आपने कहा कि अमेरिका जो है वो डेवलप कंट्री में से एक है, और लेकिन आपके दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क है, तो अगर मैं इंडिया के बारे में बात करती हूँ, भारत के बारे में बात करती हूँ, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे हैं अभी, तो क्या आप महसूस करते हैं?
1: पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब मैं इसमें पब्लिक में मैं सारे सबको लूंगा।
0: हाँ।
1: मैं पॉलिटिशियन को लूंगा, पॉलिटिशियन आई विल नॉट काउंट एज गवर्नमेंट, राइट?
0: जी,
1: दे आर आल्सो पब्लिक।
0: ओके,
1: दे आर पब्लिक फर्स्ट एंड देन द पॉलिटिशियन। पहले पब्लिक थे फिर पॉलिटिशियन बने ना, तो यहाँ पे सारे आ जाते हैं। आप पॉलिटिशियन में पॉलिटिशियंस को ले लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स को ले लीजिए, सरकारी महकमे को ले लीजिए, उसके बाद में हमारे जैसे लीगल फ्रेटर्निटी को ले लीजिए, इस सब जगह ही जो है आपको इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। नहीं तो 12 साल लगने नीचे थे स्वच्छ भारत के लिए।
0: हाँ जी,
1: और 12 साल इसलिए लगे कि हमारा पार्टिसिपेशन थोड़ा वीक है, इवन गवर्नमेंट साइड पे भी। एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि हमें स्वच्छ भारत देखना है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या सारी पॉलिसी बना ली, आज माउंटेन्स खड़े हो गए थे, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी या इनोवेशन किया नहीं किया, या उसका क्या सॉल्यूशन है क्या नहीं है, तो सबके पार्ट है, सब इज ऑल रिस्पॉन्सिबल। तो थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, एंड ऑनेस्ट विद यू, मेरे को इस बारे में पता है, दैट्स व्हाई आई एम विद यू, दैट्स व्हाई आई एम ऑन द चैनल, लेट अस टेल द पीपल पार्टिसिपेट इन दिस, इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर योर चिल्ड्रन, मे नॉट बी गुड फॉर यू बिकॉज यू से मैं तो कुछ मेरा क्या होगा, लेकिन नहीं, पार्टिसिपेशन मेरे ख्याल से थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, और इसको और थोड़ा फास्ट चाहिए थोड़ा सा, सो दैट हम 21 साल के अंदर इसको अचीव कर लें।
0: यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।
2: जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुद और रंगों की बरखा है, खुशबू की

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है खास मुलाकात। मेरे साथ है मिस्टर एन के गुप्ता जो कि एडवोकेट हैं, और आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 पर। और आखिर में अगर आपको एक मैसेज देना हो आज के यूथ को जो 2047 के भारत को वास्तव में जीने वाले हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं कहूंगा कि एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी को पढ़िए। मेरा क्या
0: जी,
1: दिस बॉय कैन टर्न अराउंड द होल वर्ल्ड। तो मेरा इसका मतलब हमें बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत कैपेबिलिटी है। अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने आप को वीक मत समझिए, अपने आप को लिथार्जिक मत समझिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। संसार को हमने पहले भी बहुत दिया है, मतलब जीरो हमने दिया तभी आगे गिनती चालू हुई है, राइट। तो हमने पहले बहुत दिया है, आज फिर अगर हम चाहें तो बहुत कुछ दे सकते हैं। और पर्टिकुलर मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगा, डोंट गेट डिसहार्टेड, वर्क हार्ड। जहाँ लगता है प्रॉब्लम है, वर्क हार्ड, यू विल गेट अ सॉल्यूशन, यू विल कम आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। यूथ के लिए पर्टिकुलर ड्रीम बिग, बड़ा सोचें, छोटा ना सोचें, स्टे ग्राउंडेड एंड वर्क विद पर्पज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस कैरियर बिल्डिंग। और आप देखिए, अगर मैं ये देखता हूँ कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, तो कई बार चीटिंग की वजह से पेपर डिले हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट को भी देखना होगा, तो हमारे को भी देखना होगा, दोनों तरफ से ये करना पड़ेगा। आई थिंक इस विश एंड विल वी कैन मेक इट। मेरे को पूरा भरोसा है, तभी मैं काम कर रहा हूँ इस एज में भी मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। मुझे भरोसा है कि ये कल फायदेमंद हो, और कुछ नहीं हो, हमारा देश तो आगे बढ़ेगा।
0: बिल्कुल, जैसे आपको भरोसा है, हम चाहते हैं कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो अभी यूथ है, उसको भी उतना ही भरोसा हो, तभी हम उस लेवल पर पहुंच पाएंगे और जो 2047 का विकसित भारत है उसे देख पाएंगे।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: हम करेंगे, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं करेंगे। मेरे को लगता है कि अच्छी होगा, टफ टास्क है, लेकिन पार्टिसिपेशन पब्लिक का होगा, गवर्नमेंट इसी तरह सच्चाई से लगी रहेगी। तो मैं जब ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ, तो मैं सब तरफ बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट की भी ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ, एथिक्स के बाद गवर्नमेंट में भी कर रहा हूँ, दे शुड आल्सो, प्रोफेशन में भी कर रहा हूँ, हमारे प्रोफेशन में बहुत हैंकी पैंकी है, उसमें भी बात कर रहा हूँ कि उसमें भी आपको, तो सब तरफ हर व्यक्ति को, हर फील्ड में, हर लोगों को इस पर काम तो करना ही पड़ेगा। और मेन काम यही है कि हाउ कैन बी मोर एथिकल, ऑनेस्ट।
0: थैंक यू सो मच सर, रेडियो महारानी के स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी सारी, इतनी इम्पोर्टेंट बातें जो हैं हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए।
1: आई एम ग्रेटफुल एंड वंस अगेन, एंड हम उस पर और भी काम करते रहें। एक दिन हम जरूर इसको विकसित भारत बना के रहें।
0: डेफिनेटली
1: सर,
0: वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और लिसनर्स, आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: सिनेमा की दुनिया हमें जितनी ग्लैमरस नजर आती है उसके पीछे उतनी ही मेहनत, पेशेंस और डेडिकेशन छुपी होती है। एक कैरेक्टर को स्क्रीन पर जिंदा करने के लिए सिर्फ डायलॉग्स या एक्सप्रेशंस ही नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन, इमोशंस और लगातार लर्निंग की भी जरूरत होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर निखिल खरबंदा, जिन्होंने पंजाबी सीरियल नवा मोड़ में अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीता। ये सीरियल जी पंजाबी और जी 5 ओटीटी पर टेलीकास्ट हुआ था। वेलकम निखिल।
1: थैंक यू।
0: सो निखिल, सबसे पहले एक्टिंग की फाउंडेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके निखिल, एक एक्टर बनने के लिए वो कोर स्किल्स क्या हैं जो आनी बहुत जरूरी हैं?
1: पलक, एक एक्टर बनने के लिए 4 से 5 मेन स्किल्स हैं जो आपको आनी जरूरी हैं। इसमें मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला है आपका कॉन्फिडेंस।
0: जी,
1: ये एक स्किल की तरह ही काम करता है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलने का तरीका, आपकी एक्टिंग, आपकी डांस और जो भी आप स्किल्स ग्रैब कर सकते हो वो सभी आपकी कोर स्किल्स हो जाती हैं। लेकिन जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यही होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का तरीका और आपकी एक्टिंग और कैसे आप सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो।
0: बिल्कुल।
1: और क्या आपका नेचर है, यही कोर स्किल्स होती हैं जो एक एक्टर को एक्टर बनाती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं पूछूं कि एक्टिंग में सबसे मुश्किल क्या है, कुछ नया सीखना या पुरानी हैबिट्स को भूलना?
1: बात एक्टिंग की नहीं है, कुछ भी।

0: कुछ भी सीखने से पहले आपको उसे भूलना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि इसी में सबसे ज्यादा टाइम जाता है कि आप किसी पुरानी चीजों को भूलोगे कैसे, क्योंकि जब तक वेसल को खाली नहीं करोगे तो भर नहीं पाओगे।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो वही चीज होती है, कुछ नया सीखना भी मुश्किल है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है जो आपने गलत सीखा है उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना और दोबारा से उसे जीरो करना, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है। आपके दिमाग को बताना कि यार तूने गलत सीखा था, उसे हटा, क्योंकि सीख तो आप लोगे, आपके पास मेंटोर होगा, आपको सिखा देगा एक महीने दो महीने में जो भी स्किल होगी, लेकिन वो निकालेगा कैसे वो आपके ऊपर है ना।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: निकालो उसके, वो इम्पोर्टेंट है।
1: और अगर मैं पूछूं कि आप डेली लाइफ में लोगों को कैसे ऑब्जर्व करते हो और उनके ट्रेट्स को अपने कैरेक्टर में कैसे ट्रांसलेट करते हो?
0: यार डेली लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व करना मुझे लगता है हर एक्टर करता है वो, और उनको कैसे ऑब्जर्व करता हूँ ना मैं, मेरा बहुत अलग सा तरीका है उनको ऑब्जर्व करने का। मतलब उनकी आंखें पढ़ता हूँ, उनके हाव भाव पढ़ता हूँ कि वो अगर ये चीज कर रहे हैं, अगर वो उन्होंने अपने बालों को अपने हाथों से फहराया तो क्यों फहराया
1: जी,
0: मतलब इसके पीछे वो क्या सोच रहा होगा वो बंदा कि ये बात करते करते उसका हाथ गया, तो वो ऑब्जर्वेशन है। और वो कैरेक्टर कैसा है, अगर सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन करता हूँ मेट्रो के अंदर बैठ, क्योंकि मेट्रो में हम खाली होते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते हैं, फोन चल नहीं रहा होता है हमारा, तो वही ऑब्जर्वेशन होती है कि एक इंसान खड़ा है तो वो कैसे खड़ा है, वो सोच रहे तो उसकी आंखें कैसे टिकी हुई हैं एक जगह पे। आपने कभी देखा होगा, अगर आप कुछ सोच रहे हो ना, अगर आप सामने की चीज को देख भी रहे हो तो आप उसे नहीं देख रहे हो,
1: बिल्कुल
0: आप पीछे कहीं पे हो, सामने वाले को लगेगा तो क्या देख रहा है, लेकिन आपको पता लगेगा कि वो जोन आउट है। तो वो ऑब्जर्वेशन, वो जोन आउट है, उसके चेहरे पे जोन आउट होकर हंसी आ रही है, स्माइल आ रही है, हाथ कहाँ जा रहे हैं, तो वो सब ऑब्जर्वेशन है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो और उसको याद करके फिर अपने कैरेक्टर में इंप्लीमेंट भी कर सकते हो।
1: बिल्कुल सही बात है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं निखिल के साथ, अब वक्त है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कैमरा के सामने एक्टिंग की रियलिटी और बिहाइंड द सीन्स चैलेंजेस की, कहीं मत जाइएगा। स्टे

0: रक्तदान एक ऐसा दान है जो किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। पत्रकार सुशील भाटिया जी अपने पिता स्वर्गीय चौधरी केवल राम भाटिया जी और अपनी माता स्वर्गीय सरला देवी जी की याद में एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। यह रक्तदान शिविर 7 जून रविवार को भगत वासुराम लखवानी धर्मशाला NIT2 फरीदाबाद में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। विशेष बात यह है कि यह रक्तदान शिविर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की सहायता के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आपका एक यूनिट रक्त किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान और उसके जीवन में नई उम्मीद ला सकता है। रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है कि आइए मानवता की इस नेक मुहिम का हिस्सा बने, रक्तदान करें और किसी जरूरतमंद के जीवन में उम्मीद की किरण बने।
1: आज मेरे पास पसीना है, डिहाइड्रेशन है, हीट वेव्स है, तुम्हारे पास क्या है?
2: मेरे पास नींबू पानी है।
3: बात करो।
4: मनगणत सूत्र लगे से मनगणत सूत्र।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निखिल खरबंदा। ओके निखिल, अब बात करते हैं एक्टिंग के प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड की। कैमरा, लाइट और साउंड के बीच में रहकर अपनी एक्टिंग की नेचुरैलिटी कैसे बनाए रखें?
1: यार, एक एक्टर को अपनी एक्टिंग की नेचुरैलिटी कैमरा, लाइट और साउंड के बीच में रहकर ही बनानी होती है।
0: बिल्कुल।
1: अब एक एक्टर वो कमर्शियल एक्टर क्यों है? आप जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
0: सही बात है।
1: तो जब तक आप सेट पे जाओगे नहीं, आप वो कैमरा, लाइट और साउंड के बीच में एक्ट करोगे नहीं और वो नेचुरल रहोगे नहीं, तो आपको कैसे पता कि यू आर इनफ एंड गुड एक्टर?
0: यस।
1: सो वो तो आपको बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्टर वो बना भी लेता है यार। कैमरा, लाइट और साउंड सिर्फ एक कमांड है
0: जी,
1: जो आपको बताती है कि एक्टर यू आर रेडी।
0: यस।
1: सो यस, आई एम ऑलवेज रेडी। और कैमरा पर्सन बैठा है, लाइट पे लाइट पर्सन बैठा है और सेट पे एक्टर बैठा है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब एक्टर का काम, जब वो अपना काम कर रहे हैं तो एक्टर को भी अपना काम करना है। और नेचुरैलिटी क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, उसका ये है कि आप उस पे ध्यान मत दो। जो कैमरा के पीछे है ना पलक, वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 10-10, 15-15 साल से वो सिर्फ एक कैमरा चला रहे हैं, लाइट मैन सिर्फ लाइट सेट कर रहे हैं
0: जी।
1: सो जितना आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना एज एन एक्टर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, मेरी उम्र से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे उन्हें नहीं देखना है, वो अपना काम बहुत अच्छे से निभा लेंगे। आप उस चीज उस तरफ मत देखो कि सर ये मेरा एंगल कहाँ से आ रहा है, लाइट ये मेरे यहाँ पड़ रही है। काफी एक्टर्स होते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन होते हैं, बहुत उनके नखरे होते हैं कि यार ये लाइट यहाँ पड़ रही है। तो ठीक है, आप कभी कभी किसी पोजीशन के अंदर, किसी कैरेक्टर के अंदर होगी, सामने से लाइट चुभ रही है आपकी आंख में, तो वो बात कहना बनता भी है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आएगा
0: जी।
1: लेकिन जब आप किसी बीइंग इन अ सिचुएशन हो, तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई कैमरा, कोई लाइट, कोई साउंड आपको परेशान करेगी, क्योंकि आप उस सिचुएशन में हो और आप निभा रहे हो एज एन एक्टर उसे। बस
0: क्या बात है, बिल्कुल सही। और जब डायरेक्टर 10 बार वन मोर टेक बोलता है, तो एक एक्टर फ्रस्ट्रेशन और परफेक्शन के बीच बैलेंस कैसे बनाता है?
1: इसमें अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना आपको, जब एक डायरेक्टर बोलता है ना कि वन मोर यार, पर अभी तक जो मुझे, इतने डायरेक्टर्स मुझे मिले हैं, वो पता क्या बोलते हैं? अच्छा था, एक और करते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो इससे एक एक्टर को समझ जाना चाहिए कि वो अच्छा था, उसने आपके लिए बोला है, एक और करते हैं, वो भी आपके लिए बोला है कि ये नहीं, सही नहीं था। उसके कट बोलने से पहले आपका दिमाग बोल देगा कि नहीं यार मजा नहीं आया।
0: बिल्कुल।
1: तो जब वो वन मोर टेक बोलेगा, तो आपको इस पे नहीं जाना कि ये संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। आपको ये देखना कि आप सेटिस्फाई हुए। अगर आपकी ड्यूटी है डायरेक्टर को सेटिस्फाई करना और खुद को सेटिस्फाई करना। जब डायरेक्टर सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। तो जब डायरेक्टर ने बोल दिया वन मोर टेक, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि पीछे क्या गलती थी, उनसे पूछना है कि सर क्या मैं और बेटर करूं। जब आप वो कर दोगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप उसमें फंसोगे, कि यार फ्रस्ट्रेशन में नहीं फंसोगे।
0: बिल्कुल सही बात है। अच्छा निखिल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि शूट खत्म होने के बाद भी आप वो कैरेक्टर कुछ दिनों तक घर लेकर गए अपने साथ?
1: पलक, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक एक्टर जब कोई कैरेक्टर निभा रहा होता है, तो सिर्फ वो कैरेक्टर निभा रहा होता है और वो एक्टर की कलाकारी है कि उसने उसे निभाया और कट होते ही उसने उसे छोड़ दिया।
0: बिल्कुल।
1: और फिर दोबारा से स्टार्ट होते ही फिर दोबारा से उसे पकड़ लिया। अगर आप उसको अपने दिमाग में ही बिठा लोगे, तो फिर वही वाली बात की उसे निकालोगे कैसे और नया लाओगे कैसे।
0: एग्जैक्टली।
1: तो मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, एक मैंने थिएटर प्ले किया था जिसकी हमने बहुत प्रैक्टिस की थी। अब प्रैक्टिस की थी तो वो याद में अभी भी रहता है, आपने क्या फील किया था वो अभी भी रहता है, आप उसे अभी भी निभा सकते हो, उतनी ही बखूबी से निभा सकते हो।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हाँ, कभी मैं घर नहीं लेके गया उसको कि भाई मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ। मैं जब चाहूंगा मैं वैसा फील कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं चाह रहा तो मैं वैसा फील नहीं करूंगा।
0: बिल्कुल।
1: आई एम मी ओनली।
0: नाइस। कन्वर्सेशन काफी इंगेजिंग होती जा रही है, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात होगी AI और एक्टिंग के फ्यूचर पर। यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रानी तुझे पता है कल पड़ोस वाले भैया का एक्सीडेंट हो गया।
1: अरे एक्सीडेंट, पर कैसे हुआ?
0: बस क्या बताऊं, इस तपती धूप में बाइक लेके दोस्त के घर जा रहे थे, ना साथ में वाटर बॉटल और ऊपर से इतनी गर्मी कि उन्हें चक्कर आ गए और बैलेंस बिगड़ गया।
2: इस गर्मी टू व्हीलर चलाते वक्त अपना खास ध्यान रखिए। पीक हीट आवर्स में अननेसेसरी ट्रेवल अवॉइड करिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और सेफ राइड करिए, क्योंकि घर पहुंचना जरूरी है।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
4: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं हूं पलक और आप सुन रहे हैं खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। निखिल, टेक्नोलॉजी हर फील्ड को इम्पैक्ट कर रही है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इससे अलग नहीं है। और आपको भी पता है कि आजकल एआई हर जगह है, तो एक आर्टिस्ट के लिए ये थ्रेट है या टूल, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: एआई हर जगह है, एआई बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व हो रहा है।
0: यस,
1: और एक्टिंग इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया तरीके से काम भी कर रहा है। बट एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, वो मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे लिए कोई थ्रेट है। हाँ, मार्केट चेंज हुई है, मैं मानता हूँ मार्केट में काफ़ी चीज़ें हैं जो एआई से बन रही हैं, एआई से हो रही हैं, बट थ्रेट सिर्फ इतना सा है, मेरे को ऐसा लगता है थ्रेट सिर्फ इतना सा है कि आपकी जो यूजीसीज हैं, जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। शूट्स कम मिलते हैं एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को मार्केट के अंदर, लेकिन थ्रेट नहीं कह सकता मैं, टूल कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ आइडिया है, कुछ मुझे परफॉर्म करना है, कुछ मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, कुछ मुझे राइटिंग करनी है, तो वो मेरा बेसिक और कोर आइडिया होगा जो मैं एआई को दूंगा और वो मुझे थोड़ा सा इवोल्व करके बताएगा।
0: बिल्कुल।
1: अभी भी मैं अगर कुछ स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ तो वो मेरा बेसिक आइडिया होता है कि मुझे क्या चाहिए, स्टार्ट, मिडल, एंड क्या होगा, क्या कहाँ वो जाएगी, कैसे वो जाएगी, क्या कैरेक्टराइजेशन होगा। एआई कैरेक्टराइजेशन नहीं देगा आपको,
0: बिल्कुल
1: एआई इमोशन नहीं देगा आपको, वो आपके खुद के होंगे, वो आपको एक कहते ना ढांचा बनाकर दे देगा। तो नींव आपकी होगी, ढांचा वो बनाकर दे देगा, उसके बाद घर आप बना लो।
0: बिल्कुल सही बात है, क्या बात है। और क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में एआई एक्टर्स ह्यूमन एक्टर्स को रिप्लेस कर पाएंगे या ये एक्टिंग का सोल हमेशा एक्सक्लूसिव रहेगा?
1: आपको लगता है कि एआई एक्टर्स को रिप्लेस कर पाएंगे?
0: नहीं, मुझे नहीं लगता।
1: बस वैसे ही है, क्योंकि जब बात एक्टिंग की आती है तो बात इमोशंस की, बात फीलिंग्स की, बात एक्सपीरियंसेस की आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। सो ये सब चीजें जब तक हैं, हाँ थोड़ा सा आपका कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि वही वाली बात, मार्केट में थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ है और वो होता आ रहा है। आप देखो हर पांच छह सात साल बाद मार्केट में ट्रेंड नया आता है, तो ये भी नया ट्रेंड है, ठीक है, उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टर के लिए खतरा नहीं है और एक्टर को रिप्लेस तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर आपने अभी देखा भी हो तो ऑस्कर से जितनी भी अभी तक की AI related movies हैं जिसमें AI का use हुआ है,
0: जी,
1: अब से वो nomination में भी नहीं जाएंगी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये नई अपडेट है, तो उन्हें भी पता है कि नहीं रिप्लेस करेगा।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और जब फीलिंग इमोशंस ही नहीं है यार, जो मेन चीज है, आप लोग क्यों देख रहे हो एक फिल्म, एक मूवी क्यों देख रहे हो, उसको समझने और उसे अपने दिमाग में बिठाने के लिए ना, आप सिर्फ एक कुछ बना के छोड़ दोगे, वो एक्टिंग नहीं है, वो मूवी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो नहीं रिप्लेस कर पाएगा।
0: बिल्कुल सही बात है। अगर एआई किसी एक्टर की परफॉर्मेंस को परफेक्ट बना दे तो उसमें ह्यूमन एरर की खूबसूरती मिस की जाएगी?
1: बिल्कुल की जाएगी।
0: कैसे?
1: मैं सोच के देखो, आपने कुछ स्क्रिप्ट दी एआई को, उसने बना दी, परफॉर्मेंस बना दी कि उसने बता दिया कि आपको ये बोतल इस टाइम पे उठानी है, ये ऐसे करना है, इसके बाद ये लाइन बोलनी है।
0: बिल्कुल।
1: आपको पूरा स्क्रिप्ट दे दिया उसने, आप उसे परफॉर्म करने जाओगे, आपने कितने मूवीज में सीन ऐसे देखे होंगे जो इम्प्रोवाइजेशन वर्ड होता है, जो इम्प्रोवाइज होते हैं, और वो इम्प्रोवाइज सीन इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, आपको पता लगता है कि यार बंदे ने अगर आंख भी हटाई ना तो कैसे हटाई, उसने क्या सोच के हटाई होगी। तो वो लिख के थोड़ी देगा आपको,
0: जी,
1: बता के थोड़ी देगा आपको। अगर मैं आपसे बात करते हुए, अगर मेरा हाथ हिल रहा है, अगर मैं बात करते हुए मेरी आंख ऊपर हुई, तो वो लिखा थोड़ी हुआ है। अगर वो लिखा हुआ है तो फिर मैं सिर्फ उसको निभाने में ही रह जाऊंगा।
0: सही बात है।
1: मैं तो सोच ही नहीं पाऊंगा कि मैंने क्या फील किया, तो वो एक्टिंग खत्म हो गई ना।
0: सही बात।
1: बीइंग इन द सिचुएशन खत्म हो गया ना, फिर तो आप एक्टिंग कर रहे हो, जो एक्टर को कभी करनी ही नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: एक एक्टर को एक्टिंग तो करनी ही नहीं है ना, उसको सिर्फ सिचुएशन में रहना है और जो फील करा है वो प्रेजेंट करना है, बस।
0: बिल्कुल सही बात है। बहुत सी यूनिक पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं आज की डिस्कशन से। एक और शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑडिशंस, रिजेक्शंस और इंडस्ट्री के मिथ्स की। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

0: मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
1: वाबा, वाबा।
0: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
2: और आगे
0: याद रखिए, हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
5: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
6: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
5: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
7: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्टर निखिल खरबंदा। निखिल, शो के फाइनल सेगमेंट में बात करते हैं एक्टिंग करियर की रियलिटीज की। ओके निखिल, कास्टिंग के प्रोसेस में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट क्या होता है जो बाहर वालों को नहीं पता?
1: यार, कास्टिंग अपने आप में ही बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है। कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर इतनी प्रोफाइल्स होती है ना, उनके ऊपर इतनी प्रोफाइल्स होती हैं कि आप समझोगे भी नहीं एक दिन में कितनी प्रोफाइल्स देखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप सोचो आपके व्हाट्सएप पे एक टाइम पे 100 लोग एक इतना बड़ा चिट्ठा भेज रहे हैं, उसके बाद 5 फोटोज भेज रहे हैं, 10 ऑडिशन लिंक्स भेज रहे हैं। कितने खोल लोगे यार आप?
0: सही,
1: कितने खोल लोगे यार? हर किसी को आपको रिप्लाई भी देना पड़ेगा, ओके यस विल गेट बैक टू यू। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है कास्टिंग वाले के लिए उसको बताना, एक एक्टर को अपना बना के रखना। मार्केट में बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स है ना, अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे एज एन एक्टर, उन्हें भी तो आपकी जरूरत है ना।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप उनसे परेशान हो गए कि यार ये तो मेरा रिप्लाई नहीं करता है बात का, आप कल को काम आपको दूसरे सेम प्रोजेक्ट के लिए कोई और कास्टिंग वाला आपको काम देगा, आप प्रेफर करोगे मैं तो उसके पास जाऊंगा यार,
0: सही बात,
1: उसके थ्रू जाऊंगा क्योंकि मुझे रिप्लाई करता है। तो एक्टर को अपना भी बना के रखना है, अपना टाइम मैनेज भी करना है, एक्टर को समझा के भी रखना है। तो कास्टिंग वालों के ऊपर ना बहुत बहुत दिक्कत होती है, और एक्टर्स को ना और लोगों को ये लगता है कि यार इसके हाथ में है, ये कर सकता है, कुछ परसेंट तक ही कर सकता है। डायरेक्टर का कॉल होता है लास्ट, डायरेक्टर का और क्रिएटिव टीम का कॉल होता है कि इस एक्टर को क्या कैरेक्टर देना है, देना भी है या नहीं देना है। कास्टिंग वाले के हाथ में सिर्फ इतना है कि आपका अच्छा ऑडिशन वहां तक भेज दे।
0: बिल्कुल,
1: तो वो फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये है कि एक्टर को समझाना कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं जितना कर पाता हूँ उतना कर रहा हूँ तेरे लिए, बाकी मेरे हाथ में नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: चीजें काफी फ्रस्ट्रेटेड होती है उनके खुद के लिए, खुद को ही नहीं समझा पाते हैं कि सामने वाले को कैसे समझाना है
0: जी,
1: तो वो चीजें हैं।
0: ओके, और रिजेक्शन हैंडलिंग, यानी कि जब 100 ऑडिशंस के बाद भी कॉल नहीं आता, तो एक एक्टर को मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी चाहिए?
1: आपने सुना है जब कोई आर्मी में जाता है तो क्या बोलते हैं कि सर पे कफन बांध लिया
0: जी,
1: बोलते हैं ना, सेम चीज है। अगर किसी को एक्टर बनना है और किसी को एक्टिंग में जाना है तो ये सोच लो रिजेक्शंस तो आपके पास है ही, पेशेंस इज द की। जितना पेशेंस एज एन एक्टर चाहिए ना आपको, जितनी तैयारी, जितना पेशेंस चाहिए आपको, वो आपको आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा ना तो आप हर दूसरे तीसरे दिन परेशान ही रहोगे, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कॉल नहीं आ रहे हैं। बड़े से बड़े एक्टर्स जितने भी हैं, आप किसी के भी इंटरव्यू उठा के देख लो, किसी से भी बात करके देख लो, सब ने रिजेक्शन फेस किए हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतनी जल्दी उसको ओवरकम कर लोगे आप। और ओवरकम कैसे करना है? अपनी स्केड्यूलिंग बना के।
0: बिल्कुल,
1: आपका स्केड्यूल प्रॉपर रहेगा ना, आप मेन काम मत रखो इसे। एक्टर को अपनी स्किल्स पे काम करना है, अपनी बॉडी पे काम करना है, अपनी वॉइस पे काम करना है, अपने फेस पे काम करना है, अपनी लुक्स पे काम करना है। जब डेली आपके पास काम होगा ना तो आप वो भी करोगे।
0: बिल्कुल,
1: जब दिमाग ही खाली नहीं होगा, सिर्फ इतना ऑडिशन आया, ऑडिशन बना के दिया, बात खत्म
0: जी।
1: मत पूछो बार बार कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कास्टिंग को आपकी आपसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें आपसे पैसा कमाना है।
0: बिल्कुल सही,
1: समझ रहे हो, जब परसेंटेज कट होता है, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो पैसा भी तो नहीं मिलेगा।
0: सही बात है,
1: तो आप क्यों उनसे बार बार पूछ रहे हो? मत पूछो, अपना ऑडिशन दिया, खत्म, दूसरे ऑडिशन के लिए प्रोफाइल भेजो, अपने स्किल्स पे काम करो, बॉडी बनाओ, जिम जाओ और बढ़िया खाओ पियो, एंजॉय करो।
0: ओके, अच्छा, इंडस्ट्री का वो कौन सा मिथ है जो आज आप तोड़ना चाहेंगे?
1: आप सिर्फ टैलेंटेड हो और आप कर सकते हो तो आपका हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: टेंशन मत ले भाई, हो जाएगा।
0: सही बात है,
1: नहीं होगा भाई, लिख के देता हूँ, नहीं होगा। 50% किस्मत, 50% टैलेंट।
0: बिल्कुल,
1: बिना किस्मत के आप नहीं जा सकते।
0: सही बात है, डेस्टिनी,
1: डेस्टिनी। और मैं आपको अगर इस पे कोई चीज बताऊँ ना, अभी एक दोस्त कास्टिंग में था, उसने मुझे बताया कि हम एक वो एक फीचर फिल्म बना रहे थे
0: जी,
1: रीमेकिंग थी, मतलब हॉलीवुड फिल्म की रीमेकिंग थी, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट था। तो एक कैरेक्टर था जिसमें एक बंदा डिसाइड हो चुका था, सेकंड राउंड हो चुका था, मतलब पोस्टर लग चुका था उसके नाम का कि वही जाएगा उस कैरेक्टर में। एक नॉर्मल सा इंसान आया ऑडिशन में, तो उसकी ना लुक जा रही थी, ना एक्टिंग जा रही थी, कुछ भी नहीं जा रही थी, और उसका ऑडिशन लेना भी नहीं चाह रहे थे वो लोग।
0: बिल्कुल,
1: उसने मुझे बताया। फिर जब वो धक्का कर रहा, सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा ऑडिशन ले लो ले लो, उसने कहा चल ठीक है, उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट दे दी, उसे ऑडिशन लिया और कास्टिंग एसोसिएट ने ऑडिशन लिया और उसने ड्राइव में डाल के दे दिया। उसको पता था कि नहीं होगा, उसने फिर भी ड्राइव में डाल दिया, चल ठीक है। कास्टिंग डायरेक्टर्स को वो पसंद आ गया।
0: ओके,
1: वो ऑडिशन पसंद आ गया, उस बंदे का सेकंड राउंड भी लिया, और जो बंदा पहले से फिक्स था तो मानोगे नहीं उसकी आंखों के सामने रिप्लेस हो गया। जिस बंदे का वो लोग ऑडिशन भी ले रहे थे वो एक सही टाइम पे सही जगह पे खड़ा था और उसकी डेस्टिनी थी वो कैरेक्टर।
0: बिल्कुल।
1: तो कैसे चीजें बदल जाती है ना, डेस्टिनी है भाई। सही टाइम पे सही जगह सही इंसान से मिल लोगे ना अगर आप, तो चीजें यूं बदल जाएंगी।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तो ये मिथ ही है कि हो जाएगा।
0: और हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: लिसनर्स के लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब दिए मैंने, और उसके बाद अगर आप भी इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो स्टार्ट करो लर्निंग से, और उसके बाद कुछ क्लासेस लो, कुछ थिएटर क्लासेस लो, अपने ऊपर काम करो, अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं पूछेगा अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर बात करने का तरीका नहीं होगा। बहुत स्किलफुल लोग हैं, बस उन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें उठना बैठना नहीं आता, उन्हें कम्युनिकेट करना नहीं आता, उन्हें नेटवर्क बनाना नहीं आता। तो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्क कैसे बनेगा, कम्युनिकेशन से ही बनेगा। सो यही एडवाइस है मेरी बस।
0: थैंक यू सो मच निखिल।
1: थैंक यू।
0: तो ये थी आज की खास मुलाकात एक्टर निखिल खरबंदा के साथ। एक्टिंग सिर्फ स्क्रीन पर नजर आने वाली परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, लर्निंग और सेल्फ बिलीफ का एक सफर है। निखिल आपका बहुत बहुत थैंक यू आज हमारे साथ इतनी इनसाइटफुल बातें शेयर करने के लिए। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे थे खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मिलते हैं जल्द एक और खास मेहमान के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके

चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
4: कामयाब हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।
5: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
6: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

म्यूजिक की दुनिया में सिंगर्स बहुत आते हैं, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो गाने से पहले ही पहचान ली जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और मैं जिस आवाज की बात कर रहा हूं वो है शंकर महादेवन की। 1967 में मुंबई के एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए शंकर महादेवन बचपन से ही म्यूजिक के करीब थे। सिर्फ 4-5 साल की उम्र में ही उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। जब उनके दोस्त स्कूल के बाद खेलने जाते थे तब शंकर सुर और ताल की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन उनकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। वो उन लोगों में से नहीं थे जो बचपन से डिसाइड कर लेते हैं कि सिंगर ही बनना है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम भी किया। दिन भर ऑफिस का काम और फिर म्यूजिक की प्रैक्टिस। एक तरफ सिक्योर करियर था, दूसरी तरफ पैशन। और कई साल तक उन्होंने दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। फिर दिल की आवाज बार बार एक ही बात कह रही थी, म्यूजिक ही उनकी असली मंजिल है। हर किसी के पास टैलेंट होता है, लेकिन अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है। और ये हिम्मत थी शंकर महादेवन के पास। और आगे कैसे उनकी लाइफ में सब कुछ बदल गया, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा।

0: आज मेरे पास पसीना है, डिहाइड्रेशन है, हीट वेव्स है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास नींबू पानी है।
2: बात करो।
1: ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, होड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

बातें हैं, उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादे हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में, मेरे सारे गीत ढले।

कभी कभी एक गाना आर्टिस्ट को फेमस नहीं बनाता, एक गाना आर्टिस्ट को फिनोमिना बना देता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं शंकर महादेवन की। ईयर 1998, एक ऐसी एल्बम रिलीज हुई, उस एल्बम का सबसे बड़ा गाना था ब्रेथलेस, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। लोग बार बार कैसेट रिवाइंड करके सुन रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, कुछ लोग कह रहे थे कि एडिटिंग का कमाल है, लेकिन सच ये था कि शंकर महादेवन ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकल कंट्रोल और ट्रेनिंग का डेमोंस्ट्रेशन दिया था। अचानक से हर जगह उनका नाम होने लगा, रेडियो स्टेशन पर, टीवी इंटरव्यूज में, म्यूजिक मैगजीन्स में, और सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये सिंगर है कौन। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि शंकर ने अपनी सक्सेस को कभी भी सिर पर चढ़ने नहीं दिया। उन्हें पता था कि एक गाना करियर बना सकता है, लेकिन करियर को सस्टेन करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। ब्रेथलेस ने उन्हें फेमस जरूर बनाया, लेकिन उन्हें लेजेंड उनकी कंसिस्टेंसी ने बनाया। और कैसे वो सिंगर से म्यूजिक कंपोजर बने, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।

0: पूछा जा रहा है। सवाल है पानी की एक बूंद भी दिखी हो। चल मिठू बस थोड़ी देर और।
1: गाय हमारी माता है तो बोलते हैं, तो फिर इस मम्मी को पानी भी तो पिला ही सकते हैं। उफ, देख क्यों नहीं रहा ये पानी।
2: ओह नो, ये प्लेट में तो पानी ही नहीं है। अली दूसरा भी खाली है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं?
3: गर्मी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उन बेजुबानों को भी सताती है जो बिन घर और खाने के रोज भटकते हैं। तो ये समझते हुए क्या आप उनके लिए थोड़ा सा पानी रखेंगे? सड़क किनारे, बालकनी, छत या घर के बाहर, जगह नहीं इंटेंशन ढूंढो। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

कुछ लोग एक फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग पूरी इंडस्ट्री की डायरेक्शन बदल देते हैं। ब्रेथलेस के बाद शंकर सिर्फ सिंगर बनकर नहीं रहना चाहते थे। इसी दौरान उनकी पार्टनरशिप बनी एहसान नूरानी और लॉय मेंडोंसा के साथ और जन्म हुआ शंकर एहसान लॉय का। ये सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप नहीं था, ये बॉलीवुड के म्यूजिक लैंडस्केप में एक रेवोल्यूशन था। साल 2001 में दिल चाहता है रिलीज हुई फिल्म ने यूथ सिनेमा को बदला और उसका म्यूजिक उसने बॉलीवुड के साउंड को मॉडर्न बना दिया। फिर आई कल हो ना हो, एक टाइटल ट्रैक जो आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है। फिर आई रॉक ऑन, रॉक ऑन ने म्यूजिक को मेनस्ट्रीम बनाया। भाग मिल्खा भाग ने मोटिवेशन को मेलोडी में बदल दिया। हर फिल्म के साथ उन्होंने प्रूव किया कि वो सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। उन्होंने गाने कंपोज नहीं किए, उन्होंने पूरी जनरेशन के इमोशंस को साउंड ट्रैक दिया। और कैसे उनको अवार्ड से नवाजा गया, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।
3: रानी तुझे पता है कल पड़ोस वाले भैया का एक्सीडेंट हो गया।
4: अरे एक्सीडेंट पर कैसे हुआ?
3: बस क्या बताऊं, इस तपती धूप में बाइक लेके दोस्त के घर जा रहे थे, ना साथ में वाटर बॉटल और ऊपर से इतनी गर्मी कि उन्हें चक्कर आ गए और बैलेंस बिगड़ गया।
5: इस गर्मी टू व्हीलर चलाते वक्त अपना खास ध्यान रखिए। पीक हीट आवर्स में अननेसेसरी ट्रेवल अवॉइड करिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और सेफ राइड करिए, क्योंकि घर पहुंचना जरूरी है।

0: पड़ोसन हूँ, इसलिए जासूस हूँ।
1: सुनो पम्मी बहन जी।
2: बोलो सिम्मी बहन जी।
1: तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए। हाय, वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंट जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

अवार्ड शेल्फ पर रखे जा सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट दिल में रखी जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं शंकर महादेवन की। करियर के दौरान शंकर महादेवन ने काउंटलेस अवार्ड्स जीते, नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंटरनेशनल रिकग्निशन, सब कुछ मिला। लेकिन अगर म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों से पूछा जाए कि शंकर महादेवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो शायद जवाब अवार्ड्स नहीं होगा, जवाब होगा रिस्पेक्ट। क्लासिकल म्यूजिशियंस उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, प्लेबैक सिंगर्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, यंग आर्टिस्ट उन्हें मेंटोर मानते हैं, और ऑडियंस उन पे ट्रस्ट करती है, क्योंकि उन्होंने कभी म्यूजिक को सिर्फ बिजनेस नहीं समझा। म्यूजिक उनके लिए आर्ट फॉर्म था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसी विजन के साथ उन्होंने म्यूजिक एजुकेशन को भी प्रमोट किया और हजारों स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। कुछ लोग सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग दूसरों को भी सक्सेसफुल बना देते हैं, और यही थे शंकर महादेवन। और क्यों शंकर महादेवन सिंगर से बढ़कर हैं, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा।

हर जनरेशन को कुछ आवाजें मिलती हैं, जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। शंकर महादेवन उन आवाजों में से ही एक है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं द लेजेंड शंकर महादेवन की। आज के एरा में ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदलते हैं। एक गाना आता है, वायरल होता है और कुछ हफ्तों बाद लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन शंकर महादेवन का म्यूजिक इस साइकिल से अलग है। उनके गाने सिर्फ चार्ट्स के लिए नहीं बने, वो दिलों के लिए बने हैं। इसीलिए कल होना हो आज भी उतना ही इमोशनल लगता है जितना पहले लगता था, और इसीलिए मितवा आज भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना पहले लगता था, और इसीलिए उनकी क्लासिकल परफॉर्मेंसेस आज भी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है। सबसे खास बात ये है कि इतनी सक्सेस के बाद भी उनकी पर्सनालिटी में ह्यूमिलिटी दिखती है। ना एरोगेंस, ना अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, ना अटेंशन के लिए ड्रामा, बस म्यूजिक। और शायद इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ एक सिंगर नहीं मानते, वो एक टीचर हैं, एक कंपोजर हैं, एक परफॉर्मर हैं, और सबसे बढ़कर एक इंस्पिरेशन है। आज अगर इंडियन म्यूजिक की कहानी लिखी जाए तो शंकर महादेवन का चैप्टर सिर्फ उनके गानों के बारे में नहीं होगा, वो डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पैशन के बारे में होगा। कुछ लोग गाने गाते हैं और कुछ लोग आवाज के जरिए यादें बना देते हैं। शंकर महादेवन ने सिर्फ सुर नहीं दिए, उन्होंने दिए इमोशंस। और शायद इसीलिए जब भी उनकी आवाज सुनाई देती है लगता है जैसे म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जा रहा, महसूस किया जा रहा है। तो ये थी कहानी शंकर महादेवन की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें टेक्स्ट करके जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। आगे आप किस सेलिब्रिटी की कहानी सुनना चाहते हैं बताइएगा जरूर हमें मैसेज पे, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। रेडियो महारानी के नाम से आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मिल जाएंगे, आप लोग उधर जाइए हमें मैसेज भेजिए, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। एंड मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें, अंगदान जीवन दान।
2: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंगदान, उतक दान और देहदान से जुड़े लोगों के अनुभवों को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा है और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी है।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: हाँ, देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
2: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइव डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजंस हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो आपको बॉडी भी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशंस में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।

स्ट्रॉज पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसका ऊपरी लेयर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है। तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में उस स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं। तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की जरूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। मैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौड़ जी से जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में, तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियां सामने आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है, वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
2: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है। उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपके थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता। और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
1: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप इसके बारे में
2: देखिए। स्किन डोनेशन मैं ये चीज अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं होता है। कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है, मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
1: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते।
1: जी, और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्पररी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं। उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है। किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना है, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें, उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है, स्किन डोनेशन?
2: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
1: पूरी मोटाई के साथ
2: निकाला जाता है और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
1: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन, ये आपको अश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो। यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट्स में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है तो उसकी स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है विशाल डडलानी की आवाज में फ्रॉम द मूवी ब्रदर्स, और इस गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, मैं गीत हूँ। और आज एक और कहानी आपको सुनाने आई हूँ, एक और बिजनेस टाइकून की कहानी, कैसे एक बिजनेस बनता है और कैसे उसमें स्ट्रगल की जाती है, ताकि जितने भी हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे इंस्पायर हो सके और जहाँ भी रुक रहे हैं, डर रहे हैं, तो वो जो डर है वो खत्म हो जाए। तो आज की कहानी एक ऐसी है जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जब हर दूसरा इंसान स्टार्टअप फंडिंग वैल्यूएशन की बात करता है, तब कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि असली बिजनेस की शुरुआत कहाँ से होती है। एक आइडिया से नहीं, एक डिग्री से नहीं, असल शुरुआत होती है सोच से। और आज की कहानी एक ऐसी ही सोच की है जो ना लग्जरी में पैदा हुई, ना पावर से, बल्कि सादगी और सेवा से। सोचिए जरा, 1800 के दशक का भारत, न इंटरनेट, न मॉडर्न एजुकेशन, न बड़े सपने दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स, और उसी दौर में एक बच्चा जन्म लेता है एक गरीब मारवाड़ी परिवार में। घर में ज्यादा कुछ नहीं, न पैसे की अबंडेंस, न रिसोर्सेज की भरमार, लेकिन उस बच्चे के भीतर एक चीज बहुत ज्यादा थी, सेल्फ रिस्पेक्ट। आज बिजनेस अनप्लग में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी में दौलत आई लेकिन वो कभी दौलत के पीछे नहीं भागे, जिसके पास सब कुछ हो सकता था लेकिन जिसने सब कुछ छोड़ देने का साहस रखा। और ये कहानी तब इंटरेस्टिंग बनती है जब आप ये जानते हैं कि ये इंसान सिर्फ बिजनेस से नहीं जुड़ा बल्कि देश के सबसे बड़े मूवमेंट का हिस्सा भी रहा। लेकिन अब हम किसी आंदोलन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो किसी को एंटरप्रेन्योर बनाती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर होना सिर्फ कंपनी खड़ा करना नहीं होता, एंटरप्रेन्योर होना होता है अपने वैल्यूज पर टिके रहना, चाहे हालात कैसे भी हो। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौट कर आऊंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

गाने का नाम है अनस्टॉपेबल और गाना है सिया की आवाज में, और इसी गाने के साथ स्वागत है। और मैं बात कर रही थी एक ऐसे नाम की जिन्होंने स्ट्रगल किया बहुत ज्यादा, लेकिन वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। अब वक्त है उस नाम को लेने का जिनकी वजह से आज की कहानी हमारी बन जाती है, और उनका नाम है सेठ जमना लाल बजाज। हाँ, वही जमना लाल बजाज जिन्हें आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिन्होंने कभी खुद को इंडस्ट्री से ऊपर नहीं समझा। 4 नवंबर 1889 राजस्थान के जयपुर रियासत का सीकर इलाका, एक गरीब मारवाड़ी परिवार, न विरासत में दौलत न एजुकेशन में कोई बड़ा बैकग्राउंड। जमना लाल बजाज सिर्फ 4थी कक्षा तक ही पढ़े हुए थे। आज के दौर में जहाँ डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स आइडेंटिटी बन चुके हैं, वहाँ ये फैक्ट अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है। लेकिन जिंदगी ने उनके सामने बहुत जल्दी एक टर्निंग पॉइंट रख दिया था। अब जमना लाल बजाज सिर्फ 5 साल के थे तब वर्धा के सेठ पचराज ने उन्हें गोद ले लिया। अब सोचिए, एक गरीब किसान का बेटा अचानक एक बड़े घर का हिस्सा बन जाता है। प्रॉपर्टी, वेल्थ, रिस्पेक्ट, सब कुछ उनके सामने था। लेकिन यही वो जगह है जहाँ से उनकी असली पहचान शुरू होती है, क्योंकि जमना लाल उस वेल्थ से इम्प्रेस नहीं हुए। उनके लिए पैसा कभी एंड गोल नहीं था, और यही वजह थी कि बचपन से ही वो दूसरों से अलग दिखते रहे। एक बार सेठ बचराज के परिवार को एक शादी में जाना था। घर के सभी लोग शाही कपड़ों, गहनों में सजे हुए थे। जमना लाल से कहा गया कि वो भी हीरे पन्नों से जड़ा हार पहने, लेकिन जमना लाल ने साफ मना कर दिया। उनके लिए दिखावा हमेशा से ही बहुत अलग रहा था। ये छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई कि पिता पुत्र के बीच अनबन हो गई, और 17 साल की उम्र में जमना लाल घर छोड़कर चले गए। बाद में इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पर अपने पिता को लिखकर भेजा, मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ, तन पर जो कपड़े हैं बस वही पहने जा रहा हूँ। जिंदगी में कभी आपका एक पैसा लेने अदालत नहीं जाऊंगा। सोचिए, 17 साल का एक लड़का इतनी क्लैरिटी के साथ इतना बड़ा फैसला ले रहा है। बाद में उन्हें ढूंढा गया, मनाया गया, वो घर लौटे, लेकिन मन से वो संपत्ति का त्याग कर चुके थे। और यही वजह थी, जब विरासत में उन्हें संपत्ति मिली तो इन्होंने उसे अपने लिए नहीं समाज के लिए इस्तेमाल किया। जमना लाल खुद को मालिक नहीं ट्रस्टी मानते थे, और शायद यहीं से वो रास्ता शुरू होता है जो इन्हें एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनाता बल्कि एक इंस्पिरेशन बनाता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे था उनका बचपन, उनकी एडुकेशन और वो वैल्यूज जो इन्होंने कम उम्र में सीख ली थी। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ जमना लाल बजाज के बारे में। सिर्फ अमीर परिवार में पले बड़े इंसान नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो हर चीज को यूज नहीं क्वेश्चन करते थे। अब जिंदगी के इस मोड़ पर उनके सामने सब कुछ था, पैसा, पहचान, सुरक्षा, लेकिन इनके अंदर एक डिसकम्फर्ट था। इन्हें लगता था कि कम्फर्ट बहुत डेंजरस चीज है क्योंकि कम्फर्ट सवाल पूछने से रोक देती है और जमना लाल बजाज सवाल पूछने वालों में से थे। यहीं से उनकी थिंकिंग सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक सीमित नहीं रही, इन्होंने खुद से पूछा, अगर मेरे पास इतना है तो समाज के पास क्यों नहीं, आज मैं सुरक्षित हूं तो बाकी लोग क्यों नहीं। यही वो फेज था जहां जमना लाल बिजनेसमैन बनने से पहले ह्यूमन बीइंग बने। उन्होंने अपने पैसे को पावर नहीं बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई और यही माइंडसेट इन्हें महात्मा गांधी के करीब ले गया। महात्मा गांधी से इनका रिश्ता फैन फॉलोअर वाला नहीं था, वो रिलेशन था वैल्यूज का, ट्रस्ट का और डिसिप्लिन का। गांधी जी ने इन्हें सिखाया कि वेल्थ का मतलब कलेक्ट करना नहीं, सर्कुलेट करना होता है और यहीं से जमना लाल के डिसीजंस बदलने लगे। वो सोचने लगे कि बिजनेस अगर करना है तो ऐसा जो सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं लोगों की जिंदगी में भी इम्पैक्ट छोड़े। इनके लिए प्रॉफिट गोल नहीं था, आउटकम था, गोल था सेल्फ रिलायंस। यही सोच आगे चलकर बजाज ग्रुप की बैकबोन बनी। लेकिन अभी तक एक चीज मिसिंग है, सोच तो बन गई, वैल्यूज भी क्लियर है, पर सवाल ये है इस सोच को स्ट्रक्चर कब मिला, ये आइडियाज एक्चुअल कंपनी में कन्वर्ट कब हुआ और बजाज सिर्फ एक नाम नहीं एक लेगेसी कब बना। कहानी बताऊंगी आपको, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं गीत हूँ और अब बात करते हैं बिजनेस की। नो इमोशन, नो इंस्पिरेशन कोट्स, ओनली स्ट्रक्चर, डेटा और रियलिटी। जमुना लाल बजाज का नाम आज बजाज ग्रुप से जुड़ा है, लेकिन ये ग्रुप एक दिन में नहीं बना। 1915 के आसपास जमुना लाल बजाज ने कॉटन ट्रेडिंग से शुरुआत की। रॉ कॉटन खरीदना, उसकी प्रोसेसिंग और फिर रीसेल। सिंपल बिजनेस, हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन। कोई लग्जरी नहीं, कोई ब्रांड बिल्डिंग नहीं। उस समय भारत में कॉटन सबसे ज्यादा कॉमन था और जमुना लाल बजाज ने वही चुना। 1926 में इन्होंने बजाज स्पाइनिंग एंड वेविंग मिल्स की नींव रखी और यहीं से मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री हुई। अब ध्यान दीजिए, ये कोई ग्लैमरस सेक्टर नहीं था। टेक्सटाइल बिजनेस मतलब हैवी कैपिटल, लेबर इश्यूज और स्लिम मार्जिन। लेकिन जमुना लाल बजाज ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखा, इन्होंने कैपेसिटी बिल्ड की। 1930s 40s में बजाज ग्रुप का फोकस रहा टेक्सटाइल, शुगर, पावर। डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कंट्रोल एक्सपेंशन। हर बिजनेस फिजिकल एसेट बेस्ड था, नो टेक, नो कंज्यूमर ब्रांड। आज का बजाज ऑटो तब पिक्चर में ही नहीं था। टर्नओवर की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में एग्जैक्ट पब्लिक नंबर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक 1940 तक बजाज इंटरप्राइजेज सेंट्रल इंडिया में मेजर टेक्सटाइल एम्प्लॉय बन चुका था। इंडिपेंडेंस के बाद ग्रुप ने स्ट्रक्चर्ड एक्सपेंशन शुरू की। 1960 से 1970 बजाज ऑटो का राइज हुआ, लेकिन वो चैप्टर जमुना लाल के बाद का है। जमुना लाल के टाइम तक बिजनेस का स्केल था, ब्रांड नहीं, ये समझना जरूरी है। इनका कंट्रीब्यूशन कंज्यूमर फेम नहीं था, फाउंडेशन था, फैक्ट्रीज थी, सप्लाई चेन्स थी, सिस्टम थे, और ये सब हाई रिस्क एनवायरमेंट में बना। ब्रिटिश पॉलिटिक, रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन, लेबर अनरेस्ट और जीरो गवर्नमेंट बैकिंग। और अब तक एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, उनका बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट मशीन नहीं। मार्जिन्स थिन थे, ग्रोथ स्लो थी, रिटर्न स्टेडी था, फ्लैशी नहीं। और शायद यही वजह है कि बजाज ग्रुप सर्वाइव कर पाया, लेकिन सर्वाइवल इजी नहीं था। और क्यों इजी नहीं था, क्या स्ट्रगल्स थे, ये मैं बताऊंगी आपको, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

Once again, welcome back. You are listening to Business Unplugged और मैं गीत हूँ. हम बात कर रहे हैं जमना लाल बजाज के बारे में. अब यहाँ पर स्ट्रगल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर कहानी से सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, बल्कि हमें एक रिस्क फैक्टर भी पता चलता है, फेलियर्स भी पता लगते हैं. जमना लाल बजाज का बिजनेस कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था. 1915 के बाद इन्होंने कॉटन ट्रेडिंग में काम शुरू किया, रॉ कॉटन खरीदना, प्रोसेसिंग कराना और रीसेल. सिंपल सुनने में, लेकिन उस टाइम ये बिजनेस सबसे ज्यादा अनस्टेबल था. प्राइस रोज बदलता था, वेदर पर डिपेंड करता था, ब्रिटिश एक्सपोर्ट पॉलिटिक्स अनप्रेडिक्टेबल थी, प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन. 1926 में इन्होंने बजाज स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स शुरू की, और लेबर उस टाइम में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था. स्ट्राइक्स कॉमन थी, प्रोडक्टिविटी अनसर्टेन थी, फैक्ट्रीज चलाना रोमांटिक नहीं था, डेली हेडेक था, पावर सप्लाई इरेगुलर, ट्रांसपोर्ट वीक, फाइनेंस लिमिटेड, बैंक इजिली लोन नहीं देते थे. इसका मतलब ये था ग्रोथ स्लो होगी, और स्लो ग्रोथ मीन्स प्रेशर. 1930s में ग्लोबल डिप्रेशन का असर भारत तक आया, डिमांड गिर गई, प्राइस कोलैप्स हुए, टेक्सटाइल सेक्टर हिट हुआ, लॉस हुआ, लेकिन फैक्ट्रीज बंद नहीं की गई, तो मजदूर बेरोजगार होते. बिजनेस डिसीजन वर्सेस सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, और ये कॉन्फ्लिक्ट था. शुगर मिल का एक्सपेरिमेंट भी इजी नहीं था. सीजनल बिजनेस, वेदर डिपेंडेंट, लॉजिस्टिक हैवी और कैश फ्लो अनइवन. आज हम टर्नओवर्स नंबर की बात करते हैं, 280 अरब 25 कंपनियां, लेकिन जमना लाल के समय में ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. उस समय सक्सेस का मतलब था फैक्ट्रीज चल रही है या नहीं, सैलरी जा रही है या नहीं. तो उस टाइम सिस्टम को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये सर्वाइवल इन्हें पर्सनली बहुत हैवी पड़ा. पॉलिटिक्स प्रेशर, जेल विजिट, फाइनेंशियल स्ट्रेस, और यहीं से शुरू होता है इनका सबसे टफ फेज, जहां बिजनेस, फ्रीडम स्ट्रगल और पर्सनल सेक्रीफाइस तीनों एक साथ टकरा जाते हैं, और यही है इनकी असली स्ट्रगल. वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और बात हो रही है जमना लाल बजाज के बारे में। न इन्होंने कोई सीक्रेट फॉर्मूला खोजा, ना ही किसी ओवरनाइट आइडिया पर करोड़ बना लिए। इन्होंने बस तीन चीजें कंसिस्टेंटली की। पहली बार बिजनेस को स्लो रखा, नो हरी, नो हाइप, नो शॉर्टकट्स। आज हम स्टार्टअप कल्चर में फास्ट ग्रोथ, फास्ट वैल्यूएशन की बात करते हैं, लेकिन बजाज की नींव पेशेंस पर रखी गई थी। दूसरी, उन्होंने बिजनेस को रियल एसेट्स पर खड़ा किया, फैक्ट्रीज, मशीन, पीपल, नो बजवर्ड्स, नो ट्रेंड्स। और यही वजह है कि बजाज सिर्फ ब्रांड नहीं, इंस्टीट्यूशन बना। इन्होंने ओनरशिप को ईगो नहीं बनाया। इनके लिए बिजनेस स्टेटस सिंबल नहीं था, वो खुद को सिस्टम का केयर टेकर मानते थे और सिस्टम जनरेशन के लिए बनाया जाता है, इंस्टाग्राम के लिए नहीं। आज जब हम बजाज ग्रुप की बात करते हैं तो बात करते हैं सिर्फ स्कूटर्स या फैंस की नहीं। आज बजाज ग्रुप में 25 प्लस कंपनीज है, ऑटो, फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल्स, एनर्जी। ये 100 साल के कंसिस्टेंट डिसीजन का रिजल्ट है। और ये भी याद रखना जरूरी है, ये जर्नी परफेक्ट नहीं थी। लॉस हुए, ग्राउंड स्लो रही, प्रेशर रहा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर थी और यही क्लैरिटी बिजनेस को टिकाऊ बनाती है। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं तो इस कहानी से एक सिंपल टेक अवे रखिए। आपको सबसे पहले यूनिकॉर्न नहीं बनना है, आपको सबसे पहले सरवाइव करना है। सिस्टम बनाइए, फाउंडेशन मजबूत रखिए, ग्रोथ को टाइम दीजिए। जमना लाल बजाज की कहानी ये नहीं कहती सब छोड़ दो और महान बन जाओ, ये कहती है काम करो, धीरे करो, लेकिन सही करो। और जब काम सही होता है तो रिजल्ट अपने आप बोलता है। आज बजाज ग्रुप उसका प्रूफ है। बिजनेस अनप्लग में आप मुझे सुन रहे थे, यानी कि गीत को। अब वक्त है इजाजत लेने का। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।
1: दो दो घोड़े महगनानी, चार जी वहगनानी, उत्ते नू मैं छे छे इंच चक्कियां, टाइम लगू मिटने नू, सानू थे

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आने वालों के लिए भी है, इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने बागा मां बोले आधी रात।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: What, Chunka?
1: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

क्या कभी नोटिस किया है, एक छोटी सी घंटी की आवाज और अचानक से हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। मंदिर की घंटी हो, स्कूल की घंटी हो, या फिर बचपन की साइकिल की टन टन, घंटी सिर्फ आवाज नहीं करती, वो यादें जगा देती हैं। वो कहा है कि कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस यादों की अलमारी में संभाल कर रख दी जाती है। और इसी के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजलि और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो सदियों से हमारी जिंदगी में बच रही है, लेकिन शायद हमने उसकी कहानी कभी नहीं सुनी। तो आज बात कर रहे हैं घंटी की कहानी की। तो आइए चलिए जानते हैं कितनी पुरानी है ये कहानी। आज से हजारों साल पहले, जब मोबाइल नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, तब आवाज ही सबसे बड़ा संदेश हुआ करती थी, और इसी आवाज का सबसे भरोसेमंद साथी था घंटी। पुराने भारत में मंदिरों, राजमहलों और गांवों में अलग अलग तरह की घंटियां इस्तेमाल की जाती थी, लोगों को बुलाने के लिए, समय बताने के लिए और कभी कभी खतरे की सूचना देने के लिए। लेकिन आज नोटिफिकेशन बजता है, कभी घंटी ही दुनिया को जोड़ती थी। तो घंटी के बारे में आज और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंशी आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। आज हम बात कर रहे हैं बरसों पुरानी घंटी के बारे में, तो चलिए फिर जानते हैं मंदिर की घंटी का रहस्य। सबसे पहले बात करें कि आखिर मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। ये सिर्फ परंपरा नहीं, इसके पीछे खूबसूरत सोच भी है। माना जाता है कि घंटी की गूंज मन को वर्तमान में ले जाती है। जो फिक्र कल की थी वो कुछ पल के लिए रुक जाती है और बस एक ध्वनि रह जाती है। वो कहा है कि कभी कभी सुकून किसी जगह में नहीं, बस एक आवाज में मिल जाता है। और यही रीजन है कि गांव की सुबह का घंटी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। एक वक्त था जब गांव की सुबह अलार्म से नहीं, घंटी से खुलती थी। गायों के गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज से खुलती थी। दूर खेत की तरफ जाते हुए पशु और उनके साथ बजती छोटी छोटी घंटियां, वो आवाज गांव की पहचान हुआ करती थी। और आज भी कई गांवों में ये सुरीली परंपरा जिंदा है। और सिर्फ इतना कनेक्शन नहीं है घंटी का हमारी जिंदगी में, स्कूल की घंटी जो आज भी बचपन याद दिला दे, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वापस आकर तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की यानी घंटी की। तो आइए चलिए जानते हैं कि स्कूल की घंटी और बचपन का क्या कनेक्शन है। अब बात पूछूं कि स्कूल की सबसे प्यारी आवाज कौन सी थी, टीचर की या फिर लंच ब्रेक वाली घंटी की? तो आवाज आती है लंच ब्रेक वाली घंटी, यानी एक घंटी बजती थी और पूरी क्लास में खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। लंच बॉक्स खुलते थे, मैदान भर जाता था और लगता था दुनिया की सबसे बड़ी आजादी मिल गई हो। वो कहा है कि बचपन में कुछ खुशियां बहुत सस्ती थी, एक घंटी और पूरा चेहरा मुस्कुरा देता था। और इतना ही नहीं, घंटी की आवाज याद दिलाती है साइकिल की टन टन। साइकिल और घंटी का रिश्ता भी कमाल का है। पुरानी गलियों में दूध वाला, अखबार वाला या फिर कोई दोस्त, सबकी पहचान उनकी साइकिल की घंटी से होती थी। दूर से टन टन सुनते ही पता चल जाता था कौन आ रहा है। और आज हॉर्न ज्यादा है पर उस टन टन जैसा अपनापन कहाँ। और ये सफर सिर्फ लंच ब्रेक तक नहीं, राजमहल से मंदिर तक जा पहुंचा, जहां पुराने समय में राजमहलों में भी बड़ी बड़ी घंटियां हुआ करती थी। सभा शुरू होने पर किसी इम्पोर्टेंट घोषणा के समय या किसी उत्सव की शुरुआत में घंटी हमेशा बजाई जाती थी। ये एक आवाज और पूरे महल को पता चल जाता था कि कुछ खास होने वाला है। और इतना ही नहीं, ये आवाज अपने साथ बहुत सारे किस्से कहानियां लाई है, जिसके बारे में बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं घंटी के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं आखिर घंटी हमें क्या सिखाती है। अब बात करें इस घंटी की, तो सबसे खूबसूरत बात क्या है, वो बजती है, गूंजती है और फिर खामोश हो जाती है, लेकिन इसकी आवाज फिर भी कुछ देर तक हवा में रहती है, बिल्कुल अच्छे लोगों की तरह जो चले जाते हैं पर उनकी बातें और यादें साथ रह जाती हैं। वो कहा है कि आवाज रुक जाती है मगर असर नहीं रुकता। साथ ही ये घंटी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे गहरी बात सबसे छोटी आवाज कह जाती है। मंदिर में हो, स्कूल में हो या बचपन की किसी गली में, घंटी सिर्फ बजती नहीं वक्त को जगा देती है। वो कहा है कि आज शब्द होते हैं ना कोई जबां होती है, फिर भी एक घंटी कभी कभी पूरा एहसास बयां कर देती है। और आज कहीं घंटी की आवाज सुनो तो सिर्फ सुनना मत, उसके साथ जुड़ी अपनी कोई याद भी जरूर ढूंढना। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक और साधारण सी चीज में छुपी एक असाधारण कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

के 6 बज चुके हैं और बाहर गर्मी अभी भी कम नहीं हुई और ट्रैफिक अपनी स्पीड में है। और इसी बिजी सी इवनिंग में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है एक अच्छा मूड। और मूड को इंस्टेंटली एनर्जेटिक बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैंने ले ली है। मैं हूं अजय पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर, जहां हर वीकेंड मैं बात करती हूं बॉलीवुड के उन गानों और फिल्म्स की जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करते बल्कि अपने पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी छोड़ जाते हैं। और आज का एपिसोड है फुल ऑन एंटरटेनिंग, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उस सुपरस्टार को जिसकी फिल्म्स में एक्शन भी होता है, कॉमेडी भी, स्टाइल भी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट भी। जी हाँ, आज का एपिसोड डेडिकेटेड है अक्षय कुमार स्पेशल।

0: तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए और शुरू करते हैं एक ऐसी फिल्म से जिसका नाम सुनते ही एटीट्यूड ऑटोमेटिकली आ जाता है, और वो मूवी है बॉस।
1: आयुष्मान, याद रखियो, बॉस का खून बोलता नहीं, खोलता है, और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता।

और अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये फिल्म जितनी स्टाइलिश थी उतनी ही इंटरेस्टिंग उसकी मेकिंग भी थी। सबसे पहले तो काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये फिल्म मलयालम मूवी पोकिरी राजा का ऑफिशियल रीमेक थी और फिल्म के गाने भी उस टाइम काफी पॉपुलर हुए थे, स्पेशली पारे ऑन लाइट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गाने को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लिरिक्स के एक वर्ड पर ऑब्जेक्शन हुआ और बाद में उसे म्यूट करना पड़ा था। और अगर आपको लगता है कि फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर ही लार्जर देन लाइफ थी तो बता देती हूँ कि बॉस ने जीनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपनी जगह बनाई थी, क्योंकि फिल्म का जायंट पोस्टर दुनिया के सबसे बड़े पोस्टर्स में इंक्लूड हुआ था। और वैसे क्लाइमेक्स शूट करना भी इजी नहीं था इस मूवी में, क्योंकि थाईलैंड की एक्सट्रीम हीट में एक्शन सीन्स को शूट किया गया था, मतलब कैमरा के पीछे वे फुल स्ट्रगल चल रहा था। और डायरेक्टर एंथनी डिसूजा ने खुद रिवील किया था कि उनकी प्रीवियस फिल्म फेल होने के बाद अक्षय कुमार ने उन्हें सपोर्ट किया और बॉस बनाने में हेल्प की। तो दोस्तों, बॉस मूवी की इतनी बातें हो ही गई हैं कि अब टाइम है थोड़ा दिल को भी एंटरटेन करने का, क्योंकि फिल्मों की बातें बिना गानों के बिल्कुल अधूरी लगती हैं। तो चलिए सुनते हैं बॉस मूवी का वो रोमांटिक ट्रैक, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। और अगर इस गाने के बाद

आपको भी प्यार वाली फीलिंग आने लगे तो प्लीज मुझे मत ब्लेम करिएगा। और हाँ, इस मूवी के बाद बात होगी ऐसी फिल्म की जहाँ एक्शन के साथ कॉमेडी का तड़का भी था और एक नंबर ने फिल्म को हेडलाइंस में ला दिया था। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए ये गाना आपके लिए।

0: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इस लू भरी गर्मी से लगता है।
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
3: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: साथ चलना ओ सनम।
1: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं पलक आप सभी के साथ। और ब्रेक से पहले जैसा कि मैंने आप सभी को हिंट दिया था कि एक ऐसी मूवी के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी जिसमें कॉमेडी का तड़का भी था और एक नंबर ने फिल्म को हेडलाइंस मिला दिया था, और उस मूवी का नाम है खिलाड़ी 786।
2: नाम बहत्तर, जिला मलकानपुर, गांव तासी, सर पे हाथ रबदा, हाथ में 786।
1: जी हाँ, अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये फिल्म फैंस के लिए स्पेशल इसलिए भी थी क्योंकि काफी सालों बाद अक्षय कुमार एक बार फिर खिलाड़ी टाइटल के साथ वापस आए थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अक्षय ने ये फिल्म मेनली इसलिए साइन की क्योंकि उनके बेटे को उन्हें एक्शन रोल्स में देखना बहुत पसंद था। और अगर आपने नोटिस किया हो तो 72 सिंह, 77 सिंह और 71 सिंह के नेम्स भी एक फनी नंबर पैटर्न क्रिएट करते हैं। फिल्म के एक्शन सीन्स को और रियलिस्टिक बनाने के लिए अक्षय ने स्पेशली कॉम्बैट कराटे भी सीखा था। और क्लाइमेक्स की शूटिंग हुई थी मुकेश मिल्स में, जो काफी टाइम से मिस्टीरियस जगह के नाम से फेमस रहा है। अब इस फिल्म की इतनी बातें हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं इस मूवी से हुक्का बार गाना, और गाने के बाद बताऊंगी आपको ऐसी फिल्म के बारे में जहां रोमांस के साथ पावर और मैनिपुलेशन का एंगल भी देखने को मिला। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, स्टे ट्यून्ड।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।
3: ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो, अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ध्यान रखियो मुन्ना।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आप सभी को हिंट दिया था कि एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगी जहाँ रोमांस के साथ पावर और मैनिपुलेशन का एंगल भी देखने को मिला, और वो मूवी है एतराज।

एतराज उस वक्त बॉलीवुड के लिए काफी डिफरेंट कंसेप्ट लेकर आई थी और ऑडियंस ने भी फिल्म को काफी सीरियसली लिया था। वैसे काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि फिल्म हॉलीवुड मूवी डिस्क्लोजर से इंस्पायर्ड मानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर को लेकर। और ऑनेस्टली उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ नेगेटिव रोल प्ले किया उसने सबको सरप्राइज कर दिया था। इस रोल के लिए प्रियंका को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और वो ऐसा अवार्ड जीतने वाली सिर्फ दूसरी फीमेल एक्ट्रेस बनी। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप सभी को बताऊंगी कि प्रियंका चोपड़ा अपने करेक्टर में इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि रियल लाइफ में भी वैसे ही रिएक्ट करने लगी थी और बाद में उनकी मदर ने ये चीज उन्हें रियलाइज करवाई। फिल्म का टाइटल भी काफी यूनिक था। मेकर्स के अकॉर्डिंग एतराज वर्ड ही स्टोरी का मेन इमोशन परफेक्टली एक्सप्लेन करता था। अब इस फिल्म की हमने इतनी बात कर ही ली है तो चलिए सुनते हैं इस मूवी का वो वाला गाना जिस पे काफी सारी मीम्स वायरल हुई थी। जी हाँ, गेला गेला। और इस गाने के बाद बताऊंगी आपको ऐसी मूवी के बारे में जो सिर्फ एक्शन एंटरटेनर नहीं थी बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कैरी करती थी। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए ये गाना

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।
3: हम आप तक पहुँचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आप सभी के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आप सभी को बताया था कि एक ऐसी मूवी के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो सिर्फ एक्शन एंटरटेनर नहीं थी बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कैरी करती थी। और इस मूवी का नाम है गब्बर इज बैक।

और इस मूवी की अगर हम बात करें तो ये फिल्म करप्शन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनकर सामने आई थी। और अक्षय कुमार ने खुद कहा था कि फिल्म के कई इंसिडेंट्स रियल लाइफ करप्शन केसेस से इंस्पायर्ड थे। करेक्टर के लुक के लिए अक्षय ने वेट गेन भी किया और बियर्ड ग्रो की। हालांकि उनकी छोटी डॉटर को वो बियर्ड बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बियर्ड चुभती थी। वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस फिल्म में, जो पुलिस ऑफिसर्स नजर आए इस मूवी में, उनमें से कई एक्टर्स एक्चुअली क्राइम पेट्रोल का पार्ट रह चुके थे। और फैंस ने एक और कनेक्शन इंस्टेंटली नोटिस किया था, वो ये था कि फिल्म में कई जगह लेजेंडरी शोले के गब्बर को ट्रिब्यूट दिया गया, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके डायलॉग्स तक। मतलब ये फिल्म एक तरह से ओल्ड स्कूल बॉलीवुड विलन को मॉडर्न स्टाइल में सैल्यूट भी करती है। अब इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं तेरी मेरी कहानी गाना। और इसी खूबसूरत गाने के साथ वक्त हो चला है मेरा आपसे इजाजत लेने का। आज की इस म्यूजिकल जर्नी में कहीं एक्शन था, कहीं कॉमेडी, कहीं एंटरटेनिंग स्टोरीज, तो कहीं फिल्मों के पीछे छुपे वो अनसुने किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.67 पर। मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीकेंड बॉलीवुड के कुछ और हिडन स्टोरीज और अनफॉरगेटेबल गानों के साथ। तब तक अपनी प्लेलिस्ट को लाउड रखिए और म्यूजिक को एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: एक बार जो मैंने सनस्क्रीन लगा ली उसके बाद तो मैं धूप की भी नहीं सुनती।
1: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो, जीब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट टाइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर सेफ्टी सबसे ऊपर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
4: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
1: कामयाब हो या हो डूते दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी। धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
2: अरे आगे भी बोलना।
1: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

को चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो बातें हम नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो हम किसी नज्म में लिख देते हैं, किसी कविता में लिख देते हैं। और शायद इसीलिए हर कविता सिर्फ लिखी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। तो आज दिल शायराना में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। मेरे साथ काफी सारे जो कवि हैं वो मौजूद हैं, कवित्री मौजूद हैं। मेरे साथ अनिका जी हैं, आलोक जी हैं, स्मिता सिंह चौहान जी हैं, स्वाति जी हैं और जय सिंह जीत जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद
4: जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा सभी से है, ये सवाल है कि लिखना जो था वो आपकी चॉइस था या जरूरत है? और
6: मजबूरी
4: क्यों? बट
6: बिकॉज हर एक शायर शायरी शौक से नहीं लिखता, बजाय इसके कि वो किसी से वो अपनी बातें कहे, वो लिखना ज्यादा जरूरी समझता है। तो वो मजबूरी धीरे धीरे उसका शौक बन जाती है, और जब मजबूरी शौक में बदलती है तभी बड़ा शायर बनता है।
4: क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात कह दी आपने। अनिका जी, आपसे भी इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी।
5: जी बिल्कुल सही कहा सर ने, लिखना एक वो होता है जब हम किसी से कुछ कह नहीं पाते। आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिससे आप अपनी जिंदगी की कहानी रख सके, उसको फिर हम गजल, नज्म, शायरी, किताब जैसे शब्दों में पिरो के ऑफर लोगों के आगे रखते हैं
4: जी।
5: लोग वो सुन लेते हैं पर दर्द नहीं सुन पाते हैं। तो इसलिए ये सही बात है, बिल्कुल आप मजबूर हैं तभी कुछ लिख रहे हैं। बट हाँ, शौक भी है क्योंकि जब तक आपको कहते हैं ना, शायर पैदा होते हैं बने ते नहीं है। दिल तो सभी के टूटते हैं पर सब लिखते भी नहीं है। तो हम लिख पा रहे हैं, ये कृपा है ऊपर वाले की हम पे।
4: स्वाति जी
7: बिल्कुल मैम और सर ने बहुत अच्छे से बोला और अच्छे बताए। जैसे आजकल की, मतलब मैं समझ पाती हूँ आजकल की जो दुनिया है ना, उसके सामने आप कुछ कहने जाओ तो वो नहीं सुनेंगे क्योंकि वो आप पे उल्टा रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर आप उसे शब्दों के साथ उनको रखते हो समाज में तो सब कोई सुन लेता है। कहीं ना कहीं वो आपकी एक सच्चाई ही होती है जो प्रॉपर आप किसी के सामने रखोगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन आप वही अब शब्दों में पिरो देते हो, समाज के सामने रखने लगते हो तो वो एक अच्छा निर्देश की तरह लोग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो होता है कि हम जो नहीं कह पाते समाज में उसे अपने शब्द के माध्यम से पहुंचाते हैं
4: जी,
7: और एक लिखना बाद में वही शौक बन जाता है
4: जी। स्मिता जी आपके पास आते हैं।
8: मेरे लिए तो लिखना जो है वो मौन को आवाज देना है, और वो मौन कोई भी हो सकता है, चाहे वो इस पृथ्वी में चिड़िया का मौन हो, चाहे वो जानवरों का है, जंगलों का है, अपना मौन हो, या फिर किसी समाज की ऐसी समस्या का मौन हो जिसमें कोई कुछ नहीं बोल पाता तो कवि बोल देता है। तो मेरे लिए वो एक आवाज है कि मौन को आपने आवाज दी है, और इस पर आपको इस पे ना गर्व होना चाहिए क्योंकि ये आवाज सबके पास नहीं होती है। किसी के मौन को आवाज देना सबके बस की बात नहीं है, और हम कभी ऐसा कर पाते हैं ये मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरी मजबूरी होती है या मैं मजबूरी से लिखती हूँ। मुझे ये लगता है कि जो चीज कोई इस पृथ्वी पे बोल नहीं पाएगा ना, और अगर मैंने वो नोटिस की है और मुझ में ये हुनर है तो मैं उसे आवाज जरूर दूंगी।
4: क्या बात है। सर आपके पास आते हैं, जय सिंह जी आप क्या कहेंगे इस बारे में?
9: जी गीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं बहुत बचपन से कविताएं सुनता था जी, कवि सम्मेलनों में जाता था।
4: हाँ।
9: कब सुनते सुनते मैं कवि बन गया मुझे सच में पता ही नहीं चला। और अब मेरा उद्देश्य है कि कुछ अच्छा पेश किया जाए। जैसे प्यार को हवस ना करके प्यार ही रखा जाए, मैं इस प्रयास में लगा हूँ।
4: क्या बात है। और ये जैसे आपने कहा कि मैं बस बन गया, तो कभी कभी इत्तेफाक भी अच्छे होते हैं।

0: कवि का ना एक अलग मूड होता है लिखने का, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, स्मिता जी आपसे ही पूछते हैं ये सवाल, ये जो इमोशंस हैं ये कहाँ से पैदा होते हैं?
1: इमोशंस तो पैदा कैसे होंगे, आप देखेंगे जी कि अगर मेरे तो इमोशन ऐसे भी पैदा हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने हाल ही में कविता चिड़िया पे लिखी थी,
0: हाँ।
1: मैं उसे दाना ही दे रही थी, पर मैं ये सोच रही थी कि कई लोग देते होंगे दाना, पर मेरे कवि मन में ये आया कि ये दाना जो है ना मेरा उस पर कोई एहसान नहीं है, ये मेरी झिझक है जो जंगल में काट के हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं उसकी शायद कहीं झिझक कोई शर्मिंदगी मैं मिटाना चाह रही हूँ और इसलिए मैं इसे देती हूँ। तो उसी पर वो एक इमोशन आया और मैं लिखने बैठी और बन गई कविता। ऐसे ही जैसे अभी मदर्स डे था तो 80s 90s की जो माएं हैं जो अपनी बात कभी कह ही नहीं पाती थी उन्होंने सबसे ज्यादा सहा है, ठीक है। तो अभी मेरी माँ बहरीन से आई थी, आपको पता है वहाँ क्या चल रहा है इस वक्त युद्ध का, तो वो बहरीन से आई तो मैं उन्हें देख रही थी क्योंकि वो एक ट्रॉमा में थी। तो जब मैंने उन्हें देखी तो मुझे लगा कि इनका जो अंदर का जो ट्रॉमा युद्ध को देख के पैदा हुआ ना वो सिर्फ वो नहीं था, वो उनकी वो कहानी भी है जो पिछली रह गई, क्योंकि वो उसी चीज पे कह रही थी कि हमने क्या देखा, हमने कुछ नहीं देखा और अब हम ये भी देख रहे हैं। तो वहां से इमोशन आ गया। इमोशन को आप बांध नहीं सकते, वो एक ऐसा समंदर है आपके अंदर, वो कहीं से भी आप पे उफन सकता है, कहीं से भी सुनामी ला सकता है। तो मेरे लिए तो इमोशन यही है
0: जी। क्या बात है सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे एक सवाल है। हम अगर बात करें हमारे हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो समाज को आईना दिखाने का काम किया करते थे, तो क्या लगता है आज के समय जो कविताएं लिखी जा रही हैं समाज को आईना दिखा रही हैं?
2: जी, आज की कविताएं आज के हिसाब से आईना दिखा रही हैं, और उस वक्त जो परिस्थितियां थी प्रेमचंद जी के समय में उन्होंने उन परिस्थितियों को यथार्थ बनाकर लिखा, उस वक्त भी बहुत पसंद की जा रही थी
0: जी।
2: और आजकल के कवि भी किसी टॉपिक को पकड़कर बहुत अच्छे से पेश कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात। आज जो जरूरतें हैं कवि बखूबी उसको निभा रहे हैं, लिख रहे हैं
0: जी। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आज जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फेम के लिए भी लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए?
2: सभी तो नहीं होंगे,
0: सभी नहीं है,
2: सभी नहीं होंगे
0: जी,
2: कुछ लोग वास्तव में अपने अंदर की तड़प को प्रस्तुत कर रहे हैं
0: जी,
2: ऐसे बहुत है।

0: जी आपके पास आती हूँ. स्टेज पोइट्री का एक अलग ही प्रेशर होता है और आप मंच की कवित्री हैं, तो आप बहुत ही बखूबी ये बात जानती हैं, जहाँ लोग सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि रिएक्ट भी करते हैं, अपने इमोशंस भी दिखाते हैं. तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इफेक्ट हुई हो, आप जो सोच कर गई हो एग्जैक्ट वो परफॉर्म ना कर पाई हो? ऐसा
1: हाँ, अक्सर हर बार यही होता है.
0: अच्छा, हर बार होता है,
1: सबके साथ होता होगा शायद. हम अपने अंदर से कुछ पैरामीटर्स लेके चलते हैं कि हम ये पढ़ेंगे. पब्लिक डिपेंड करता है कि आप यूथ के जेंजी हैं तो क्या हमें प्रस्तुत

0: करना है, हाँ. आप थोड़े बुजुर्ग हैं, शायराना मतलब प्रॉपर उस्ताद लोग हैं, हाँ. तो हम क्या करेंगे उर्दू मुशायरे में, तो वो डिपेंड पब्लिक पर ही करता है कि आप कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले भी लोग पढ़ रहे होते हैं
1: जी.
0: उतना भी जजमेंट हो जाता है कि वो लोग कैसे सुन रहे हैं,
1: हाँ.
0: अगर नहीं तो फिर चेंज करते हैं सेम टाइम पर लेकर तो हम एक्स्ट्रा ही जाते हैं
1: जी. जी आलोक यादव जशनूर जी, आपके पास आती हूँ और एक सवाल आपसे करना चाहूंगी. बात करेंगे जॉन एलिया साहब के बारे में, बिकॉज आजकल तो लोग, मुझे लगता है कि जो पोइट्री के दीवाने नहीं है वो भी जानते हैं, बिकॉज जॉन एलिया साहब को इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पर लोग सुन रहे हैं जिनको समझ नहीं आता, इनफैक्ट वो भी सुन रहे हैं, तो खैर अच्छी बात है ये. बट जॉन एलिया साहब जो बिना किसी फिल्टर के लिखा करते थे, आपको क्या लगता है आज के जमाने में भी जो कवि हैं वो बिना फिल्टर के लिख रहे हैं या कहीं ना कहीं फिल्टर आ गए हैं पोएट्री में भी?
2: जी ये मेरे हिसाब से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एंड मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे नोन है वो, जो कि विदाउट एनी फिल्टर से लिख रहे हैं. एंड करेंट सिचुएशन मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ तो मैं यही बोलूंगा कि उन लोगों का जो बोलने का तरीका है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस रहती है, लाइक एक नाम है अनंत गुप्ता करके हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो सीरियसली ऐसा लगता है कि उनकी वाणी में, बोलने में, उनके एक प्रवाह जो उनका चलता है बोलने का, उसमें कोई भी किसी भी तरह का फिल्टर नहीं है. कुछ लोग रखते हैं जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे अपनी मर्यादा में बोलना है, जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरे वर्ड्स किसी को हर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे लोग फिल्टर लगा सकते हैं, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है.
1: एग्जैक्टली मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप कैसे डिसाइड करते हैं, क्या आपको पब्लिक को सुनाना है, क्या उनसे छुपाना है?
2: मैं कभी कोई भी चीज कभी सोच के नहीं लिखता, मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पर काम करता हूँ. So, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो हमेशा उस चीज के लिए तैयार होके ही लिख रहा हूँ कि मैं किसी को भी ये चीज सुना सकता हूँ किसी भी मंच पर.

0: स्वाति जी आपके पास आते हैं। देखो मुझे नाम याद हो गया है
1: बहुत अच्छा
0: जी। एक वक्त था जब शायरी सिर्फ महसूस की जाती थी, अब रिकॉर्ड भी होती है, इनफैक्ट वायरल भी होती है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने पोएट्री को ज्यादा पावरफुल बनाया है या कहीं ना कहीं पोएट्री और ये लिटरेचर पीछे छूट गया है इसके वजह से?
1: बिल्कुल नहीं। पहले नंबर तो सोशल मीडिया के जरिए आज जहाँ नहीं जाना चाहिए पोएट्री वहाँ तक पहुँच रही है। हम गांव तक भी इसको ले जा रहे हैं। जो पोएट्री शब्द है उसको कोई जानता नहीं था गांव में, आज गांव में भी जो है वो सुनना चाह रहे हैं
0: जी।
1: और पोएट्री एक ऐसा माध्यम है जिससे मतलब समाज में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, उसको भी ले जाया जा रहा है। तो मैं तो पोएट्री को ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा है। जो पहले था वो भी अच्छा था उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से जो है वो भी अच्छा है
0: जी। स्मिता जी
1: जी,
0: बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, तो आपके हिसाब से एक अच्छी कविता की पहचान क्या होती है?
2: मेरे हिसाब से देखिए कविता अच्छी बुरी तो नहीं होती, कविता कविता होती है। और जहाँ तक कनेक्शन का सवाल है कि हम लोगों से कनेक्ट आप तब हो पाते हैं जब आप बहुत सरल साधारण तरीके से अपनी बात को कह पाते हैं, जिसमें दूसरा ये समझे कि अरे ये तो मेरा ही दर्द था जो उसने बोल दिया, है ना। लेकिन बहुत क्लिष्ट अगर आप शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा कि जैसे आजकल एक जो आपने भी सोशल मीडिया वाली बात की कि सोशल मीडिया में ना एक होड़ लगी हुई है कि हम कैसे किससे आगे जाना चाहते हैं उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी तकनीक को जब बीच में डाल रहे हैं। ये चीज मैं इसलिए यहाँ पे बोल सकती हूँ क्योंकि अभी कुछ नए नए पोएट भी मैंने देखे हैं जहाँ चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो गया।
0: मैं यही बोलने वाली थी।
2: तो वो जब आते हैं ना तो आप वो कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज तकनीक आपके भाव नहीं ला पाएंगे, तकनीकी चीजें सरलता नहीं ला पाएंगी, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जो लोग वाकई लिख रहे हैं, लिखते हैं, चाहे वो चार लाइनें लिखें, दो लाइनें लिखें, पर वो जब भी बोलेंगे ना तो वो कनेक्ट होगा और होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं होते
0: जी। सर आपके पास आना चाहूंगी। जय सिंह जी, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे इस बारे में कि आपको लिखने से पहले एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कविताओं की बात कहूँ, अगर जैसे मैं बात करती हूँ सिंगिंग की या किसी और अदर आर्ट की, तो वहाँ लोग अपना मेंटोर चुनते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कविता के क्षेत्र में ये चीज उतनी नहीं है, उतना मेंटोर नहीं है, वो सिखाने वाले नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप?
3: जब कोई फील्ड में आता है इसमें कविता के फील्ड में तो हो सकता है कि वो बगैर किसी गुरु के आ जाए।
0: हाँ।
3: लेकिन यदि आने के बाद वो गुरु को ढूंढ कर लिखता है तो बहुत अच्छा लिखता।
0: हाँ।
1: क्या बात है?
3: वो एक बहर में चल सकता है।
0: हाँ।
3: एक पूरी परंपरा में चल सकता।
0: हाँ।
3: है।
0: हाँ। हाँ। हाँ।
3: और मेरे हिसाब से हमें गुरु तो बनाना चाहिए ताकि हम अपने इमोशंस को भली भांति पेश कर सके।
0: जैसे आपने बात की बहर की, आजकल लोग मोस्टली मीटर में नहीं लिख रहे हैं, छंद मुक्त ही लिखते हैं, तो क्या लगता है? मीटर है उसका भी? अच्छा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक कवि से पूछा था, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने कहा जो मीटर में ना हो उसे आप ख्याल कह सकते हैं, आप उसे, हाँ, आप उसे गजल नहीं कह सकते।
4: गजल नहीं।
0: तो ये जो लिख रहे हैं लोग, इस तरीके का जो कंटेंट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
3: मैं ये मानता हूँ, मान ले इमोशंस अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा आए हुए हैं किसी विषय के ऊपर, उस वक्त वो मीटर की तरफ जाएगा तो इमोशंस या तो खत्म हो जाएंगे या आधे हो जाएंगे,
0: बंद जाएंगे।
3: लेकिन अगर हमें एक्सपीरियंस है मीटर्स का तो हम मतलब अपनी बात को ढंग से कह भी सकते हैं, ऐसा भी मुनासिब है, मुश्किल भी नहीं है
0: जी जी।
3: लेकिन उसके लिए एक एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है
0: जी जी। तो किन किन कवियों को पढ़ सकते हैं जो हमारी यंग जनरेशन है? बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी ऐसे ना लिखा जाए, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ के आए। तो कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे?
3: डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं,
0: हाँ जी,
3: सुनील जोगी हैं, राजेंद्र चौहान हैं, और बहुत ऐसे और भी कवि लिखते हैं, और जैसे कुमार विश्वास जी हैं
0: जी,
4: तो उनकी तो बात ही अलग है,
3: और सबीना अदीब जी हैं, बहुत गहरा लिखती हैं, जो जितना ज्यादा सुनेगा गीत जी वो उतना अच्छा लिखेगा, मैं ये मानता हूँ।
4: सुनना पढ़ना जरूरी।
1: हाँ, सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है।
0: अनिका जी, आपसे भी यही सवाल है, एग्जैक्ट सेम सवाल ही है, अगर आज की यंग जनरेशन पोएट्री लिखना स्टार्ट कर रही है तो उन्हें सबसे पहले क्या चीजें सीखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
4: कि ख्याल तो कुछ भी हो सकता है किसी का, और जैसे कि बहर पैरामीटर की बात चल रही थी, तो पानी जब बिना मर्यादा के है तो कैसा है? मर्यादा मर्यादित है बहर पैरामीटर, आप जब मर्यादा में बहते हैं, नल के थ्रू जा रहा है तो सुविधाजनक है, बिना उसके उबाड़ भी ला सकते हैं शब्द, तो पैरामीटर तो पहले इसलिए भी जरूरी है। और पढ़ने के लिए कुछ भी भाव आपकी जिंदगी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम मैं दर्द लिखती हूँ, कुछ मोहब्बत लिखते हैं, कुछ कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ें, अच्छे अच्छे जो भी आपसे पढ़, आप साथ जैसे अभी हम जुड़े हैं, आपसे सीखने को मिलेगा, बड़े लोगों से सीखने को मिलता है, सबकी संगत में रहें। हर किसी राइटर को पढ़ना और सुनना ज्यादा जरूरी है आपको एक अच्छी चीज करने के लिए।
0: जी जी,
4: बहुत जरूरी है। आप जब तक, जैसे कि जॉन इलिया की बात की आपने, जॉन इलिया, प्रवीण शाकिर जी, शबीना अदीब जी, अंजुम रहबर जी, बड़े बड़े नाम, कुमार विश्वास, जैसे मैं तो फैन हूँ, बिग फैन ऑफ कुमार विश्वास, उनकी वजह से ही आज मैं लिख रही हूँ शायद। तो ऐसे नामों को आपको जरूरी है, जैसे कोई पूछता है कि क्यों लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस वो शायरी सुन ली थी उनके, उसके बाद लगा यही करना है। तो वो नाम जरूरी है, और पैरामीटर बहुत जरूरी है।

0: जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं आज दिल शायराना को, वो सोच रहे होंगे कि मेन मुद्दे पर आ जाए, इतने सारे जब कवि और कवित्री जुड़े हैं तो उनकी रचनाएं ना हो तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अब हम सीधा रचनाओं पे बढ़ते हैं, तो सबसे ये सेम सवाल है आपसे शुरुआत करते हैं अनिका
1: जी, बताएं मैम
0: क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक या मंच की तालियां या अकेले कमरे में बैठी हुई एक सच्ची लाइन?
1: सच्ची लाइन को ही मंच पे ले जा रही हूँ मैं पहले अकेले में लिखती हूँ और फिर मंच तक जाना मुझे उसके लिए अच्छा लगता है।
0: एक कवि जो होते हैं अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा के
1: बात कही मैम आपने, आपको अकेले कमरे में लिखना पसंद है या फिर सबके सामने ले जाना? तो अकेले कमरे में लिख के सामने ले जाना।
0: तो क्या ऐसा लिखा था जिसमे बहुत तालियां मिली हो और बहुत
1: मैम तालियां मिली? वो तो अभी थोड़े दिन के लिए गुप्त रख रही हूँ, वो वायरल भी गया आपको बताया भी मैंने।
0: तो अभी यहाँ भी गुप्त रखेंगे हम, कोई बात नहीं, किसी और रचना पर आते हैं।
1: हाँ, तो फिर मैंने एक मतलब धोखे पर ही लिखा था मैम, मतला दो शेर।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: अर्ज है। मैं इश्क कर रही थी ईमान की तरह, वो इश्क कर रहा था एहसान की तरह। जो कलमे के मानी तक जानता नहीं, जो कलमे के मानी तक जानता नहीं, मैं उसको पढ़ रही थी कुरान की तरह।
0: क्या बात है, बहुत
1: एक नज्म की तरह थी मेरी ये जिंदगी, और जिंदगी में गम थे उनवान की तरह।
2: क्या मिसरा,
1: और छुआ था ख्वाब में उसने एक दफा मुझे, छुआ था ख्वाब में उसने एक दफा मुझे, अब तक महक रही हूँ मैं लोबान की तरह।
0: हाँ, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आलोक जी आपके पास आते हैं, आपसे भी ये सेम सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
2: मुझे, मैं जिस विधा में लिखता हूँ वो अक्सर यही इश्क मोहब्बत प्यार या कह सकते हैं मन वसीयत। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ये भी बोला था कि मजबूरी है, और फिर मैम ने उसको इतनी अच्छी तरह क्लैरिफाई किया ये बात मैम की, जो मैं बहुत अच्छी लगी, वहाँ से मैं यहाँ से मैं उस चीज को लेके जाऊंगा अपने साथ और अपना नजरिया बदलने की कोशिश करूंगा मैं।
0: बहुत बढ़िया। तो क्या आपको एग्जैक्टली क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक की तालियां या सच्ची लाइन अकेले कमरे में बैठी?
2: मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे सामने बैठे हुए जो लोग हैं वो एक अच्छे श्रोता हूँ, वो उन्हें सुनना आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वक्ता जब माइक पर कुछ भी बोल रहा होता है तो उसके सामने जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं उसकी परफॉर्मेंस में।
0: एग्जैक्टली, हम बहुत अच्छे श्रोता हैं और हम वेट कर रहे हैं आपकी रचना का कि जल्दी से कोई रचना आए हमारे सामने और हमारे लिसनर्स के
2: साथ। आपने जो तालियों की बात करी थी, ये एक ऐसा ख्याल है, मुझे बहर की जानकारी नहीं है, मैं हमेशा बहर से बाहर ही रहता हूं।
0: अच्छा जी।
2: और ये एक ऐसा ख्याल है जिसपे मैंने जो सोचा था वो मैं एक बार कर चुका हूँ कि टोटल ऑडियंस वॉज साइलेंट। मैं अर्ज करता हूँ, मैं ऐसे सबको खुश रख रहा हूँ जैसे मैं खुद खुश रहना भूल रहा हूँ। मुझे इल्म नहीं है किसी की बेरुखी का, मैं तो खुद की बेरुखी से मर रहा हूँ।
3: क्या बात है, क्या ख्याल है, बहुत
0: बढ़िया।
2: तेरी गोद में सर रख कर फिर कभी रोऊंगा माँ, फिलहाल मैं तुझसे सच बोलने को तड़प रहा हूँ।
3: क्या बात है।
2: मंसूबे गलत नहीं थे मेरे, मैं किसी को समझा नहीं पाया, इसीलिए आज खुद को खुद से अलग कर रहा हूँ।
3: क्या बात
0: है।
2: खुद को उलझा लिया है मैंने पहेलियों में, अब सुलझने के लिए दिल तार तार कर रहा हूँ। मुझसे प्यार करने वालों मुझे माफ कर देना, मैं आखिरी दफा आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ।
3: क्या बात है।
2: आखिरी शेर है कि नहीं रहा दम कि अब एक कदम और भी चल सकूं, ऐ जिंदगी मैं अपनी लाश को इधर से उधर कर रहा हूँ।
0: क्या बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है इसको सुन के कि आपने ऐसा कुछ अपने से इंस्पायर्ड होके ये चीज लिखी है, ऐसा कुछ?
2: यस एग्जैक्टली।
0: ओके स्वाति जी आपके पास आते हैं, क्या ज्यादा पसंद है आपको, ओपन माइक की तालियां या अकेले कमरे में बैठी कुछ बढ़िया सी लाइन?
4: हम सब कवियों का ये है कि हम एकांत जब होते हैं ना तो हमारे पास भावनाओं का एक श्रृंखला बनते जाता है जिसे हम शब्द देते हैं। और जब हम वो शब्द देते हैं ना तो हमें लगता है कि कोई सुने और सुनने के बाद उसको सार्थक कर दे, बस हमारी इतनी ही तृप्ति रहती
0: है। जैसे सर ने कहा था, बात चाहिए बस हमें, कुछ नहीं चाहिए।
4: हमें उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस हम जो अपने भावनाएं रात रात भर कभी कभी महीनों महीनों हम जाके एक रचना पूरी कर पाते हैं, और जब हम चाहते हैं ना कि इसे कोई सुने ना, तो बस उसको सुन के वो सार्थक कर दे। हाँ, बस इतनी सी इच्छा हमारे पास रहती है, तो बस
0: हम वाह करने के लिए तैयार हैं।
4: बिल्कुल
0: दीजिए अपनी रचना।
4: तो मैं ज्यादा संघर्ष लिखती हूँ
0: जी, जी।
4: और मेरा भी अभी मतलब मैं बैठ तो सीख रही हूँ, लेकिन मुक्तक मेरा एक है, सुनिएगा। क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, प्रॉपर मैं बिहार से हूँ और यहाँ मैं छात्र हूँ, और कोई भी हो, छात्र हो, कोई भी अपने घर से दूर रह रहा है ना, तो एक वो संघर्ष कर रहा है।
0: बिल्कुल।
4: और उसे पता होता है कि एक दिन वो कुछ भी कर ले, उसे घर की तरफ लौटना ही है। तो उसी पे रचनाएं थी।

0: है मगर लौट आना वहाँ है, पता है मगर लौट आना वहाँ है।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर के लिए जो बात कही ना आपने आखिर में कि हम सब भले ही भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं लेकिन आखिरकार हमें अपने घर ही लौटना है, और मैंने
0: शाश्वत सच है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने किसी एक बहुत ही खूबसूरत शायर की कुछ ऐसी लाइन पढ़ी थी, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, अगर अपने शहर जो होते तो घर चले
0: जाते।

0: सुमिता जी आपके पास आते हैं
1: जी,
0: आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
1: देखिए, हर कवि या शायर जो भी है, सबको एकांत ही पसंद होता है। जो तालियों वाला माहौल है, वाहवाही वाला माहौल है, वो तो 2020 के बाद शुरू हुआ। लोग 2020 से पहले भी थे।
0: हाँ जी,
1: ये अच्छी बात है कि डिजिटली ये चीज आई और लोगों को, कई लोगों को पहचान मिली।
0: हाँ,
1: कई लोगों को उनका जो एकांत का लिखा हुआ है वो लोगों के सामने आया। लेकिन अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मुझे वाहवाही और तालियों से ज्यादा ये चाहिए होता है कि वाह स्मिता तूने क्या लिखा। वो मुझे बहुत, मतलब कुछ ऐसा लिख दो कि आपको लगे कि हाँ आपने कुछ ना अपने मन को संतुष्ट किया, तो वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ओपन मिक में भी हम जाते हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि कुछ चलन ऐसा हो गया है, क्योंकि कोई चीज जब अधिकता में हो जाती है ना तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब ऐसे अधिकता हो गई है कि वहाँ श्रोता नहीं होते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वहाँ सिर्फ कवि होते हैं। सबको जल्दी है कि हम अपना बोलें, एक दिन के चार चार ओपन मिक हो रहे हैं, तो उसमें ना कोई किसी को सुनता है, ना कोई किसी को परखता है, ना कोई किसी को कुछ बताता है कि भाई तुम अपने को ऐसे इम्प्रूव कर लो या ऐसे कर लो। तो मैं इसीलिए ओपन मिक बहुत कम जाती हूँ। मैं एक दिन का, जिस दिन जाऊंगी महीने में दो जाती हूँ, और आराम से सुन के आती हूँ 15-20 लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनना बहुत जरूरी
0: है। एग्जैक्टली,
1: है ना, कहना तो सबको आता है। कहते हैं कि लिखना कितना अच्छा है ये जरूरी नहीं है, आपको सुना किसने वो ज्यादा जरूरी है, है ना, आप लिख सकते हैं। तो अभी मैंने ना माँ पे, मैं आपको बता रही थी कुछ देर पहले कि मैंने अपनी माँ पे लिखी थी।
0: हाँ जी,
1: तो ये मन के भाव है जो उन्हें देख के आए थे।
0: हाँ जी,
1: और ये 80s और 90s की माओं को समर्पित है। कि माँ ने हर दर्द को

0: बचार रखा। अब जब ऐसी माओं से ना हम बेटियां जो आज बाहर निकल पाई हैं उनके सहने की वजह से, तो हम क्या सीखते, बस दो लाइन है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि मैंने

0: का कुछ सच भी बचा रहा है, अपने हिस्से का दरिया भी बचा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत रचना है आपकी। सीरियसली ऐसे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है माँ दुनिया की एक ऐसी चीज है जो सुकून देती है ना
0: जी।
1: तो मैं बहुत अच्छा नहीं लिखती मैं, लेकिन हाँ मैं पढ़ती बहुत अच्छा हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कवियों को, बहुत अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ाया, मजाज, फराज, फैज साहब, जॉनी लिया साहब, गालिब, तो बहुत कुछ मैंने सीखा है उनकी रचनाओं से। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिख लेती हूँ। वैसे ही माँ के लिए लिखा था कि बहुत कुछ मिलता है जिंदगी में, पर है माँ तेरी आंचल जैसी खिली जन्नत नहीं मिलती।
0: बहुत खूबसूरत।
1: सर आपके पास आते हैं, आपसे भी ये सवाल है, आपको क्या ज्यादा पसंद है?
2: मुझे ये पसंद है, हमने कोई चीज मान ली एकांत में लिखी हो, जो देश दुनिया से उठाई हो, उस पे अगर हमें वाह मिले तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मंच हो चाहे ओपन माइक हो।
0: बिल्कुल,
2: ऐसी ही एक रचना मैं आपके सामने, अगर इजाजत हो।
1: बिल्कुल सर।
2: एक पहले मुक्त है, फिर एक गजल आपके बीच। मुक्त क्यों कहे ताजगी है हताशा नहीं है, जिंदगी है निराशा नहीं है, ये दिलो जान है शायरों की, शायरी है तमाशा नहीं।
0: क्या बात।
2: और एक गजल है, वैसे तो वो तरन्नुम में है, बहर में है, लेकिन मैं वैसे बहर में पढ़ता हूँ।
1: जी जी।
2: हमें नफरतों को मिटाना पड़ेगा, अमन चैन से दिल लगाना पड़ेगा, वो जिसने हमारे सभी ख्वाब लूटे उसे माफ करके दिखाना पड़ेगा।
0: क्या
1: क्या बात है।
2: कि नफरत हमेशा अंधेरा करेगी, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा।
1: क्या बात है।
2: बड़ी मजहबों की दीवारें खड़ी हैं, उन्हें उल्फतों से गिराना पड़ेगा। और बेटियों के लिए शेर देख लें, सबक हौसलों का सिखा कर पढ़ा कर हमें बेटियों को बचाना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
2: और गजल का मकता यूं के, अगर चाहता है रहे प्यार जिंदा, तुझे जीत कर हार जाना पड़ेगा।
1: क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।

0: तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके, लेकिन समय सीमा का ख्याल रखते हुए अब हमें शो की समाप्ति पर आना पड़ेगा। तो जाते जाते सबसे फिर एक और सवाल, सबसे यही सवाल कि कविता क्या है आपके लिए? अनिका जी आपसे पूछना चाहूंगी,
1: कविता क्या है? कविता माँ के लिए बनाया हुआ एक अच्छा खाना है जिसे बच्चों के आगे परोसा जाए तो वो तारीफ करें।
0: हाँ।
1: भक्त के लिए भक्ति है और मेरे जैसों के लिए तो आज की कह सकते हैं आप कि हम जो लिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, बस कि भगवान है हमारा, अगर उसे आप जैसे लोग सुन रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, तो सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास लिखने के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि रिश्ते नाते सब एक अलग चीज है। आपके पास जब आपकी कला है ना तो वो अलग चीज है
0: जी।
1: अगर वो सब होते तो शायद हम ये लिखते ही नहीं। हम लोगों के साथ अच्छे होते
0: जी।
1: जब कोई नहीं बचा, सब खोने के बाद ये मिली, तो ये तो सब कुछ ही है अभी फिलहाल, बाकी ज्यादा बेहतर जानते होंगे।
0: तो जाते जाते कोई और आपकी चंद लाइन जो आप यहाँ पर रखना चाहती
1: हैं? हाँ मैम, जरूर। तो चार लाइनों का एक किताब रख देती हूँ मैम, उस इंसान के लिए जिसकी वजह से आज मैं लिख रही हूँ।
0: अरे हाँ जी जी।
1: करके वादा मुकर गए तुम भी, बे इरादा मुकर गए तुम भी, जितनी उम्मीद थी मुझे तुमसे, जितनी उम्मीद थी मुझे तुमसे, उससे ज्यादा मुकर गए तुम भी।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया।
0: क्या बात है, वो सुन रहे होंगे वैसे ही। हो सकता है।
2: बिल्कुल
1: सुने
0: जी। आलोक जी आपके पास आते हैं, क्या है कविता आपके लिए?
3: अभी जो मैंने जवाब दिया था इस बात का, वो बदल जाएगा।
0: हाँ
3: बेबी, अगली बार मुझसे सवाल
0: वैसे अभी भी बदल सकता है
3: अभी,
0: आप चाहें
3: इसलिए
0: तो।
3: नहीं कि जो मैंने जवाब दिया था कि शायरी मेरी मजबूरी है, वो मैं माशूका बनाऊंगा और उसका कारण मैं ढूंढूंगा, क्योंकि बिना कारण के किसी बात का जवाब देना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि अपनी ही बात में फंसना मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: तो चलिए अगली बार आपसे फिर मिलेंगे और ये जो जवाब है उसका हमें इंतजार रहेगा। तो जाते जाते आपकी कुछ और कोई रचना, कुछ लाइन्स?
3: जी मैं चार लाइनें पेश
0: करता हूं। बिल्कुल।
3: मेरी आंखों की गुलाबी नसें चीख रही थी, मेरी खाल से कोई मेरे रोंगटे खींच रहा था, मेरे आंसुओं को बहने की इजाजत नहीं थी, मुझे क्या बोलना था और मैं क्या बोल रहा था।
2: क्या बात है,
3: बहुत शुक्रिया।
0: क्या बात है फाती जी।
2: बिल्कुल।
0: क्या है कविता आपके लिए?
2: कविता मेरे लिए साधना है। हम कोई चीज को मतलब साधना में बदल देते हैं ना, तो हम जितना साधना करेंगे उसके करीब और जाएंगे।
0: मैं कहने वाली थी हंसी आपके लिए, क्योंकि जब से आप आई हैं और आपको कविता की जो कविता के नाम से जो स्माइल आ रही है आपके चेहरे पर।
2: मैं सोच रही थी कि क्या बोलूं
0: जी।
2: तो मेरे लिए साधना ही है
0: जी, जी।
2: मैं जब भी बैठती हूँ कुछ लिखने तो वो एक साधना ही है, माँ भगवती की कृपा होती है तभी हम कुछ रच पाते हैं।
0: क्या बात है।
2: तो
0: कुछ कहना चाहेंगी और जाते हुए आप?
2: हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमें गिराते हैं, हम उठते हैं, कोई गिराने की कोशिश करता है, तो चार पंक्तियाँ उसी पे लिखी थी
0: जी जी।
2: गिराओ मुझे तुम किस हद तक गिरा सकते हो, गिराओ मुझे तुम किस हद तक गिरा सकते हो, खुद को सही मुझे कितना गलत बता सकते हो। आसमान खुला है जमी की गोद खाली है, आसमान खुला है जमी की गोद खाली है, एक इंसान की खातिर कितना पत्थर बिछा सकते हो, एक इंसान की खातिर कितना पत्थर बिछा सकते हो।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।

0: श्वेता जी आपके पास आते हैं
1: जी,
0: आप क्या कहेंगी, क्या है आपके लिए कविता?
1: मेरे लिए तो कविता जो है ना इस पूरी धरा का सबसे खूबसूरत राग है। वो राग जिसे जो अनसुने होते हैं ना वो कवि हृदय सुन लेते हैं। कभी शायद कहा गया है कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। वो अनसुने राग जो हम दुनिया को सुनाते हैं ना, वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो अभी जैसे स्वाति ने बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिराते हैं और फिर हम उठते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए कुछ ऐसा लिखा था, चार लाइनें सुना देती हूं, बस लंबी है कविता बट चार लाइनें, कि एक चींटी का रास्ता भी रोकते हैं व्यर्थ बैठे लोग, और आप सोचते हैं कि ये लोग तुम्हें बढ़ाएंगे, जो खुद चल नहीं पाए कभी वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, राहों पर कांटे बोने वाली फितरत हो जिनकी वो तुम्हारे सपनों के लिए क्या कालीन बिछाएंगे, और जो भावनाओं की ऊंचाई छू नहीं पाए कभी वो दूसरों के आसमान नापते हैं, जो उड़ने का हौसला भी जुटा नहीं पाए कभी वो तुम्हारे पंखों की थकान मापते हैं, बढ़ने की बात ना किया करो इनसे, बढ़ने की बात ना किया करो इनसे, ये तुम्हें गिराने का साजो सामान मापते हैं, ये तुम्हें गिराने का साजो सामान मापते हैं, इनकी दुनिया छोटी है इनसे उलझना ठीक नहीं, इनकी दुनिया छोटी है इनसे उलझना ठीक नहीं, ये वो धुंधले आईने हैं तुम्हारी शख्सियत का उन्मान मापते हैं, तुम्हारी शख्सियत का उन्मान मापते हैं।
0: बहुत प्यारा। चार लोग तो नहीं है
1: क्योंकि जिसने मेहनत की होती है ना, और मेरा एक मानना है कि जो चीजों को लेके बहुत, जिनको हुनर होता है किसी भी चीज का, संगीत का, कविता रचने का, किसी भी चीज का, वो कभी किसी दूसरे का ना उन्मान नहीं माप सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी मेहनत करके अगर मैं यहाँ तक पहुंचू तो उसने कितनी मेहनत की होगी। तो निंदा रस वहाँ नहीं होता कहीं, जहाँ हुनर होता है वो वहाँ होता है जहाँ व्यर्थ बैठे रहते हैं लोग।
0: एग्जैक्टली। सर आपके पास आते हैं जयसिंह जी, तो आपके लिए कविता क्या है?
2: कविता कवि का एक ऐसा संदेश है जिसे वो एक बार लिखकर अनंत श्रोताओं और पाठकों तक पहुंचा सकता है।
0: हाँ जी,
2: बस मेरी नजर में यही कविता है।
0: तो जाते जाते आपकी कुछ और लाइंस,
2: एक मुक्तक मैं सबके बीच रखता
0: हूं,
2: एक आदर्श मुक्तक है। न होगर रंग बूतो गुल सिता में कुछ नहीं होता, मोहब्बत के बिना ऊंचे मकाम में कुछ नहीं होता, बहुत रंगीन है दुनिया बड़ी दिलकश नजारे हैं, मगर माँ बाप से बढ़कर जहाँ में कुछ नहीं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आप सभी से बात करके मुझे बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों को रेडियो महारानी के स्टूडियो में आकर उतना ही मजा आया होगा, ये तो आप खुद बताएंगे जब आप इस शो को सुनेंगे। तो सबसे मैंने पूछ लिया है कविता क्या है, तो मैंने जैसे कहा मैं थोड़ा बहुत लिख पाती हूँ। जब शुरुआत में कभी लिखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या लिखूं, क्योंकि बहुत नई थी लिखने में, कविताओं के लिए ही कागजों के लिए लिखा था और पूछा था कि क्या लिखूं मैं, मुझे तुम ही बता दो ना। तो मैंने लिखा था कि कह दूं तुझसे सदियों की कहानी या चंद लम्हों का इतिहास लिखूं, ऐ कोरे कागज तू ही बता आज क्या खास लिखूं।
1: अरे
0: तो बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो वेरी मच आप मेरे साथ जुड़े।
1: थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा
0: जी,
1: बहुत ही प्यारा लगा हमें
0: जी
1: यहाँ सो करके
0: जी। तो वक्त बदलता रहेगा लेकिन जो कविताएं हैं, जो नज़में हैं, जो हमारा लिटरेचर है वो ऐसे ही जिंदा रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रात भी बाकी है और हमारी बात भी बाकी है, और जो हो रहा है वो भी बहुत खूबसूरत हो रहा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, और मैं हूँ आपकी अपनी
1: रेट्रो वाली सपना, रेट्रो वाली सपना,
0: और ले आई हूँ मैं आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी। क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। आज मैं जिस स्टार की बात करने जा रही हूँ, इनकी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग रही भाई। मुंबई आने का सपना देखा और जब इस सपने को पूरा करने की बारी आई तो इन्हें रियलिटी नजर आ गई मुंबई की। वहां से भागे, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये जो बम बम बम बम बम्बई है ना, ये हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करती, और जिसे एक्सेप्ट कर दे उसे जाने नहीं देती। अपने गए मुसाफिर को एक बार फिर से इस मुंबई ने बुला लिया अपने पास, और उसके बाद तो इनकी किस्मत बदलने में ज्यादा देर नहीं लगाई। वैसे एक और चीज ऐसी थी जिसने इनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया था। ये वो चीज है जिसका इंतजार हम कई दिनों से कर रहे हैं और भगवान से हाथ फैला कर यही कह रहे हैं कि प्लीज ये हमें दे दो। आप गेस नहीं कर पा रहे ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये पैसा नहीं है बल्कि कुछ ऐसा है जो कि हमारे हाथ में होकर भी हमारे हाथ में नहीं होता। बताऊं क्या? बारिश। जी हाँ, बारिश का इनके करियर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और हाँ, जो अगला गाना है वो भी तो हमें यही बता रहा है कि बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी।

0: save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: चलिए उस दौर में जहाँ शर्मिला की अदाएं,
2: चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा.
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया.
1: हेलन के ठुमके और मधुबाला की सुंदरता के चर्चे थे हर जुबान पर. तो सुनिए ऐसे ही किस्से सुनहरी दौर की सपना के साथ. रात बाकी, बात बाकी में.

0: बिल्कुल, समय के साथ और अगर इंटेंशन अच्छी हो और साथ निभाना चाहते हो तो कोई भी रिश्ता गहरा हो ही जाता है। जैसे पिछले 5 सालों से आपका और हमारा रिश्ता भी तो गहरा हुआ है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना हूँ मैं आपके साथ और आज रात बाकी बात बाकी में हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो खुद नहीं गया मुंबई, बल्कि मुंबई ने उसे खींच कर बुला लिया। ये कोई और नहीं बल्कि एक्टर राम सेठी जी हैं, जिन्हें मुंबई ने एक नाम भी दिया था और वो नाम था प्यारे लाल का। इनका जन्म 15 नवंबर 1938 को दिल्ली में हुआ और इस पंजाबी मुंडे की स्कूलिंग भी दिल्ली में ही कंप्लीट हुई। शुरू से ही एक्टिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि स्कूल में होने वाले छोटे मोटे ड्रामास में भी ये पार्टिसिपेट किया करते थे और साथ ही अपने स्कूल में ही इन्हें एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी भी मिली।
1: ये भाजी एक आ रहा है और ऐसे ऐसे 4 आ रहे और हैं। आज ये सब आ रहे हैं और सब लोग आपके अंदर काम करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे बस आपका हुक्म चलेगा। अरे ये हमारे नए मैनेजर आप हैं, सलाम करो।
0: अपने इस सफर को इन्होंने बिंदास जिया, खुलकर हर चीज को एंजॉय भी किया। अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए अदर देन स्कूल भी इन्होंने बहुत से ड्रामास और थिएटर्स में काम करना स्टार्ट कर दिया था। जब स्कूलिंग कंप्लीट हुई और बात आई कि अपनी लाइफ को सेटल करना है तो आप गेस कर सकते हैं कि इन्होंने क्या सोचा होगा। ऑफ कोर्स इन्होंने एक्टिंग को ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ बनाना चूज किया होगा, पर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि अपनी फैमिली को ये बात कैसे बताएं, क्योंकि उस वक्त एक्टिंग को इतना ज्यादा प्रेज नहीं किया जाता था। इसलिए जब इन्होंने अपने पिताजी को ये बताया कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और उसी में अपने करियर को देखता हूँ, तो इनके पिताजी गुस्सा हो गए। पर वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स तो मान ही जाते हैं, सिर्फ मनाने की ट्रिक आनी चाहिए। तो इन्होंने भी अपने पापा को बड़े प्यार से समझाया और उन्होंने इनकी बात पर एग्री भी किया। पर मुंबई जाने की परमिशन के साथ साथ उन्होंने इन्हें कुछ पैसे दिए और साथ ही एक कंडीशन भी रखी कि 6 महीने का ट्रायल पीरियड है ये आपके लिए। अगर तो आप वहां पर कुछ कर पाए, अपने आप को सेटल कर पाए या फिर कुछ काम ढूंढ पाए तो आप मुंबई में रह सकते हैं। अदरवाइज After 6 months, you will make a comeback और यहाँ आकर अपने आप को सेट करेंगे। इसी कंडीशन के साथ ये पहुंच गए मुंबई। एंड ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रगल थी ये बहुत इजी नहीं होने वाली थी राम सेठी जी के लिए। यहाँ इन्होंने कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाए, उनके ऑफिस के बाहर, घर के बाहर कई घंटों तक खड़े रहते थे, पर किसी ने भी इनकी पुकार नहीं सुनी। और फाइनली जब इन्होंने मन बना लिया कि मैं वापस चला जाऊंगा दिल्ली, तब इनकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिन्होंने इनकी जिंदगी बदलने का बीड़ा सा उठा लिया था। कौन थे ये शख्स और क्यों दिल्ली वापस आने के बाद एक बार फिर से ये गए थे मुंबई, इन सभी बातों से पर्दा उठाएंगे। और उससे पहले आशा पारेख जी की मदद कर लेते हैं, क्योंकि वो शमी कपूर साहब को मना रही हैं इतने खूबसूरत गीत के साथ, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। और इसी सोना को मनाते हुए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: This was the Ambar Sariya song and welcome to Radio Marani 89.6. अब ना मैं आपके साथ और आज रात बाकी में हम राम सेठी साहब की बात कर रहे थे, जो कि अपने पिताजी से कुछ मोहलत लेकर मुंबई गए थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पर पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इनके सपने पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि इन्हें कहीं काम ही नहीं मिल रहा था। ये वापस दिल्ली आने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन इस बार ये खाली हाथ नहीं आए थे, एक प्रॉमिस के साथ आए थे। और ये प्रॉमिस किया था रवीना टंडन के पिताजी रवि टंडन साहब ने, जिन्होंने कहा कि अभी तो फिलहाल मैं कोई फिल्म नहीं बना रहा, लेकिन जब भी बनाऊंगा तो राम उसमें तुम्हें रोल जरूर दूंगा। और इसी आश्वासन के साथ ये दिल्ली वापस आ गए। पर यहाँ पर इनका मन नहीं लगा, तो कुछ वक्त पिताजी के साथ बिताने के बाद ये फिर मुंबई पहुंच गए और वहां जाकर रवि साहब ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अपनी फिल्म में तो नहीं, लेकिन MS सेठियो साहब से उनकी मुलाकात जरूर करवाई, जिसने राम को चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ज्वाइन करने का सजेशन दिया। और क्योंकि वो डायरेक्टर थे इस सोसाइटी के और फिल्मों के भी, और उन्होंने राम के टैलेंट को पहचानते हुए अपनी अपकमिंग इंडो रशियन फिल्म ब्लैक माउंटेन में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट ऑफर की। और इसी के साथ दिन बदल गए हमारे राम सेठी साहब के, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात कई लोगों से हुई और एक ऐसे शख्स से हुई जो कि इन्हें पहले से जानता था। ये प्रकाश मेहरा साहब थे, जिन्होंने राम सेठी का काम दिल्ली थिएटर में ऑलरेडी देखा हुआ था और मेहरा साहब चाहते थे कि राम उन्हें उनकी अपकमिंग फिल्म में असिस्ट करें एज डायरेक्टर। और ये फिल्म थी एक कुंवारी एक कुंवारा। ये फिल्म दो लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, एक तो ऑफकोर्स राम जी थे और दूसरे शख्स थे राकेश रोशन। यस यस आई नो आप पहचान रहे हो उन्हें ऋतिक रोशन के फादर के तौर पर राकेश रोशन अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन मेहरा साहब को राम सेठी का काम बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने आगे बनने वाली फिल्मों के लिए भी राम को अपने साथ ही रखा। और अब जो वो फिल्म बनाने वाले थे, किसी को भी नहीं पता था कि ये फिल्म कई लोगों की किस्मत बदलने वाली थी। इसमें सबसे पहला नाम था अमिताभ बच्चन साहब का, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को मिलने वाला था उसका एंग्री यंग मैन। और ये फिल्म थी जंजीर, जिस फिल्म में हमने राम सेठी साहब को एक छोटा सा किरदार निभाते हुए भी देखा था। इस फिल्म के साथ कई कहानियां जुड़ी हैं और अगर मैं वो कहानियां सुनाने लग गई तो मुझे लगता है पूरा एपिसोड तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगी, इसलिए मैं अभी इन कहानियों को यहीं रोकती हूँ। पर आपके लिए छोड़े जा रही हूँ एक सवाल। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एक अलग ही रूप में इंडस्ट्री के सामने पेश किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन प्रकाश मेहरा की पहली पसंद नहीं। इनसे पहले ये स्क्रिप्ट दो लोगों के पास गई थी जिन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। वो कौन से दो शख्स थे ये आपको मुझे बताना है। अगर आप जवाब जानते हैं तो फटाफट अपना फोन उठाइए और नंबर मिलाइए। नंबर है मेरा 9654896896। कॉल करके या फिर टेक्स्ट करके मुझे अपना जवाब दीजिए और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड आप और हम मिलकर कर रहे हो। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।
1: कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया?

रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून। इंसानियत सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। एक छोटी सी कोशिश, एक मटका या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।

0: जिनकी मुस्कान ने लाखों दिल जीते, पर उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे किस्से जो किसी ने ना सुने, तो सुनिए रात बाकी बात बाकी में सपना के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हट।

0: वैसे मेरा मन पता है इस टाइम कौन सा गाना गाने का कर रहा है, अरे रुक जाओ बंदे, क्योंकि इतने सारे मेरे पास टेक्स्ट आ चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल गलत जवाब दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गूगल करके शायद सही जवाब दिया है, जिसमें काव्या छाबड़ा, संदीप भाटिया, योगेश, नमिता कुशल और तनुश्री का नाम शामिल है। इन सब ने दिए हैं बिल्कुल सही सही जवाब। अब देखते हैं ये नेक्स्ट एपिसोड किनके साथ होने वाला है मेरा। फिलहाल आप सभी को भी बता देती हूँ कि सही जवाब क्या है। जंजीर फिल्म में विजय का किरदार सबसे पहले देवानंद साहब के पास गया था, लेकिन उस वक्त उनकी इमेज इंडस्ट्री में एक रोमांटिक हीरो की थी, इसलिए वो अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहते थे। साथ ही उनकी एक कंप्लेन भी थी, इस पूरी फिल्म में एक्टर के ऊपर कोई भी गाना पिक्चराइज्ड नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी एक एंग्री यंग मैन की इमेज बने और जो सालों से चलती हुई उनकी इमेज है उसे कहीं पर भी थोड़ा सा धक्का लगे। तो देवानंद साहब की तरफ से ये फिल्म रिजेक्ट कर दी गई थी। सेकेंड ऑप्शन में भी अमिताभ बच्चन नहीं थे बल्कि राजकुमार साहब थे, जिन्होंने इस फिल्म को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि
1: जानी
0: एक्टर से ज्यादा तो कैरेक्टर रोल बड़ा है, उन्हें छोटा करोगे तो ही मैं ये फिल्म करूंगा। पर प्रकाश मेहरा साहब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए राजकुमार जी का भी नाम इस फिल्म से हट गया और फाइनली ये फिल्म आई अमिताभ साहब की झोली में, जिनकी 15-16 फिल्म पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी थी और वो मन बना चुके थे कि अगर इस फिल्म से मेरा करियर ना हुआ तो मैं मुंबई में रहूंगा, अदरवाइज मैं इलाहाबाद वापस चला जाऊंगा। एंड व्हाट अ फिल्म। वैसे इस फिल्म से ना केवल कामयाबी मिली अपने एक्टिंग में बल्कि उनको एक नाम भी मिल गया था। जंजीर फिल्म के बाद उनका हर फिल्म में नाम विजय ही होना फिक्स हो गया था। बहुत सारी फिल्मों में इन्हें विजय के नाम से ही जाना जाता है, बल्कि एक और भी बहुत आइकॉनिक फिल्म थी अग्निपथ में भी इनका नाम था
2: विजय दीनानाथ जॉन पूरा नाम।
0: ये और ये विजय जो थे ये हम सबके दिलों पर भी विजय कर चुके थे। इस फिल्म की एक दो स्टोरीज और भी है, मेरा मन कर रहा है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर ही लूं। तो चलिए सुनाती हूँ मैं आपको कि जहाँ इस फिल्म को एक्टर बड़ी मुश्किल से मिला वहीं एक्ट्रेस भी बड़ी मुश्किल से मिली, क्योंकि इसमें लीड फीमेल का रोल बहुत ही छोटा सा था, इसलिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस इस फिल्म को रिजेक्ट कर चुकी थी। वैसे रिजेक्शन का एक रीजन और भी था कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि बैक टू बैक उनकी इतनी सारी फिल्म्स रिपीट गई थी। और तब कहीं जाकर जया भादुरी ने इस फिल्म को साइन किया है। वैसे तो रूमर्स ये भी हैं कि उस वक्त अमिताभ बच्चन और जया भादुरी दे वर इन अ रिलेशनशिप। खैर ये मैं नहीं कह रही हूँ और ना ही मैं क्लेम करती हूँ इस बात का, बट हाँ द स्टोरी इज कि दोनों ने मिलकर इस फिल्म को किया और व्हाट अ ब्लॉकबस्टर फिल्म दे गेव। और इस फिल्म का एक और मेन कैरेक्टर था शेर खान, जिसकी लुक जहां एक तरफ बहुत सॉफ्ट थी वहीं दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। और क्या आप जानते हैं कि उनकी लुक के लिए प्रकाश मेहरा साहब बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस थे और उन्हें इनकी लुक पर काम करने की ड्यूटी राम सेठी को दी थी, जिन्होंने इनकी दाढ़ी और बालों को मेहंदी से रंग डाला था। और मेहंदी के रंग से जो शेर खान निखरा उसने तो लोगों के दिल को ही रंग डाला। खैर कितनी कहानियाँ कितने किस्से छुपे होते हैं एक फिल्म के पीछे, ये आज हमें समझ आया। और इसी के साथ बहुत सारे लोगों का करियर बना गई ये फिल्म, सिर्फ राम सेठी नहीं बल्कि जया भादुरी, अमिताभ बच्चन और प्राण साहब, इनकी इमेज फिल्म इंडस्ट्री में बन चुकी थी। फिलहाल बन तो मेरा भी मूड गया है कुछ गाने एंजॉय करने का, तो चलिए मैं भी एंजॉय करके आती हूँ कुछ खूबसूरत से गीत। तब तक आप भी एंजॉय कीजिए इन ट्रैक्स।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: क्या आप जानते हैं, बच्चे की सेहत की शुरुआत माँ के गर्भ में ही हो जाती है। सही पोषण मतलब स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा। तो जुड़िए पोषण की पाठशाला में आरजे अंजलि के साथ, जहाँ हर शनिवार और रविवार सुबह 10 से 11 बजे बात होगी माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और सही पोषण पर, जहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे गायनी, न्यूट्रिशनिस्ट और योग गुरु, सिर्फ आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए।
4: तो सुनना ना भूलें पोषण की पाठशाला, सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो मारान 89.6 पर, और मैं हूँ आप सबकी अपनी
1: सपना।
0: और आज के एपिसोड में हम बातें कर रहे हैं राम सेठी जी की, जिन्होंने प्रकाश मेहरा साहब का दामन कुछ इस तरह से थामा कि कई फिल्मों में उन्हें असिस्ट करते रहे एज डायरेक्टर। और ऐसी ही एक फिल्म बन रही थी जो कि 1978 में रिलीज हुई थी, फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें हमने एक बार फिर से प्रकाश मेहरा, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की तिकड़ी को देखा था। इससे पहले भी कई फिल्मों में ये तीनों एक साथ दिख चुके हैं, जिसमें हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी का नाम भी शामिल है। और इसके बाद जब मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बन रही थी, तब भी हमने इन्हीं तीनों लोगों को उस फिल्म में एक साथ देखा। अच्छा, प्रकाश मेहरा का जब नाम आता है ना, तो एक ट्रेंड सेटर उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक नाम दिया था फिल्म जंजीर में, नाम था विजय, जो कि आगे 22 फिल्मों में कंटिन्यूड रहा। ऐसा ही एक नाम उन्होंने राम सेठी साहब को भी दिया था, जिन्होंने मुकद्दर फिल्म में प्यारे लाल का किरदार निभाया था, जो कि आगे 17 फिल्मों में कंटिन्यूड रहा। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो प्यारे लाल का किरदार है, पहले असरानी साहब को ऑफर किया गया था, पर जिस दिन उनका सीन शूट होना था उस दिन वो बारिश में फंस गए और सेट तक पहुँच ही नहीं पाए। तब प्रकाश मेहरा ने सजेस्ट किया कि क्यों राम सेठी इस रोल को नहीं अदा करते, और जैसे ही राम पहुंचे सेट पर, प्रकाश मेहरा को लगा बस यही है हमारा प्यारे लाल, और उसके बाद तो ये नाम उनके साथ कुछ ऐसा चिपका कि 17 फिल्मों तक साथ रहा। अच्छा, मुकद्दर

उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत था, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। इसी गाने से पहले अमिताभ बच्चन साहब का एक बहुत बड़ा डायलॉग था स्टेज पर, और इस डायलॉग को लिखते हुए कादर खान इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने अपने जिंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, जितना भी दुख था, वो 16 पेजेस पर उतार दिया। और जब ये 16 पेजेस का डायलॉग लेकर पहुंच गए प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के सामने, तो दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। एज पर देम ये बहुत ही बड़ा डायलॉग था और इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाया होने वाला था, इसलिए अमिताभ बच्चन साहब इस डायलॉग को बोलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। पर जब कादर खान ने पूरे इमोशंस के साथ इस डायलॉग को रीड किया, तब सबको लगा कि नहीं, ये तो माइलस्टोन होने वाला है इस फिल्म में। और विदाउट चेंजिंग इवन अ सिंगल वर्ड इस पूरे डायलॉग को फिल्म में रखा गया था। 1978 में ये फिल्म जब बन के रिलीज हुई तो इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, और ये भी कहा जाता है कि 70s के दशक की थर्ड सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी मुकद्दर का सिकंदर। पूरे 6,70,00,000 लोग थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे। यहां तक कि रूस में भी इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म से राम सेठी एज एन एक्टर इमर्ज हुए थे। अब उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर कम बल्कि एक एक्टर ज्यादा समझा जाता था फिल्म इंडस्ट्री में। उनका किरदार और उनके डायलॉग्स इतने ज्यादा लाउड एंड क्लियर थे कि ये जो रोल था प्यारे लाल का, उसे काफी ज्यादा एक्सटेंड भी किया गया था फिल्म में। क्या बात है, मैं तो हमेशा ही ये कहती हूँ कि एक फिल्म जो 3 घंटे में आकर चली जाती है, लेकिन अपने पीछे कई कहानियां छोड़ जाती है। तो चलिए कहानियों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सारा शहर मुझे 89.6 FM रेडियो महारानी के नाम से जानता है।

देखिए हार्डवर्क भी कहता है कि तुम बस मेरे साथ चलते रहो, मेरा हाथ थामे रखो और देखना पॉपुलैरिटी, नेम और फेम सब कुछ आपको मिल ही जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ था राम सेठी साहब के साथ भी, या फिर कहूं कि हमारे बॉलीवुड के प्यारे लाल के साथ भी, जो कि दिन प दिन अपनी पॉपुलैरिटी की सीढ़ियां चढ़ते ही जा रहे थे। पर हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि प्रकाश मेहरा का साथ और हाथ दोनों ही इन्होंने नहीं छोड़े थे। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में एक बहुत ही अच्छा किरदार निभाने के बाद 1981 में अमिताभ बच्चन साहब के साथ एक बार फिर से इन्हें देखा गया था फिल्म याराना में, और अमजद खान, राम सेठी और अमिताभ बच्चन इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म में भी बहुत ही कमाल धमाल मचाया। अच्छा, इस फिल्म की अगर बात आती है तो सबसे पहला गाना आपके दिमाग में कौन सा आता है? मेरे दिमाग में जो आ रहा है शायद आपके दिमाग में भी वही गाना आ रहा होगा। गाना है सारा जमाना हसीनों का दीवाना। वैसे बात सच भी है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी होता ही रहेगा। खैर, इसी गाने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। इस गाने की शूटिंग के दौरान राम सेठी की एंट्री होती है स्टेडियम के अंदर, और जब उनकी एंट्री हुई तो स्टेडियम जो की पूरा भरा हुआ था ऑडियंस से, उन्होंने अचानक ही हूटिंग करना स्टार्ट कर दिया राम सेठी के नाम की। और ये देख कर अमिताभ बच्चन साहब भी एक बार शॉक हो गए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और लोग राम सेठी का नाम जप रहे हैं। ये देख कर वो राम के इतने बड़े फैन हो गए कि आगे आने वाली कई फिल्मों में वो उनके साथ काम करने लगे, और दोस्ती भी दोनों की बहुत ज्यादा पक्की हो गई थी। ये भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को लेकर राम सेठी एक फिल्म भी डायरेक्ट करना चाहते थे। खैर, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। फिलहाल बात करते हैं उनकी दूसरी फिल्म की, जो कि 1982 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म का नाम था नमक हलाल, एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म। और इस फिल्म में प्यारे लाल नहीं बल्कि भैरव के रूप में नजर आए थे हमारे राम बाबू, और एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है इस फिल्म का, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, है ना, किशोर कुमार की आवाज में, याद है ना? कोई बात नहीं, मैंने याद दिला दिया ना। तो ये जब गाना शूट हो रहा था तो प्रकाश मेहरा को लगा कि कुछ कमी है, मतलब जितना इंटरेस्टिंग, जितना बबली ये गाना था, उतने बबली एक्सप्रेशंस अमिताभ सर से नहीं मिल रहे थे किसी को भी। इसलिए राम बाबू को एक आइडिया आया, वो उन्होंने कैमरा उठाया और वो इस गाने में अमिताभ बच्चन की फोटोज क्लिक करने पहुंच गए, और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन अमिताभ बच्चन जी को दी गई थी कि जैसे ही मैं तुम्हारी फोटो क्लिक करने आऊंगा तुम मुझे कुछ डिफरेंट फेसेस बनाकर दिखाना, दैट्स इट। और यही चीज पूरे गाने की हाईलाइट बन गई। हर किसी को ये गाना सुनने में तो अच्छा लग ही रहा था, साथ में देखना भी इतना पसंद आ रहा था बिकॉज ऑफ देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। राम ने सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर एज अ कैरेक्टर रोल ही काम नहीं किया, बल्कि वो स्क्रीन राइटर और साथ ही डायलॉग राइटर की तरह भी काम कर रहे थे। पर अभी भी उनके दिल में एक आस बाकी थी, वो आस थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनकर किसी फिल्म को डायरेक्ट करना। उनका ये ख्वाब पूरा हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो किस फिल्म से, ये भी आपको बताऊंगी। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए इन म्यूजिकल ट्रैक्स को।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून। ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
1: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: पड़ोसन हूँ इसलिए जासूस हूँ,
3: की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए, हाय वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला?
4: सही कह रहे हो पैंड जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

इंडस्ट्री के कई खूबसूरत किस्से हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री बदनाम भी है। और ऐसा कहा भी जाता है कि यहाँ पर लोग किसी का भी एहसान याद नहीं रखते। कोई अगर आपको सपोर्ट करे, फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम हासिल करने में आपकी मदद करे, तो बहुत जल्दी लोग इस बात को भुला दिया करते हैं। पर ऐसा राम सेठी जी के साथ नहीं हुआ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। सपना हूँ मैं आपके साथ, और आज रात बाकी बात बाकी में राम सेठी जी की बात हो रही है, जिन्हें हम सब प्यारे लाल के नाम से जानते हैं। प्रकाश मेहरा ने जब इनका हाथ थामा था, उस वक्त ये काफी कम उम्र के थे, लेकिन तब से लेकर प्रकाश मेहरा की आखिरी सांस तक राम ने मेहरा साहब का हाथ नहीं छोड़ा और उनके साथ बने रहे। ये अलग बात है कि उनके दिल में ये इच्छा थी कि वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी एक फिल्म बनाए। जिस बात का जब प्रकाश मेहरा को पता चला, तो उन्होंने पूरी तरह से राम को सपोर्ट किया और ये भी कहा कि जो भी फिल्म तुम बनाओगे उसमें उसे प्रोड्यूस मैं करूंगा। ये फिल्म बहुत जल्दी हमें देखने को भी मिली। नमक हलाल के हिट होते ही प्रकाश मेहरा और राम सेठी इस फिल्म पर काम करना शुरू कर चुके थे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1983 में और इसका नाम था घुंगरू, जिसमें राम सेठी अमिताभ बच्चन को लीड रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे, पर किसी कारणवश अमिताभ इस फिल्म में काम नहीं कर पाए, इसलिए ये रोल शशि कपूर और सुरेश ओबराय के पास गया, जिनके साथ फीमेल लीडिंग रोल में स्मिता पाटिल जी नजर आईं। ये फिल्म एज एक्सपेक्टेड इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर तो नहीं रही, लेकिन हाँ ठीक ठीक रही। इस फिल्म के बाद प्रकाश मेहरा को लगा कि नहीं, राम एज एन असिस्टेंट ही ठीक है, दो उनमें कैलिबर था, बट स्टिल वो नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे ही करते करते प्रकाश मेहरा के साथ इन्होंने पूरी 10 फिल्मों को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर निभाया। साथ ही इनकी एक्टिंग का सिलसिला भी जारी रहा। पर कहते हैं ना कि आप जिस भी मुकाम पर पहुंच जाइए, मंजिल थोड़ी सी दूर ही नजर आती है। इनके दिल में भी कई ऐसे अरमान थे जो ये पूरा करना चाहते थे। एक तो जैसे मैंने बताया कि वो फिल्में डायरेक्ट करना चाहते थे। खैर, डायरेक्ट की भी और आगे भी कई फिल्मों को ये डायरेक्शन देना चाहते थे, पर ऐसा हो ना सका।

0: ये स्विच है, बिजली बचाने के लिए इसे ऑफ करना पड़ता है।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
2: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
3: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
2: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा?
3: अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: नक्शा हो तो प्यार का हो, मेहनत का हो, रुबाब का हो, और किसी चीज का नशा भी कोई नशा कहलाता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना हूं मैं आपके साथ, और आज हम राम सेठी साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की और उसके फ्लॉप होने के बाद उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना वो एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करें,
1: जो कि इन्होंने किया भी, पर अनफॉर्चुनेटली वो काफी अच्छा कमाल नहीं कर पाई, इसलिए उसे भी बंद करना पड़ा। ये भी कहा जाता है कि दूरदर्शन के लिए भी इन्होंने एक पूरा एपिसोड लिखा था, पर किसी कारणवश वो एपिसोड भी कभी ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया। ऐसी कई चीजें थी जो ये करना चाहते थे पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि इनकी ऑडियंस तो इन्हें प्यारे लाल के रूप में ही देखना चाहती थी, और मेहरा साहब को असिस्ट करते हुए ही इनकी हर फिल्म हिट हो रही थी। खैर, सपने सबके होते हैं और हर सपने को पूरा करना चाहिए। आई एम हैप्पी बिकॉज राम सेठी ने गिव अप नहीं किया और वो हर सपने को पूरा करने की कोशिश करते रहे। जरूरी नहीं कि हर सपना पूरा होता है, लेकिन हाँ, कोशिश करनी तो बनती है, जैसा कि इन्होंने किया। पर वो कहते हैं ना कि एक पल ऐसा आता है जब आपको लगता है कि बस अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते, नाउ आई नीड रेस्ट। तो इनकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया एंड ही वेंट बैक टू दिल्ली। पर यहाँ आने के बाद इनका मन ऑफकोर्स नहीं लगना था, भाई इतना शानदार करियर छोड़ के कोई कैसे बैठ सकता है। फिर ये दोबारा मुंबई गए और इस बार जब उन्होंने प्रकाश मेहरा साहब से मुलाकात की तो काफी डिसहार्टेंड हुए, क्योंकि प्रकाश मेहरा अब फिजिकली काफी वीक हो गए थे और साथ ही फिल्में भी बनाना कम कर चुके थे। तब इन्होंने अपने डायरेक्टर साहब को रिवाइव करवाने के लिए एक बार फिर से काम करने की ठानी, और इस बार ये फिर उसी तिगड़ी को जिसने एक वक्त में धमाल मचा दिया था फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि अमिताभ बच्चन, राम सेठी और प्रकाश मेहरा, इनको बड़े स्क्रीन पर लाने की ठान ली। स्क्रिप्ट वॉज रेडी, सब कुछ तैयार था, इवन बच्चन साहब वॉज रेडी, पर इससे पहले कि ये फिल्म बन पाती, प्रकाश मेहरा साहब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा।

एक ऐसा किरदार जिसने हर किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल छोड़ दी थी, क्योंकि इनका नाम था प्यारे लाल और ये हर किसी से करते थे बहुत सारा प्यार। और इसी के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ और आज रात बाकी बात बाकी में हम सब राम सेठी साहब की बातें कर रहे हैं। वैसे इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और एक काफी जाना पहचाना सा चेहरा बन गए थे। 50 से ज्यादा फिल्मों में बतौर एक्टर इन्होंने काम किया और साथ ही 20 से ज्यादा फिल्मों को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने डायरेक्ट किया था। 1983 में आई फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट भी किया था, पर ये इनकी एक ही फिल्म एज अ डायरेक्टर रही। इनके काम के लिए फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें 1979 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल फॉर मुकद्दर का सिकंदर और 2024 में इन्हें जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल, कालिया, लावारिस जंजीर, हेरा फेरी, याराना, कभी अजनबी थे, चमेली की शादी, मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का फैसला, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों में हमने अपने प्यारे लाल साहब को देखा है, जिसमें कई फिल्मों में अदाकारी तो कई फिल्मों में इन्होंने डायरेक्शन भी दी है। वैसे कई सालों बाद जब एक बार फिर से ये एक एडवर्टाइजमेंट में नजर आए तो लोग अपने प्यारे लाल को देखकर इतने खुश हो गए थे कि राजकुमार हिरानी साहब जो कि पीके फिल्म बना रहे थे, तुरंत दोनों ने एक रोल ऑफर कर दिया राम सेठी साहब को और एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कम बैक किया एट द एज ऑफ 73। भाई जिंदगी का फलसफा तो यही कहता है कि आप आइए, अपनी परफॉर्मेंस दीजिए और चले जाइए। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने व्यवहार से, अपने काम से सभी का दिल जीत लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उनके दिलों पर राज करते हैं।

0: ही शामिल रहा, इसलिए लोग इन्हें बहुत पसंद किया करते थे और इनका साथ भी निभाया करते थे। इसी के साथ आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि राम सेठी साहब को एक बार उनके काम के लिए सल्यूट करूं और साथ ही आप सबका प्यार उन तक पहुंचा पाऊं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले कई सालों तक वो हमारे साथ यूं ही बने रहें, हमें यूं ही हंसाते रहें और फिल्म इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखाते रहें। इसी के साथ वक्त हो चला है मेरा आप सबसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और हाँ, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए छोड़े जा रही हूँ कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। एंजॉय दीज म्यूजिकल ट्रैक्स, फिर से मुलाकात करूंगी आपसे, तब तक के लिए ठाठा बाय बाय सायोनारा।
1: जो मिला तो मुझे

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: चला दो गाना चला दो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है।

0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
1: चल अर्जुन शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
1: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
1: इरशाद
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
1: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
2: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
1: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
1: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी, जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना, ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारो।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली, तुम बोलते रहो।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
3: है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
4: जब HR 51 की गाड़ियां दिखें तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हट के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हट के।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझे

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी में।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

इंसानियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहे हैं।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM.
1: कुछक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
1: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाए। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बेहतर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।
4: कुछ हट

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

Dollars पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ छक्के।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना बाबा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा,
0: सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है। रेडियो महारानी कुछ हटके, कुछ हटके। रेडियो महारानी
3: कुछ हटके। मस्त बहार।

मेरे लिए, मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े मुराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे बाजू

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भेजे सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कृष्ण वाणी काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: जाता है, ज्ञान भूल जाता है। भक्ति का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जो विलास करत हैं, जिन यह समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे ते आप ते जाई अंतर परे निसंदेह। अब यहाँ रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सभी से ये चर्चा करनी उचित नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे तो आपते जाए, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके हृदय में जो रसानुभूति है वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई इस विषय पर, भजन को छिपाना ही भजन को बचाना है, भजन का गोपन, और अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा वो खींच तान कर सबको लगाने का यहाँ प्रयास करते हैं, पर ऐसा संभव होता नहीं है भाई। जीव का कल्याण केवल केवल केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये आपका मेरा प्रयास नहीं है, ये आप पर और मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के प्रसाद से आप और मैं यहाँ पर बैठे। ताते मौन होए रहनो बहुत भलो है। सब जगह प्रवचन उपदेश की आवश्यकता नहीं है, है ना। ध्रुवदास जी कह रहे आवश्यकता से भी कम बोलने वाला वस्तुतः साधक है। डोंगरे जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है वो सदा मौन रहता है। समझिए, वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोल कर गंवाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही। विजाति माने जो आपके रस के अनुकूल ना हो। अच्छा, एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा, इस वाद और विवाद में भी मत पड़िए। किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पढ़ना भी ठीक नहीं है। जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा, होगा निश्चित रूप से होगा भाई। ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार, जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए। दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए। वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे। जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय ना मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि ना की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे।